मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। आज दिन है शुक्रवार, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहक के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ। श्रोताओं, मीडियम वेव 401.61 मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक

0: की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों के नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोरजी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज खरीफ फसलों में कीट रोग प्रबंधन विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह, और आपसे इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ अभियान में लगे हैं, तो खरीफ फसलों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक डॉक्टर जीपी सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इलाज से बेहतर बचाव है, जो भी खरीफ की फसलें हैं उनमें हानिकारक कीट और बीमारियां न लगें, इसके बचाव के कौन कौन से उपाय इस समय किसान भाई करें जब वो अपनी फसलों की बुआई और रोपाई कर रहे हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आपने बताया कि जो खरीफ की हमारी फसलें हैं अभी उनकी बुआई चल रही है, तो उसके बचाव के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं कि अभी जो भी किसान भाई आप बुआई कर रहे हैं, तो अगर अपने जो भी आपके बीज हैं, चाहे आपके दलहनी फसलों के हैं, चाहे तिलहनी फसलों के हैं, या आपके सीरियल्स के हैं, चाहे आप धान है या आपका मक्का है
1: या मोटे अनाज
2: या जो भी मोटे अनाज की, और भी आपके कहने का मतलब है, अगर इनको जो इनके बीज हैं, अगर बीज को 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर आप उपचारित करते हैं, उपचारित करने के बाद में अगर आप अपने उसकी बुआई करते हैं, तो जो आपका कहने चाहे सड़न गलन की बीमारी लगती हो, चाहे आपकी जो उकठा बीमारी दलहनी फसलों में लगती है, इनसे किसान भाई बच सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि अगर जो है इसी ट्राइकोडर्मा से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 50 से 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में मिला करके अंतिम जुताई के समय अगर 1 हेक्टेयर खेत में मिला करके जुताई करके फिर बुआई करते हैं, उनका भूमि का भी शोधन हो जाता है, जिससे ऐसी जो आपका भूमि होगी उसमें भी, चाहे आपका सड़न की बीमारी हो, चाहे आपकी उकठा की बीमारी हो,

0: गोबर की सड़ी खाद,
1: गोबर की सड़ी खाद में मिला करके जो है अगर उपयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों को मिलेगा।
0: जैसे दूध में जामन मिला करके दही जमती है,
1: जी जी, जी।
0: उसी तरह भूमि शोधन के लिए गोबर की सड़ी खाद में ट्राइकोडर्मा मिला करके
1: बिल्कुल सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: तब प्रयोग करना,
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जो है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो बीज शोधन और भूमि शोधन की बात आपने की, जहाँ धान की रोपाई चल रही है
1: जी,
0: तो वहाँ क्या पौध जड़ उपचार भी हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो,
0: या सब्जियों की नर्सरी अगर रोपी जा रही है,
1: बिल्कुल हो सकता है। कि इसके लिए भी किसान भाई क्या काम कर सकते हैं कि जो अगर रोपाई कर रहे हैं, चाहे धान की उनकी जड़ है, तो रोपाई से पहले जो है 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर वो घोल बना लेते हैं, उससे भी नर्सरी को जो उनका जड़ है उसमें डिप करके फिर थोड़ी देर में उसको सुखा करके फिर उसकी रोपाई, कहने का मतलब किसान भाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको चाहे सब्जियों का है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जहां किसान भाइयों अगर ट्राइकोडर्मा जैसे उपलब्ध नहीं है, तो वहां किसान भाई अगर उनको लग रहा है कि उस एरिया में आपका जैसे दीमक का प्रकोप है, या भी देखिए आपको दिखाई होगा सफेद रंग का कीड़ा होता है जिसको
0: सफेद गिटार,
1: सफेद गिटार भी बोलते हैं, तो ऐसी जगहों पर किसान भाई जो उसका उपचार है, हमारा एक ब्यूबेरिया बैसियाना नाम का जिसको ब्यूबेरिया बोलते हैं, लाभकारी फफूदी है, उससे भी उपचार कर सकते हैं। तो इससे भी दीमक हो या जमीन के और जो भी कीड़े हैं

0: भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके क्षेत्रीय केंद्रीय आईपीएम केंद्र लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है, किसान भाई नोट कर लें, 9919953951 9919953951 9919953951। ये जो फेरोमोन ट्रैप है आप किसान भाइयों को मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन जो प्रकाश प्रपंच है, प्रकाश प्रपंच के लिए किसान भाई क्या काम करते हैं, कोई भी बल्ब ले सकते हैं, उस पर ऊपर होल्डर लगा दें और नीचे में एक टब रख दें, उसको क्या है किसी बैटरी से जलाएं या सोलर का खरीद भी सकते हैं, मार्केट में आता है।
0: डॉक्टर जीपी सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ फसलों में कीट रोग प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह और आपसे इस विषय पर भेंट कर रही थी डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
3: गांधी चर्चा, गांधी चर्चा में सुनिए बापू के विचार।
4: गांधी जी के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति है, यानी जो मुक्ति के योग्य बनाए वो विद्या, बाकी सब अविद्या। अतः जो चित्त की शुद्धि न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखना न सिखाए, निर्भयता और स्वावलंबन पैदा न करे, निर्वाह का साधन न बताए और गुलामी से छूटने और आजाद रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा पांडित्य मौजूद हो, वो शिक्षा नहीं है या अधूरी शिक्षा ही है। गांधी जी का मानना था कि 80-85% लोगों के जीवन की आवश्यकताओं का विचार करने के बजाय मुट्ठी भर मनुष्यों की आवश्यकताओं अथवा राज्य के थोड़े से विभागों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा हो नहीं सकती, बल्कि गलत शिक्षा होने से ये अविद्या ही है। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा ने शिक्षित और अशिक्षित के बीच एक गहरी खाई खोद दी है और विद्वानों को जनता का अगुआ, पथ प्रदर्शक और प्रतिनिधि बनाने के बजाय जनता से विलग हो जाने वाला, जनता के जीवन और भावनाओं को न समझने वाला और उनका पक्ष उपस्थित करने के अयोग्य बना दिया है। इस शिक्षा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए भवनों, साधनों, पुस्तकों, मृग तृष्णा की भांति दूर से लुभावने लगने वाले लाभों की आशाओं और चटक मटक वगैरह का आडंबर रचाकर जनता को कर्ज में डुबो दिया है। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा ने लोगों के अंदर वहम पैदा कर दिए हैं, जैसे अक्षर ज्ञान और शिक्षा एक ही है और उसके बिना शिक्षा हो ही नहीं सकती। इस शिक्षा ने जनता को धर्म से विमुख किया है और अनेक पीढ़ियों से पोषित धर्म तथा संयम के संस्कारों को मिटा डालने का ही काम किया है। उनका मानना था कि चित्त शुद्धि के महत्व के अंग ईश्वर, गुरु, बड़े बूढ़ों में भक्ति, नीतिमय जीवन का आग्रह और संयम तथा तप में श्रद्धा, इन सभी विषयों में आधुनिक शिक्षा ने पढ़े लिखों को संशक और नास्तिक बना देने की दिशा में यत्न किया है। महात्मा गांधी के अनुसार वर्तमान शिक्षा शैली ने भोग और संपत्ति में ही इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर दी है कि उनके कम होने के डर से ही शिक्षित व्यक्ति डर जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले धर्म के आचरण में असमर्थता प्रकट करता है। गांधी जी का ये स्पष्ट मानना था कि शिक्षा से निर्वाह का प्रश्न हल होना चाहिए, अतः उद्योग धंधों की शिक्षा शिक्षण का प्रधान अंग होना चाहिए। लिखने पढ़ने का ज्ञान ना होते हुए भी महात्मा गांधी का मानना था कि मनुष्य गिनना सीख सकता है, अपने उद्योग धंधे संबंधी प्राथमिक विज्ञान प्राप्त कर सकता है, साहित्य समझ सकता है, सुन सकता है, उसे कंठस्थ कर सकता है और शक्तिशाली हो तो उसकी रचना भी कर सकता है। इसके सिवा उसमें सत्य की लगन हो तो ईश्वर का ज्ञान भी वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि बालकों की शिक्षा का श्री गणेश अक्षर ज्ञान से नहीं बल्कि सफाई की शिक्षा से होना चाहिए। बालक को अक्षर ज्ञान तो दिया ही जाए, लेकिन उसे अपने हाथ, पांव, नाक, नाखून इत्यादि की साफ सफाई को रखना भी सिखाया जाए। इसके बाद कहानियों और भजनों द्वारा धर्म का ज्ञान उसे दिया जाए, प्रत्यक्ष

0: अवलोकन से पदार्थ विज्ञान, वनस्पतियों और भूमि तथा आकाश का ज्ञान दिया जाए तथा प्रत्यक्ष पदार्थों से गणित में प्रवेश कराया जाए। इस तरह लिखना पढ़ना आने के पहले उसे तीसरी चौथी पोथी तक का ज्ञान करा दिया जाए। अनेक भजन, श्लोक, कविताएं उसे कंठाग्र करा के उच्चारण शुद्धि करा ली जाए और नाना प्रकार के साहित्य बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाए। गांधी जी का यही मानना था कि ज्ञान का मूल स्रोत पुस्तकों में नहीं बल्कि अवलोकन, अनुभव, विचार शक्ति में है और इसके भूल जाने से हम पुस्तक के ज्ञानी को बहुत महत्व देते हैं।
1: इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा संपन्न होती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का अनुक्रम था गांधी जी और शिक्षा। वाचक स्वर थे शिबा राकेश की।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप इस वक्त सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आस्था प्रार्थना आत्मा व परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं, सुबह की इस पावन बेला में जब सूरज की पहली किरण संसार के कर कण पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर ने मोतियां बिखेर दी हों। और जिस प्रकार सूरज की रोशनी रात के अंधकार को गायब कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर का नाम स्मरण करने से हमारे अंदर व्याप्त अंधकार रूपी कुरीतियां भी नष्ट हो जाती हैं।

आरती का पवित्र दिया भक्त की उस भक्ति का प्रमाण होता है जो उसे अपनी माता की भक्ति से जोड़े रखता है। उस पवित्र दिए को साक्षी मान हम अपनी माता की पूजा करते हैं और सदा के लिए माता के चरणों में समर्पित हो जाते हैं।

जमुना किनारे प्रभु श्री कृष्ण की मुरली की मनमोहक तान सुनकर ये सुबह की पावन बेला ताजगी से भर जाती है। इनकी मुरली की तान सुनकर ये पृथ्वी और गगन, पशु पक्षी सभी प्रभु का वंदन कर हर्षित होते हैं।

हे नीलकंठ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी माया अपरंपार है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके चरणों में भक्तों को सुख मिलता है। यदि प्रभु की कृपा दृष्टि पानी है तो आइए चलते हैं प्रभु के धाम और जपते हैं प्रभु का नाम।

श्रोताओं, हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय पाठ। आज सुनिए भाग 248।

0: अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर थे श्रीकांत परगांवकर के और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। आइए
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं और अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रदत्तः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं जंतर मंतर इत्येतस्मिन् स्थले दिल्ल्याः अन्येषु स्थानेषु च प्रदर्शनरत छात्रेषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोग सम्बद्धां याचिकां शृणोति स्म। श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्ट परिस्थितिषु एव पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह पुरुषाण दशाधिकैकशत किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरंच भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देश दशाधिकैकशत पदक ही पदक तालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, हमारी रोजमर्रा की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है, ये रोज हम आपको बताते हैं हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं विश्व स्व देखभाल दिवस के अवसर पर फोकस और एकाग्रता कैसे बढ़ाएं ध्यान की शक्ति, इसके बारे में आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी प्रस्तुतकर्ता नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर उम्र, हर पेशे और हर परिस्थिति में महत्वपूर्ण है, और वो है एकाग्रता यानी ध्यान लगाने और टिके रहने की क्षमता। हम सभी ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि हम किसी काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं, ध्यान बार बार भटक रहा है, या किसी जरूरी कार्य को करते हुए भी हमारा मन दूसरी गए भटकने लगता है। चाहे आप एक विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो या वरिष्ठ नागरिक, ध्यान केंद्रित रखना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ध्यान ही वो कुंजी है जो किसी भी प्रयास को परिणाम तक पहुंचाती है। आज के समय में जब सूचना की बाढ़ है, मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशंस की कतार है और चारों ओर तेज गति से भागती दुनिया है, उस वातावरण में शांत रहकर किसी एक कार्य पर ध्यान लगाना अपने आप में एक चुनौती बन गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एकाग्रता कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक अभ्यास है, एक कला है जिसे कोई भी व्यक्ति समय देकर सीख सकता है। शुरुआत करते हैं एक सरल लेकिन प्रभावी प्रश्न से, ध्यान क्यों भटकता है? अक्सर इसका कारण होता है असंगठित दिनचर्या, पर्याप्त नींद न लेना, बहुत अधिक मल्टीटास्किंग करना या मन में लगातार चलते विचारों की भीड़। अगर दिमाग एक समय में कई दिशाओं में दौड़ रहा हो तो वो किसी एक कार्य पर कैसे टिकेगा? इसलिए सबसे पहला कदम है अपने जीवन में थोड़ा ठहराव लाना। एकाग्रता बढ़ाने का पहला मंत्र है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो केवल वही करें, मोबाइल को दूर रखें, ब्राउजर में कई टैब खोलकर मत बैठिए और हर 5 मिनट में व्हाट्सएप या सोशल मीडिया ना देखें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़िए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो केवल उसी संवाद पर ध्यान दीजिए। जब हम एक बार में एक ही कार्य करते हैं तो न सिर्फ हमारी गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना। जैसे शरीर की मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही ध्यान की शक्ति भी अभ्यास से विकसित होती है। इसके लिए रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान या माइंडफुल ब्रीदिंग बहुत उपयोगी हो सकता है। आंखें बंद करें, आराम से बैठें और बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी ध्यान भटके उसे धीरे से वापस सांस पर लाएं। ये सरल अभ्यास दिमाग को वर्तमान में लाना सिखाता है। शरीर का ध्यान रखना भी एकाग्रता में मदद करता है। अगर नींद पूरी ना हो, पेट भरा ना हो या शरीर थका हुआ हो तो मन अपने आप अस्थिर हो जाता है। इसलिए पर्याप्त नींद लेना, समय पर भोजन करना और थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधि दिनचर्या में शामिल करना बेहद जरूरी है। इससे शरीर भी सक्रिय रहता है और मन भी सजग। बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप टाइम ब्लॉकिंग विधि अपनाएं। इसका मतलब है दिन के समय को हिस्सों में बांटना।

0: और हर हिस्से को किसी विशेष कार्य के लिए निर्धारित करना, जैसे कि सुबह 9 से 10 बजे केवल लेखन या शाम को 5 से 6 बजे केवल पढ़ाई। जब हम मन को पहले से बता देते हैं कि अब केवल यही काम करना है तो भटकाव बेहद कम होता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना भी इस दिशा में मदद करता है। जब आप किसी काम को बहुत बड़ा मान लेते हैं तो दिमाग उससे डरने लगता है और ध्यान इधर उधर भागने लगता है। लेकिन जब आप कहें कि आज सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा या सिर्फ 20 मिनट ध्यान दूंगा तो दिमाग उसे सहज रूप से स्वीकार करता है और सहयोग करता है। ये भी ध्यान देने की बात है कि हर किसी का ध्यान बार बार भटकेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप प्रयास ही छोड़ दें। जब भी ध्यान भटके उसे पकड़िए और वापस अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। बार बार हर बार ये अभ्यास ही एक दिन आदत बन जाता है। श्रोताओं, एक और छोटी सी बात, डिजिटल डिटॉक्स भी बहुत आवश्यक है। दिन में कुछ समय ऐसा रखिए जब आप मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन से दूर रहें। ये समय आपके मन का विश्राम होगा। इसी तरह शांत वातावरण में 10 मिनट की चहलकदमी करें, पेड़ पौधों के पास समय बिताएं या संगीत को सुनें। एकाग्रता के लिए ये सभी फायदेमंद होते हैं। एक अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप महसूस करेंगे कि कम समय में अधिक काम हो रहा है, आपको थकान कम महसूस हो रही है और मानसिक रूप से एक स्पष्टता बनी रहती है। ये केवल पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं है, ये जीवन की हर दिशा में आपकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है। तो क्यों ना हम आज से अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करें। क्यों ना हर कार्य को पूरा ध्यान, सम्मान, एकाग्रचित और सच्ची उपस्थिति के साथ करें। जब हम अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू करेंगे तो वो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ जो आपके जीवन को संतुलन और संकल्प दे। अपने भीतर की एकाग्रता को पोषित कीजिए और हर कार्य को पूर्ण मन से कीजिए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: फोकस और एकाग्रता, कैसे बढ़ाएं ध्यान की शक्ति, अभी इसके बारे में नीना सोनकर हमें बता रही थी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, आइए डालते हैं एक नज़र आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से रिले, और साथ ही संसद में हुई प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त रहेगा उर्दू प्रोग्राम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद पर मबनी खसूसी प्रोग्राम, दास्ताने कलमकार मुंशी प्रेमचंद। इस खसूसी प्रोग्राम की पेशकश होगी आसिफ इकबाल की और प्रेजेंटर होंगी शाइस्ता जाहिद। कथा सम्राट प्रेमचंद जयंती, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। सुबह 7:31 से कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा। लोकगीतों से सजे लोकरंग कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे सुनील कुमार श्रीवास्तव, जो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे अवधी लोकगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर, और साथ ही साथ इन्हीं के गाए लोकगीतों को आप सुन सकते हैं लोकमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 2:45 पर भी। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये फोन इन प्रोग्राम आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे से। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार यादव की

भेंट वार्ता। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। महिलाओं के लिए अपराजिता कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे दोपहर 1:15 से। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आज आप लुत्फ उठाएंगे विशाल सिंह यादव के मनमोहक भजनों का। शाम 7:31 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर रूली मिश्रा की टॉक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जेंडर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण धड़कन देश की। श्रोताओं सुबह के 7:10 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है नमस्कार लखनऊ का खास सेगमेंट का ये खास प्रोग्राम विविधा।

नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। श्रोताओं, आज हम स्मरण कर रहे हैं हिंदी और उर्दू साहित्य के उस अमर साहित्यकार को, जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की। जी हाँ, आज के विविधा कार्यक्रम का विषय है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती।

दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म वर्ष 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के निकट स्थित लमही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव।

इन्होंने प्रारंभ में नवाब राय के नाम से अपना लेखन कार्य शुरू किया था। बाद में वो प्रेमचंद के नाम से साहित्य जगत में अमर हो गए। प्रेमचंद को कथा सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज के यथार्थ को अपनी कहानियों और अपने उपन्यासों में अत्यंत सरल, प्रभावशाली और संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में गांव, किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, मध्यम वर्ग और समाज के उपेक्षित लोगों का जीवन सजीव रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का साहित्य केवल कल्पना नहीं बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन का सच्चा दस्तावेज है। उन्होंने गरीबी, शोषण, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, रूढ़ियों और अन्याय जैसी समस्याओं को अपनी लेखनी का विषय बनाया है। साथ ही उन्होंने मानवता, ईमानदारी, परिश्रम, समानता और नैतिक मूल्यों का संदेश भी दिया है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां, अनेक उपन्यास, नाटक, निबंध और लेख लिखे हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों में है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और प्रतिज्ञा। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वहीं उनकी प्रसिद्ध कहानियां ईदगाह, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर

0: ईश्वर, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा और नमक का दरोगा आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी अपने समय में हुआ करती थी। आज भी जब इन कहानियों को, इन उपन्यासों को पढ़ा जाता है तो ये वही एहसास दिलाते हैं जिस भाव से, जिस एहसास से इसे उस वक्त लिखा गया होगा।
1: सोच पर इनकी धरा है सारा हिंदी साहित्य हमारा।
0: मुंशी प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने सरल और सहज भाषा में गहन विचार व्यक्त किए। उनके पात्र सामान्य जीवन से जुड़े होते थे और इसीलिए पाठक स्वयं को उनकी कहानियों से जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और अनेक भारतीय भाषाओं जैसे विदेशी भाषाओं में भी इसे अनुदित किया जा चुका है। दोस्तों, साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है। मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य इसी उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रश्न उठाए और मानवीय संवेदनाओं को सबसे ऊपर रखा। उनकी लेखनी ने ये संदेश दिया कि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान और न्याय प्राप्त करे। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है तब भी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हमें ईमानदारी, संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों की याद दिलाती है। उनकी कहानियां हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसमें मानवीय करुणा और सामाजिक न्याय भी शामिल हो। जी हाँ मित्रों, मुंशी प्रेमचंद का साहित्य केवल भारत की धरोहर नहीं बल्कि विश्व साहित्य की अमूल्य निधि भी है। उनकी रचनाएं समय के साथ और अधिक प्रासंगिक होती जा रही हैं क्योंकि उनकी लेखनी में जीवन की सच्चाइयां, संघर्ष और मानवीय संवेदनाएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी उस वक्त लिखी गई थी। अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि महान साहित्यकार अपनी रचनाओं से केवल शब्द नहीं लिखते बल्कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए विचारों की मशाल जला के जाते हैं। जी हाँ, आइए कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर हम उनकी रचनाओं को पढ़ने, उनके विचारों को समझने और अपने जीवन में मानवीय मूल्यों यानी संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाने का संकल्प लें। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है

0: की पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: God. नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 कल पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे 29 जुलाई को ही पारित कर दिया था। विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा।
1: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
0: लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं।
2: विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जाँच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद ने कल ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पास किया, जबकि राज्यसभा ने 29 जुलाई को ही इसे पारित कर दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: राष्ट्र

0: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के कानून बनने के बाद वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। ये युवा देश के लगभग 10,000 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल लखनऊ के जनभवन से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वर्चुअल संवाद की रूपरेखा और अन्य तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजीपुर जिले में 692 करोड़ की 268 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गाजीपुर में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने की अपील की।
2: मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर गाजीपुर का नौजवान, गाजीपुर का किसान, गाजीपुर की बेटी और बहनें, गाजीपुर का व्यापारी यहां के विकास के लिए 10 कदम चलेगा तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे बढ़ा करके काम करेगी।
0: श्रावण मास कल से शुरू हो गया। इस दौरान कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और DGP राजीव कृष्ण ने बरेली में बरेली और मुरादाबाद मंडल के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कल समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मीडिया से बातचीत की।
3: न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर जो व्यवस्थापना के बिंदु है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु है, डिप्लॉयमेंट के बिंदु है, उन विषयों पर चर्चा हुई।
0: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। जल्द ही यूपी रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा।
4: यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूस रेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8,000 से अधिक विवाद के मामलों में 2,173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए 5,000 से ज्यादा

0: शिकायतों का भी समाधान हुआ है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: बागपत जिले के छपरौली कस्बे के कुरैशियान मोहल्ले में कल शाम एक निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर जाने से मलबे के प्रशासन की मदद से मलबे को हटाकर दो शवों को बाहर निकाला गया, जबकि गंभीर तौर पर घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रेफर होने के बाद इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय रास्ते में तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई। प्रदेश में कई जिलों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पारित। वंदे मातरम गीत के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का है प्रावधान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत 2 अगस्त को देश भर के करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: जगह तक ना पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 7:32 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आइए आपको सुनवाते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा। राग है गाओटी अलाप।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा, राग था गौटी अलाप। इसी के साथ ये कार्यक्रम

0: समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को हैं, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
4: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डेटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
3: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
3: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर प्रदर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या

0: को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरो मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य

0: सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सजा, सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निज़ाम को मज़ीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाज़रानी को तहफ़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इतिहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। माहीगीरों से कल तक समंदर में न जाने के लिए कहा गया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। सीमा कलीरमना ने डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। कल राज्यसभा में मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। बुध के रोज लोकसभा में इस बिल को मंजूर कर लिया गया था। इस बिल में मुख्तलिफ अहम जाब्ते शामिल किए गए हैं, जिनमें 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और कसूरवार अफराद की इमलाक जब्त किए जाने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। मामलात को जल्द निपटाए जाने को यकीनी बनाने की खातिर ये बिल हर रियासती हुकूमत और मरकज के सिरे इंतजाम इलाके को इख्तियार देता है कि वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करें। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले और वजीर आजम के दफ्तर के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले से भारत के हर शहरी का ताल्लुक है और इस मुल्क का हर शहरी ज़ाती तौर पर इससे मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 गुज़श्ता दहाई में यकसर तब्दीली वाली साबित हुई है। ऐवान में बिल पेश करते हुए डॉक्टर सिंह ने मोदी हुकूमत के पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों और पेपर लीक को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के अज़्म का इयादा किया। बहस में शामिल होते हुए अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुजव्वजा तरामीम पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों को रोकने में मुअस्सर साबित नहीं होंगी। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके, एनसीपी, आप, बीजेडी, आरजेडी, सीपीआईएम और दीगर ने भी इस बिल पर बहस में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहान का एक भरोसेमंद निज़ाम तैयार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पिछली कई दहाइयों से हर रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत ने पेपर लीक के मसले का सामना किया है, जिसने तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए ही रियासतों और मरकज में तालीम और इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात करना लाजिमी हो गया है। वजीर आजम ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया जिसमें सख्त कानूनी शिकों को शामिल किया गया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: कौम आज इनकलाबी मुजाहिदे आज़ादी शहीद ऊधम सिंह को उनके 87वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। शहीद ऊधम सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को

0: पंजाब में बरतानिया के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को कत्ल कर दिया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जलियांवाला बाग कत्लेआम की तलख यादें उधम सिंह को उस वक्त तक परेशान करती रहीं जब तक कि उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारकर हलाक नहीं कर दिया। जेल में रहते हुए वो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम इस्तेमाल करते थे, जो भारत में तीन बड़े मजाहिब और नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ उनके जज्बात की अक्कासी करता है। उन्हें 1940 में आज ही के दिन कत्ल का मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी। इस इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी की शहादत को मनाने के लिए पंजाब में उनकी जाए पैदाइश सोनम में एक रियासती सतह के प्रोग्राम का अहतमाम किया जाएगा। हरियाणा सरकार भी आज सनौर में एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आज़ादी उधम सिंह के यौम शहादत के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने उधम सिंह को गैर मामूली जुरत और बहादुरी की एक अलामत करार दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत के महकमाए मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के बड़े हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की है। माहीगीरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो यकुम अगस्त तक मछली पकड़ने समंदर में ना जाएं। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रियासती इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है और वो सभी एहतियाती इकदाम कर रही है।
2: गुजरात में मानसून की सूरत हाल संगीन है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज 13 ज़िलों के लिए बहुत शदीद बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। जिन ज़िलों में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें वस्ती और जनूबी गुजरात, नीज, अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ शामिल हैं। अहमदाबाद और नवसारी समेत बहुत से मुतासर ज़िलों में स्कूल और कॉलेज आज एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। इस दौरान रियासती सरकार ने ज़िला इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की हैं ताकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज़ी से बाहिफाजत निकालने को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: जम्मू और कश्मीर में अहदेदारान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म दिया है ताकि समरोली में लाढ़ा के नज़दीक उधमपुर चेनानी हिस्से पर भाली के काम में सहूलत हो सके। केरलम के साहिल पर आज रात ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केरल के साहिल पर जुमे और हफ्ते की निस्फ शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्रॉलिंग पर सालाना पाबंदी इसलिए नाफिज की गई थी ताकि समुद्र में मछलियों की अफजाइश नस्ल में आसानी हो। फिशिंग सेक्टर में हजारों वर्कर्स मछलियां पकड़ने के नए सीजन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मछलियां पकड़ने वाले उन माहीगीरों ने थिरुअनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और दीगर इलाकों के नज़दीक बंदरगाहों पर पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया है, जो अपने आबाई कस्बे में लौट आए थे। दरियासना इंतहाई ख़राब मौसम और मछलियां पकड़ने से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियों के इम्कान ने माहीगीर बिरादरी में तश्वीश पैदा कर दी है। केरल में 14 ज़िलों में से 11 ज़िलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थिरुअनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है, जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतअद्दिद मुल्कों की फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया है। इत्तेहाद की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद का मकसद आलमी बहरी सिक्योरिटी को दरपेश बढ़ते चैलेंजों से निमटना है। इसमें कहा गया है कि ये इत्तेहाद बहरी दिफाई इश्तराक के लिए एक तरीक़ाकार फराहम करेगा, जिसका मकसद बहरी सिक्योरिटी में इजाफा करना, आज़ादाना जहाजरानी को तहफ़ फराहम करना, तजारत के बैनुल अक़वामी रास्तों को महफूज बनाना और तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाना है। ये इत्तेहाद आबनाए बाबल मंदब, बहर अहमर और खलीज अदन में मुश्तरका बहरी मफादात के तहफ़ की कोशिशों का एक हिस्सा है, जो बैनुल अक़वामी कानून के ज़ाब्तों से मुताबिकत रखता है। इस इत्तेहाद के बानी मेंबरान में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, उर्दुन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, जिबूटी और सोमालिया शामिल हैं। अमरीकी

सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है, जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी आवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा, जिसका वो मुस्तहिक है, और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया।

0: साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा जिसका वो मुस्तहिक है और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमास के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वो गजा में हमास और दीगर ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को इस समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले की एक कान में धमाके के बाद कम से कम 18 कानकुन हलाक हो गए और 24 दीकर उसमें फंस गए। ये धमाका बज़ाहिर मीथेन गैस की वजह से हुआ। अहलकारों के मुताबिक इस धमाके के कुछ घंटे बाद इब्तदाई तौर पर 7 कानकुनों की लाशें बरामद की गईं और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने वाले अफराद को बाद में मजीद 11 लाशें मिलीं। हुकूमत के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने कहा है कि जब तक फंसे हुए कानकुनों का पता नहीं चल जाता उस वक्त तक बचाव कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आम शहरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं जिनमें 40 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मकबूजा इलाके में मकामी हुकाम अब उन ख़वातीन को निशाना बना रही हैं जो अपने बुनियादी हकूक के लिए मुजाहरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा ख़वातीन मुजाहरीन पर फायरिंग भी की। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल रात भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दों के 110 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता, जबकि सीमा कलीरमना ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलिया 110 तमगों के साथ पहला मकाम बरकरार रखे हुए है, जबकि भारत 17 तमगों के साथ 10वीं पोजिशन पर है। भारत ने सोने के 3, चांदी के 10 और कांसे के 4 तमगे जीते हैं। इससे पहले कल दिन में नीरज चोपड़ा ने मर्दों के नेजा फेंकने के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है और रोहित यादव के अलावा यशवीर सिंह भी फाइनल में पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में एथलीट सीमा कलीरमना को खवातीन के डिस्कस थ्रो मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने सीमा कलीरमना की इस हुसूलयाबी के लिए तारीफ की है और कहा है कि ये उनकी लगन, सख्त मेहनत और इस्तेकामत का एक वाज़े सबूत है। आज़रबाईजान के बाकू शहर में 17 साल तक की उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शेरावत को ख़वातीन के जुमरे के फाइनल में अमरीकी पहलवान से हारने के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि कमना बाबल और करीमा ने कांसे के तमगे जीते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर आजम ने काबीना कमेटी बराए सलामती की खसूसी मीटिंग तलब की। मस्कूरा मीटिंग में मगरबी एशिया के बहरान और भारतीयों के तहफ़ के अलावा तवानाई और खाद के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तारीखी आलमी बहरी सफर से वापस लौटी तीनों अफवाज की खवातीन अफसरान की वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की इज्जत अफजाई। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर जगह दी है। शुमाली भारत में 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, ये खबर सभी अखबारों में नुमाया है। इस दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के लिए वार्निंग जारी की गई है। रोजनामा इनकलाब की एक अहम शह सुर्खी है, दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने की असलाहत मुहिम तेज, इसके तहत तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को अगस्त के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। मीडियम वेव 400

श्रोताओं, सुबह के 8:45 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। तो आप सभी श्रोताओं के मेल और फरमाइशी फिल्मी गीतों को लेकर हम हाजिर हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप हमें मेल भेज सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों को। तो हमारे इस कार्यक्रम में मेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। ईमेल आईडी है आपके मेल आपके गीत @gmail.com। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, इस गाने के साथ।

सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, ये गाना आप सुन रहे थे हम सब चोर हैं इस फिल्म से। आवाज़ें थी अलका याग्निक के साथ कुमार सानू की, गीत के बोल लिखे थे नवाब आरजू ने और संगीत था बप्पी लहरी का। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम का था पहला गीत जिसकी फरमाइश का मेल हमें आया है दतरंगी से। लिखने वाले श्रोतागण हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती देवी, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। आप सबकी फरमाइश पर हमने आपको सुनवाया ये प्यारा सा गीत। और कार्यक्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे कार्यक्रम में अगला मेल शामिल करते हैं। तो उससे पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि आप भी हमें मेल कर सकते हैं हमारे इस ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी नोट करें, हमारी ईमेल आईडी है आपकी मेल आपके गीत @gmail.com। तो इस मेल आईडी पर अपनी फरमाइशी फिल्मी गीतों को सुनने के लिए आप मेल कर सकते हैं। तो जल्दी से करें हमें मेल और हम आपको सुनवाएं आपके पसंद का ये गीत। तो चलिए अगला मेल शामिल करते हैं जो आया है हमें मोताला महाराष्ट्र से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी ओम। तो आइए आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का ये गीत आपकी फरमाइश पर, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म है सिंदूर।

0: आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बनाई तर्ज पर सिंदूर फिल्म में। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज थी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। तो चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में हमारा अगला मेल, जो आया है क्रोध फिल्म की इस गीत की फरमाइश का। आपको बता दें, ये मेल हमें भेजा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप जी ने। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे आपके पसंद का ये गीत। आपने हमें इतने प्यार से मेल भेजा और हम आप सभी श्रोताओं से फरमाइश करना चाहेंगे कि अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का जो आप मेल भेजना चाहते हैं वो हमारे इस ईमेल आईडी पर भेजें। हमारी ईमेल आईडी है आपके मेल आपके गीत @gmail.com। तो चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर आनंद बख्शी का लिखा ये गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में और फिल्म है क्रोध।
1: नपनकार तुझसा

श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम। और कार्यक्रम में आइए अब अगला मेल शामिल करते हैं। ग्राम पोस्ट पेंतेपुर जिला सीतापुर से बसंत कुमार जी का। जी हाँ, बसंत जी ने अपनी फरमाइश का गीत हमें भेजा है और हमें भेजा है प्यार भरा नमस्कार। तो आपको भी हमारी तरफ से यानी आकाशवाणी लखनऊ की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आइए आपकी फरमाइश

पर आपको सुनवा देते हैं एक कली मुस्कुराई, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत है मदन मोहन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। तो जल्दी से करें हमें मेल इस ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है आपके मेल आपके गीत @gmail.com। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अपना अगला मेल, जिसे लिखा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल ने। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

धरती फिल्म में इस गाने को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसी के गीत के साथ ये कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 9:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का।
1: गत दिनों बरेली में ब्रज विज्ञान भारती की ओर से आयोजित विज्ञान शिक्षा नेतृत्व संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से छात्रों ने अपनी अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में विजयी रहे छात्र छात्राओं को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। इसके साथ ही अन्य लोगों से बड़ी संख्या में वृक्षारोपण की अपील भी की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एनडीए सरकार बनने के बाद जिस तरह से विकास हुआ है उससे देश की जनता खुश है, आम आदमी की आय बढ़ी है। छात्रों में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की उत्सुकता को और अधिक बढ़ाने के लिए बरेली कैंट छावनी में खगोलीय लैब बनाई गई। इस लैब का उद्घाटन रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता ने किया। तकनीकी उपकरण से लैस इस लैब के जरिए बच्चे ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी जुटा सकेंगे। मुख्य अधिशासी अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड डॉक्टर तनु जैन ने कहा कि छात्रों में हमेशा ब्रह्मांड को लेकर काफी उत्सुकता होती है और इसी उत्सुकता को और अधिक बढ़ाने के लिए बरेली छावनी परिषद ने इसकी शुरुआत की है।
2: साइंटिफिक टेम्पल ऑफ स्टूडेंट्स डेवलप करने के लिए एक हमारा प्रयास है। यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं हम उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की हमने लैब्स यहाँ डेवलप करी हैं। हमने यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया और बेसिक इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं जिससे कि बच्चों को ये पता रहे कि कौन से इक्विपमेंट्स का क्या मतलब होता है।
1: बरेली में महाभारत कालीन लिलौर झील पर्यटन के लिए नई डेस्टिनेशन बनने जा रही है। गत दिनों झील पर आयोजित कार्यक्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने झील पर किए जाने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया। नौका विहार टॉय ट्रेन के बाद इस झील के किनारे सरकार ने पर्यटकों के रुकने के लिए कॉटेज भी बनवाए हैं। इसके साथ ही इस झील पर मल्टीपर्पज हॉल व टॉयलेट भी बनाए जा रहे हैं जिससे कि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लगभग 3 करोड़ की लागत से इन कार्यों का पूरा किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर इस झील पर आए थे तो यक्ष के साथ उनका संवाद यही हुआ था, इसलिए इस झील का काफी महत्व है। अब इस झील को जीवांत करने के बाद पर्यटन मंत्रालय इसे सैलानियों के लिए बेहतर बना रहा है। पशुओं में संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुक्त टीकाकरण पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने टीकाकरण की शुरुआत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर टीमों को रवाना किया। पूरे प्रदेश के 18 मंडलों में ये अभियान चलाया जाएगा जिससे कि पशुओं में संचारी रोगों को बचाया जा सके। टीकाकरण अभियान को लेकर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार मानव ही नहीं बल्कि पशुओं की भी चिंता करती है। जिस समय पर ये टीकाकरण शुरू किया गया है ताकि पशुओं में खुरपका मुंहपका जैसे संक्रामक रोग ना फैल सके। 22 जुलाई को बरेली पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित परियोजनाओं और अन्य शिकायतों की गहन समीक्षा की। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने पार्टी द्वारा आयोजित बूथ सम्मेलन भी शिरकत की।
0: बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
3: भगवान शिव की आराधना के लिए विख्यात श्रावण मास का प्रारंभ गुरुवार से हो गया है। यह मास पर्यंत शिव भक्त अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक विभिन्न शिवालयों में करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन मास शिव को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए सावन मास के प्रत्येक शिवालयों में जलाभिषेक किए जाते हैं। जनपद सीतापुर के विभिन्न स्थानों पर स्थित शिवालयों में सावन मास में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सीतापुर मुख्यालय स्थित श्यामनाथ मंदिर समेत बिस्वा के पत्थर शिवाला और नैमिषारण्य समेत अन्य स्थानों पर स्थित शिवालयों और मंदिरों में पूरे सावन मास में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस अवसर पर मंदिरों में विविध आयोजन समेत मेले का भी आयोजन किया जाता है। सावन में पवित्र नदियों अथवा जलाशयों का जल भरकर भक्तगण विभिन्न शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया को श्रावण कहा जाता है और श्रावण ले जाने वाले भक्तों को श्रावणिया कहा जाता है। सावन में श्रावणियों की भारी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मार्गों पर यातायात का डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया है।
4: लगातार पुलिस द्वारा पहले बैठकें की गई, सभी टीचर संस्था जो संचालक उनसे बात हुई है, जो कावड़ संस्थान

0: माहौल चलाते हैं, कमेटियाँ हम सब सब रात को ये जितने मंदिर हैं उसके सब पे हमारी ड्यूटी कल सुबह से रहेगी, पोस्टर पार्टी हमारी रहेगी, सेक्टर दोनों स्कीम में मजिस्ट्रेट और सीओ की ड्यूटी लगा दी है, बहुत शांतिपूर्वक पूरा कवर को मुहैया कराया जाएगा।
1: नजूल भूमि समेत सरकार के स्वामित्व वाली इमारतों और प्लाटिंग पर अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपतकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया जा चुका है। इस अभियान में जहां प्लाईवुड फैक्ट्री जैसी प्रसिद्ध इमारत को कब्जेदारों से मुक्त कराया गया है, वहीं ऐतिहासिक रंपा महल को भी खाली कराया गया है। पत्रकार राजवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। मृतक पत्रकार की पत्नी ने विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर हत्याकांड में शामिल वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग मुख्यमंत्री से की। मृतक की पत्नी ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि इस हत्याकांड में शामिल गुनाहगारों को जेल के पीछे भेजा जाए और घटना का निष्पक्ष खुलासा हो। करीब 2 वर्ष पूर्व पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी की शरेआम गोली मारकर असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने सीतापुर में पहुंचकर महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुना और उनके कल्याण हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सदर तहसील सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में सुजीता कुमारी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनके हित के लिए कार्य कर रही है, किंतु महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला कल्याण को सर्वाधिक महत्ता देते हुए वे अपने स्तर से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने में सार्थक भूमिका निभाएं। उन्होंने महिलाओं से भी अनुरोध किया कि वे बिना किसी शर्म संकोच और भय के अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखें और उनके निस्तारण के लिए प्रयास करें। यदि जिला स्तर पर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे महिला कल्याण विभाग समेत राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला आयोग महिलाओं के हितों के लिए सदैव अग्रसर रहता है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
4: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
5: तुमने दिया आवाज, लो मैं आ गया।
4: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, आइए डालते हैं एक नज़र आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों पर।

रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से रिले और साथ ही संसद में हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10

बजकर 10 मिनट का और सुबह 9:30 पर यानी अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद पर मबनी खसूसी प्रोग्राम दास्ताने कलमकार मुंशी प्रेमचंद। इस खसूसी प्रोग्राम की पेशकश होगी आसिफ इकबाल की और प्रेजेंटर होंगी शाइस्ता जाहिद। लोकगीतों से सजे लोकरंग कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे सुनील कुमार श्रीवास्तव, जो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे अवधि लोकगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर और साथ ही साथ इन्हीं के गाए लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं लोकमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 2:45 से। विज्ञान और किसान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार यादव की भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। जवानों के लिए फौजी भाइयों के लिए ये फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम जवानों के लिए आप सुनेंगे दोपहर 1:50 से। तो ये थी रूपरेखा हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और अब आइए आपको सुनवाते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हो चुके हैं और अब पेश है

मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं।

0: मुबारक खान शहीद ईदगाह को देखकर ही उन्होंने अपनी कहानी ईदगाह जैसे शाहकार और उसके किरदार हामिद को तराशा। हजरात आइए अब खोलते हैं दास्तान की तीसरी गिरह। ये नौजवान धनपत राय का उर्दू अदब की दहलीज पर पांव जमाने की कोशिशों का दौर था। अपने तिलस्मी कलम के लिए उन्होंने खुद को नवाब राय के नाम से मुखातिब किया और मजदूरों और देहकानों के हालात, मजबूरी और बेबसी को उनकी कलम ने बड़ी बेबाकी से बयान करना शुरू किया। लेकिन हुजूर, वो कहते हैं ना, सच की राह पर चलने वालों की राहों में आजमाइशों के बेशुमार कांटे होते हैं। अब जिक्र करते हैं सन 1908 का, जब नवाब राय का पहला अफसानवी मजमुआ सोजे वतन शाया हुआ तो बरतानिया हुकूमत के ऐवानों में मानो जलजला सा आ गया। उनके इस मजमुए में हुब्बुल वतनी की एक ऐसी आतिश छुपी थी जिसे अंग्रेजी हुकूमत बर्दाश्त न कर सकी और नवाब राय को बागी करार देकर सोजे वतन की हजारों कॉपियों को कलेक्टर ने जब्त कर लिया और भरे बाजार में आतिश जदा कर दिया गया। अब हुजूर, हुकूमत ने इस ज्यादती के बाद ये समझा कि उन्होंने एक बागी कलमकार की कलम को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन ये उनकी सरासर भूल थी, क्योंकि जब एक गिरह बंद होती है तो अभी तो दूसरी गिरह खुलती है। उनकी इस ज्यादती ने नवाब राय को तो खामोश कर दिया, लेकिन प्रेमचंद को नई जिंदगी बख्श दी। उस दौर में जमाना मैगजीन के एडिटर मुंशी दया नारायण निगम ने, जो कि उनके खैर ख्वाहों में से थे, उन्हें तजवीज किया कि वो प्रेमचंद के नाम से लिखें और फिर इस तरह लम्ही का वो गुमनाम धनपत राय सोजे वतन के नवाब राय से प्रेमचंद बन गया। तो दास्तान की अगली गिरह खुलने वाली है, दिल थाम के सुनिए सामाइन के आगे क्या हुआ। आइए अब आपको याद कराते हैं सन 1921 का वो जमाना जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर रखा था और उन्होंने तमाम अहले वतन से अपील की थी कि वो लोग सरकारी नौकरी से दस्तबरदार हो जाएं। ये फरवरी 1921 के असहयोग आंदोलन यानी कि तहरीक तर्क मवालात की एक कड़ी थी। प्रेमचंद उस वक्त महकमा तालीम में डिप्टी सब इंस्पेक्टर थे। घर में दो छोटे बच्चे, बीमार बीवी और खराब हालात के बावजूद उन्होंने गांधी जी की अपील से मुतासिर होकर फौरन सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। घर में चूल्हा जलना दूभर हो गया, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के सीने में तो हुब्बुल वतनी की चिंगारियां भड़क की शोला बन चुकी थीं। दरअसल प्रेमचंद ने मुश्किल हालात देखे नहीं थे, बल्कि खुद जिए थे। यही वजह है कि आज भी उनके अफसाने सिर्फ पढ़े नहीं जाते, जिंदा हकीकत की तरह हमारे आसपास देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। फैज अहमद फैज का एक बेहद मशहूर शेर जैसे मुंशी प्रेमचंद की जिंदगी की अक्कासी के लिए ही लिखा गया है।
1: मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबा ली है उंगलियां मैंने।
0: सामाइन, वो दास्तान ही क्या जहां हर वक्फे पर एक नई रस्म, नई बज्म, नया तिलस्म और नई अय्यारी से सामना ना हो। तो आइए अब अगली गिरह में इस अदीब के अफसानवी किरदारों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो दास्तान गोई के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराएंगे उनकी दास्तानों के कुछ किरदारों से। तो साहिबान, आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अफसाना कफन के बेबाक, निकम्मे, ढीठ, बेबस और अय्यार घीसू और माधव से। आपको याद तो होंगे ना, आइए अफसाना कफन के इन किरदारों से मिलते हैं। अपनी घरवाली की फौत होने पर चंदे में मिले कफन के पैसों को भी नशे में उड़ाने वाला घीसू कहता है,
2: कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर में जल ही तो जाता। ये जो मरने वाली ने हमें पूरी कचौरी खिलाई है, इसका पुण्य उसे जन्नत में जरूर मिलेगा।
1: हाँ बेटा, वो बहुत अच्छी थी, मरने पर भी हमें सुलह करवा गई। ये दुनिया बड़ी अजीब है।
0: सामईन, आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं प्रेमचंद के शाहकार नॉवेल गोदान की धनिया से। होरी की मौत का वक्त अनकरीब है। गुर्बत का ये आलम है कि घर में एक थैला भी नहीं है, लेकिन पंडित जी कहते हैं,
2: गोदान करो वरना आत्मा भटकेगी।
0: धनिया अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू को कमर में लपेटकर आंचल से तीन आने निकालकर पंडित के मुंह पर मारती है और रोती हुई चिल्लाती है,
3: महाराज घर में न गाय है न बछिया, बस अब यही तीन आने हैं, इन्हीं का गोदान है, ले लो और जान बख्श दो। तुम जैसो का

0: किसान की मौत से भी नहीं भरता। समय धनिया की शक्ल में प्रेमचंद ने समाज के घिसे पिटे आडंबरों और रीति रिवाजों में जकड़ी एक ऐसी औरत की तस्वीर खींची है जो गरीब है मगर उसकी हिम्मत और हौसले को सलाम है। कोई जमींदार या रस्मों के हवाले से मां लैटने वाला पंडित भी उसे पस्त न कर सका। धनिया कहती है, जब पानी सर से गुजर जाए तो डर कैसा। सामईन अब तस्वीर कीजिए एक ऐसे किसान की लाचारी और बेबसी का जो आपकी आंखें नम कर जाएगा। पूस की रात के किरदार हल्कू के दर्द और बेबसी का, उस कपकपाती ठंड को महसूस कीजिए जो एक किसान अपनी फसल को, अपने असासे को अपनी औलाद की तरह महफूज करने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता है, जी जान एक कर देता है, लेकिन वो हार जाता है हालात से। उस माहौल को महसूस कीजिए उस एक सर्द कपकपाती रात में जब अपने कुत्ते जबरा को गले से चिमटाए हल्कू बैठा है और उसकी बीवी रोते हुए आकर बताती है, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये सुनकर हल्कू रोता नहीं है बल्कि एक ठंडी सांस भरकर कहता है,
1: फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, कम से कम ठंड में इस खुले

0: को महसूस कीजिए उस एक सर्द कपकपाती रात में, जब अपने कुत्ते जबरा को गले से चिमटाए हल्कू बैठा है और उसकी बीवी रोते हुए आकर बताती है, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये सुनकर हल्कू रोता नहीं है, बल्कि एक ठंडी सांस भरकर कहता है,
1: फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, कम से कम ठंड में इस खुले आसमान के नीचे रात को सोना तो नहीं पड़ेगा ना।
0: यानी बेबसी को ही हल्कू ने राहत का दूसरा नाम दे दिया, अपने हालात से लड़ने का हथियार ढूंढ लिया था। दरअसल प्रेमचंद के ये किरदार जिंदा हैं, आज भी हमारे आसपास। किसान, गरीबी, भूख, बेबसी, हर दौर की वो कड़वी हकीकत है जिसे आप और हम नकार नहीं सकते। चलते फिरते आम जिंदगी में आपको घीसू, माधव, धनिया और हल्कू अलग अलग नामों और किरदारों से कभी भी कहीं भी मिल जाएंगे। मुंशी जी के किरदारों को आज के इस अहद हाजिर के मुआशरे में सरे बाजार खड़ा करके देखते हैं कि क्या वो मुंतकिल हो चुके हैं या आज भी हमारे और आपके दरमियान सांस ले रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए उनके मशहूर और मारूफ नॉवेल सेवा सदन की सुमन का। सामईन, वो सुमन और उसके जैसी मजबूर खवातीन आज भी आपको मजामीन नौ के पर्दे पर या कारखाना तिजारत के उन ऐवानों में कहीं न कहीं मिल जाएगी, जहां आज का बेरहम मुआशरा उसकी बेबसी का फायदा उठाकर उसकी इस्मत और उसके फन की बोली लगाता है। जो जहनी कश्मकश और जो कर्ब सुमन ने उस दौर में झेला था, उसी कर्ब से आज के समाज में भी कई सुमन गुजर रही हैं। बस अगर बदला है तो नाम और पैरहन भर। वो कर्ब आज भी लादवा है। और अब सामईन जरा तसव्वुर कीजिए मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल रंग भूमि के उस गदागर सूरदास के बारे में, जिसके पास महज एक शिकस्ता अराजी का टुकड़ा है। वो नाबीना सूरदास अपनी उस अराजी के लिए पूरे निजाम हुकूमत से टकरा जाता है। वो कहता है, फतह वो नहीं जो अग्यार को मगलूब कर दे, फतह तो वो है जो अपने ईमान को शिकस्त ना होने दे। और सामईन, आखिरकार वो इसी मारा याराई में अपनी जान कुर्बान कर देता है। सामईन, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज वो नाबीना सूरदास कहाँ है? है सामईन, है। आज वो सूरदास आपको शहरारों के किनारे अपने पुश्तैनी अराजी सरमायादारों के हाथों छिनते हुए देखने वाले उन मफलूकुल हाल दिकान की सूरत में मिलेगा। सूरदास की बेअमा जंग आज का हर वो शख्स लड़ रहा है जो साहिब इख्तदार के आगे सर्बसजूद होने से इनकार कर देता है। सामईन इकराम, यकीनन हम और आप मुंशी जी के नॉवेल निर्मला की किरदार निर्मला को भला कैसे फरामोश कर सकते हैं? दहेज की लानत की वजह से जिसका अख्त उसकी उम्र से दुगने बुजुर्ग मुंशी तोताराम से कर दिया जाता है, वही निर्मला सामईन जो घुट घुट के अपने ही शबाब के कफन में लिपट कर रहलत फरमा जाती है। जी हाँ, आज भी कोई न कोई निर्मला कहीं न कहीं निकाह के सुतूर पर अपनी उम्र, अपनी शक्ल सूरत और अपने वालिद की बिसात का सौदा करती हुई किसी अनचाहे असीर में घुट घुट कर जी रही है। दरअसल हम आज भी उसी समाज में जी रहे हैं जहाँ बेटी की विलादत पर वालिद की पेशानी पर शिकन मलाल आ जाती है। और अब जरा इस कसीरुल मजा मगर अशकामेज अफसाने को याद कीजिए। बड़े भाई साहब, जी हाँ, वही बड़े भाई साहब जो शबो रोज कुतुब पीने में गर्क रहते हैं और इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, मगर तजर्बात की अजमत का ढिंडोरा पीटते रहते हैं और उनका खुद भाई लहवो लाभ में मसरूफ रहकर भी अव्वल आ जाता है। बड़े भाई साहब फरमाते हैं, किताबी कीड़ा होना अलग शय है और मुआशरे के नफ्स को समझना जुदा बात है। सामईन, आज वो बड़े भाई साहब आपको हर उस दरसगाह तिजारत के बाहर मिल जाएंगे जहाँ पर नौनिहालों के जहन पर आज फीसद नंबरों का बारे गरा मसलत कर दिया गया है। ये अंधी दौड़ें आज भी जारी हैं। आज के इस मुसाबकत के दौर में अपने लख्त जिगर को एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ा रहा है जहाँ सनदें तो बहुत कसीर मिल रही हैं, मगर अखलाकियत और आगाही कहीं पीछे छूट गए हैं। सच तो ये है सामईन, मुंशी प्रेमचंद ने जो तहरीर किया वो महज एक सदी कबल का गुजरा हुआ कल नहीं था, वो हमारा अहले इमरोज भी है और आने वाला कल भी। जब तक हमारे माशरे में अमीरी और गरीबी का बोध रहेगा, जब तक जज्बात का सौदा बाजार मिस्र में होता रहेगा, प्रेमचंद का एक एक किरदार जिंदा जावेद रहेगा, हमारी चश्म से झांकेगा, हमारे जमीर को झिंझोड़ता रहेगा। कचोट

0: का रहेगा। तो चलिए सामईन, अब किरदारों की दुनिया से बाहर आते हैं, मुंशी प्रेमचंद की एक और जद्दोजहद के बंधन में बंदी की रह खोलते हैं, जो इस खुदगर्ज और तिजारती दुनिया और एक दरवेशाना मिजाज मुसन्निफ के बीच की जंग की अक्कासी करती है। प्रेमचंद ने कौम की आवाज बुलंद करने के लिए सन 1930 में अदबी जरीदा हंस निकाला, लेकिन इस जुनून शौक ने उन्हें माली मसाब के कैसे दलदल में गिरा दिया जहां से बाहर निकलना मुहाल था। इस गिरह को सुलझाने की खातिर उन्होंने सिनेमा नगरी का भी रुख किया, मगर वहां की नुमाइश और सरमायादारी उनके सावगो मिजाज को रास न आई। आलीजा, अब दिल थाम के बैठिए जनाब, क्योंकि इस दास्तान कलमकार की आखिरी गिरह के बंद खुलने जा रहे हैं, जो जिंदगी और मौत के दरमियान का सफर तमाम करेगी। बात 1936 की है, लखनऊ में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई, जहां मुंशी प्रेमचंद को पहला सदर मुंतखब किया गया। वहां पर वो बिजली की तरह कौंधे और फिर शेर की तरह दहाड़े।
1: हमें अदब का मेयार बदलना होगा, अब हमारा अदब मजदूरों के माथे के पसीने में चमकेगा।
0: मगर सामईन, अफसोस, मुसलसल बीमारी और मुफलिसी की मार ने उनकी जिस्मो जान को निहायत लाफुलागर कर दिया था। 8 अक्टूबर सन 1936 की वो एक सर्द सुबह थी, जब इस अजीम कलमकार ने इस दुनियाए फानी में अपनी आखिरी सांसें ली और जिंदगानी की ये फानी गिरह हमेशा हमेशा के लिए खुल गई।
2: जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।
0: तो सामईन महफिल, ये थी दास्तान उस मुकद्दस कलमकार की, जिसकी जिंदगी की हर गिरह ने उसके अंदर एक नए किरदार को जन्म दिया। जमाने के हाकिमों ने उनकी अदबी खिदमात के लिए यूं तो उन्हें कोई तमगा नहीं दिया, लेकिन अवाम और बंगाल के अजीम मुसन्निफ शरद चंद चट्टोपाध्याय ने उन्हें नॉवेल सम्राट के लाफानी तख्त पर बिठा दिया। उनका जिस्म भले ही खाक में मिल चुका है, मगर उनकी लाजवाल तहरीरें और उनका तिलस्म आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनके अफसाने आज भी हर उस इंसान के दिल पर हुकूमत करते हैं, जिसके सीने में धड़कता हुआ एक दिल है और जिंदा ज़मीर मौजूद है। प्रेमचंद का एक अफसाना आज इस वक्त भी मेरे हाथों में मौजूद है, और इसके औराक पलटते हुए मुझे गुलजार का एक शेर बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्यूड़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं, जिसे हम दिल का वीराना समझकर छोड़ आए थे, वहां उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं, कुछ आसार मिलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम, आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज़ से। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

श्रोताओं, मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण धड़कन देश की। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:50 और 6 सेकंड हो रहे हैं और अब चलिए आपको लिए चलते हैं गांव जवार की माटी से जुड़े लोक परंपरागत गीतों की ओर। कार्यक्रम है लोक रंग। तो आज हमारे कार्यक्रम में अवधी माटी की खुशबू फैलाने आ रहे हैं सुनील कुमार श्रीवास्तव। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया लोक भजन।

सुनील कुमार श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत आप सुन रहे हैं लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत, और अब आइए इन्हीं का गाया आपको सुनवाते हैं, ये कजरी।

सावन का महीना चल रहा और कजरी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, सुनील कुमार श्रीवास्तव के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे कुछ अवधी लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो।

0: पर हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी, श्रोताओं के दिल कहे नई उड़ान दिखाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज़।
1: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। श्रोताओं, सुबह के 10 बज चुके हैं और अब चलिए आपको लिए चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम है फिल्म संगीत। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, अनाड़ी फिल्म से साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ में।

0: और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रही थी आनंद मिलिंद की बनाई तर्ज पर हरिहरन और साधना सरगम की आवाज में। फिल्म थी दहक। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह के 10:10 होने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। तो बने रहें हमारे साथ और ट्यून करके रखें आकाशवाणी लखनऊ।

कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए, 10 अंदर फंसे हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत

0: और सीमा कलरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
1: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदेब जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश जोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: ये नई सरकार फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के निकट समन्वय में काम करेगी। उन्होंने कहा कि समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसराइल किसी भी शांति समझौते के लिए गजा पट्टी से हथियार और सेना हटाने सहित हमास की पूरी तरह की मांग करता रहा है। इसराइली सेना गजा में अपनी सैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ाती रही है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल गजा पट्टी के 70% इलाके पर अपना नियंत्रण कायम करना चाहता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए हैं और 10 अब भी अंदर फंसे हुए हैं। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण बताया जा रहा है। कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है। पाकिस्तान के कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अक्सर घातक हादसे होते रहते हैं। स्पेन के क्षेत्रीय नेता हुआन जेसुस विवास ने कहा है कि पिछले सप्ताह सैकड़ों प्रवासी मोरक्को से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एन्क्लेव क्वेटा में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे स्थानीय संसाधनों पर काफी असर पड़ा है। श्री विवास ने स्पेन सरकार से हस्तक्षेप करने तथा मानवीय और सुरक्षा आपातकाल की चेतावनी देने का आग्रह किया। स्पेन ने कहा है कि वे मोरक्को के साथ मिलकर अतिक्रमण रोकने और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने के लिए काम कर रहा है। यातना और क्रूर अमानवीय व्यवहार या सजा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रैपोर्टियर एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हिरासत में उचित चिकित्सा देखभाल न मिलने की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी पसंद के अनुसार चिकित्सा जांच और उपचार की अनुमति देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एडवर्ड्स ने बताया कि इमरान खान को 33 महीनों से एक छोटी और

0: खिड़की रहित कोठरी में एकांत कारावास में रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है। वर्ष 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान को कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा है। इस बीच पार्टी की संसदीय समिति ने इमरान खान की रिहाई और अन्य मांगों को लेकर 5 अगस्त से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुरामन ने भी फाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कांस्य पदक विजेता एथलीट सीमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि युवा महिलाओं को खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। उधर अजरबैजान में बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल ने और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इस बीच वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का यही सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान विकास सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
4: शहीद उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। उन्होंने 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मार दी थी। उन्हें माइकल ओ डायर की हत्या का दोषी ठहराते हुए वर्ष 1940 में आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी। पंजाब के संगरूर जिले में उनके पैतृक स्थान नाम में उनकी स्मृति में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। गृहमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का जीवन धैर्य, संकल्प और देशभक्ति का अप्रतिम उदाहरण बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन मनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए सहमति बनने की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयला खदान में विस्फोट से 32 खनिक मारे गए, 10 अंदर फंसे हुए हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 10:20 हो चुके हैं और अब चलिए आपको सुनवाते हैं सुहानी मनभावनी नई नई फिल्मी तराने, क्योंकि कार्यक्रम है चित्रपट से।

0: मिथुन की बनाई तर्ज पर आशिकी 2 फिल्म का ये गीत आप सुन रही थी अरिजीत सिंह की आवाज में।
1: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@lucknow.gmail.com पर या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर।

0: तो सर्वस्व दान करते हैं, युद्ध का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद
1: श्रोताओं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे प्रत्येक शनिवार, मंगलवार, गुरुवार सायं 6:50 से सायं 7:20 तक। और आपको बता दें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:00 से।

क्रेचर। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत और संगीत दोनों टोनी कक्कड़ का था। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नए नए फिल्में तराने। श्रोताओं, आपको बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुन सकते हैं प्रत्येक शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से 7:20 तक। और साथ ही आपको बता दें, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:00 से।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रीतम के बनाई तर्ज पर अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: घर आंगन माहे बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, और कार्यक्रम का आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में। गीत के बोल मनोज यादव के हैं और संगीत है चिरंतन भट्ट का। फिल्म है गब्बर इज बैक।

फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

अंकित तिवारी की बनाई तर्ज पर ये गीत था मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ। फिल्म थी एक विलन और इस गीत को गाया था अंकित तिवारी ने। श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, और कार्यक्रम का अगला गीत अब आइए आपको सुनवाते हैं सचिन जिगर, राघव चैतन्य और वरुण जैन की आवाज में। गीत के बोल इंद्रनील के हैं, संगीत है सचिन जिगर का और फिल्म है तेरी बातों में उलझा जिया।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आइए आपको सुनवाते हैं ऐश किंग और शाशा तिरुपति की आवाज में। गीत के बोल अराफात महमूद के हैं और संगीत है तनिष्क बागची का। फिल्म है हाफ गर्लफ्रेंड।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट से।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।

मुझको। सारी उम्र दिल में एक हंसी याद रही, सदियां बीत गई पर वो बात याद रही। न जाने क्या बात थी उनमें और हम में, सारी महफिल भूल गए बस वो आवाज़ याद रही। जी हाँ श्रोताओं, कुछ आवाज़ें समय के साथ खो नहीं जाती, बल्कि वो समय का हिस्सा बन जाती हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी हमारे लिए ऐसी ही धरोहर है। इस बारे में आज आपसे बातें होंगी दिन में 12:30 पर। कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध ये गीत। श्रोताओं, ऐसे ही कुछ और मधुर गीत को सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 12:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। फिलहाल अभी समय है आपकी पसंद के गीतों का सुनने का, तो हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त रेखा मिश्रा लेकर आपका मन पसंद कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, जिसे आप सुनते हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर के साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। जिन श्रोताओं को करनी हो हमसे बात और सुनना हो अपनी पसंद का कोई भी गाना, वो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0522-2238825। तो देर ना करते हुए आइए जान लेते हैं अपने पहले कॉलर के बारे में। हेलो
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय महाकाल, आप अपना नाम बताएं।
1: मैम शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ आपका श्रोता।
0: जी शिवा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं
1: आप? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है और बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं पहला कॉलर बना हूँ मैम।
0: जी अच्छा, तो हमें भी लगता है जब हमारे श्रोताओं का फोन आता है, तो क्या करते हैं आप, अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैम देखिए, एक्चुअली मैम ब्लाइंड

0: तो मैम और समाज सेवा के कार्यों में लगा रहता हूँ। जैसे हर 3 महीने में रक्तदान करना, और जैसे कि गाय की सेवा करना, गाय को चारा देना, पानी देना, पक्षियों को दाना पानी रखना, और समय समय पे गरीब लोगों को भोजन कराना
1: चलिए, बहुत
0: मैम,
1: अच्छी बात है। समाज
0: और
1: सेवा भी
0: वर्षा
1: बहुत ही
0: ऋतु में
1: ज़रूरी
0: पेड़
1: होता
0: पौधे
1: है।
0: लगाना
1: श्रीवा
0: मैम।
1: लोहट जी, आप हमें अपनी पसंद बताएं, हम आपको क्या सुनवाएं आज के कार्यक्रम में।
0: मैम मूवी का नाम है अचानक, और उसमें एक गीत रहेगा, ऊंची ऊंची दीवारों पे हम घुट घुट के मर जाएंगे।
1: चलिए, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूं रेखा मिश्रा। तो जो भी श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा नंबर नोट कर लें। नंबर है 0522-2238-825। और आइए बात कर लेते हैं अब अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो, नमस्कार दीदी जान।
0: नमस्कार, आप अपना नाम बताएं।
1: कहते हैं दीदी जान, एक लाइन बोलूं, मौसम बहारों का, मौसम नजारों का, मौसम सितारों का
0: जी।
1: और जब फोन नहीं लगता तो बुरा हाल होता है बेचारों का, उन श्रोताओं का दीदी जान, जब फोन नहीं लगता। और अब लग गया है तो मजा आ गई। मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से मजनू दीवाना बोल रहा हूँ दीदी जान, आकाशवाणी लखनऊ का मजनू दीवाना। आपको नमन करता हूँ दिल से दीदी जान, जो आपने मेरा फोन अटेंड कर लिया।
0: जी चांद मोहम्मद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपसे एक शिकायत भी है कि आप इतनी देर बाद हमें बोलने का मौका देते हैं।
1: अरे नहीं।

0: बोलना नहीं है, बोलना नहीं है चांद मोहम्मद जी, ये तो आपका ही कार्यक्रम है और आपको ही बोलना है, हमें तो बस गीत सुनवाना है। तो कौन सा गीत तो पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: ये कार्यक्रम है दीदी जान, सिर्फ कुछ कहो और कुछ हम कहो तो दीदी जान मन करता है कि थोड़ा के बात कर लें आपसे। गाने तो मायने नहीं रखते, गाने तो आप वैसे सुनवाती रहती हैं। तो मेरा कहना है कि ये कार्यक्रम जो होता है दीदी जान
0: जी,
1: तो ये हजारों दिलों की धड़कनें होती हैं और आकाशवाणी लखनऊ में क्या होता है हमें मतलब ये लगता रहता है कि श्रोताएं वही होते हैं, आप भी वही होती हैं, बातें कुछ नई हो तो मजा आ जाता है। और रफी साहब को भी मैं नमन करता हूं, और सर जी क्या है गाने भी बदलते रहो, ये सब तमाम चीजें बदलते रहो तो अच्छा लगता है, और नई नई बातें कुछ करते रहो जो जानकारियां श्रोताओं को अच्छी लगें।
0: जी जी चांद मोहम्मद जी, कार्यक्रम का नाम है कुछ तुम कहो तो कुछ हम भी कहें, तो आप हमें ये बता दीजिए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में।
1: हाँ थोड़ा भाभी जान से नमस्कार कर लो, फिर जल्दी से गाना बता दो
0: पहले।
2: दीदी
0: जी नमस्कार, आप चांद मोहम्मद जी की पसंद का गीत हमें बताना चाहेंगी?
2: आप कैसी हैं?
0: हम बढ़िया हैं, आप अपनी पसंद का गीत हमें बता दें तो हम आपको आपकी पसंद।
1: बिल्कुल जल्दी बता रहा हूँ दीदी जान, थोड़ा गुनगुना लेंगे बिल्कुल, चाहे हमारा गीत वो भले कम बजाइएगा। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू
0: जी,
1: और रफी लता जी की आवाज में सावन गीत है।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे फरमाइशी फिल्म संगीत का ये फोन इन प्रोग्राम, और आइए जान लेते हैं अगले कॉलर के बारे में। हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार, आप अपना नाम बताएं।
1: जिला औरैया ग्राम पुराने अछल्ला से गगनदीप कमल बोल रहे दीदी।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करते हैं दीदी।
0: तो खेती किसानी में इस समय क्या चल रहा है?
1: आप दीदी कार्यक्रम बहुत बढ़िया कर रही दीदी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि खेती किसानी में इस समय क्या चल रहा है?
1: रुपाई हो रही दीदी।
0: रुपाई अभी हो रही है। हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ, तो रुपाई के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप लोग कहाँ से लेते हैं? नहर में पानी आता है या बोरिंग करवाई है?
1: हाँ दीदी।
0: क्या सुनना चाहेंगे गगनदीप जी?
1: मिलन फिल्म का दीदी, सावन का महीना।
0: तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत कार्यक्रम
1: नाम
0: में।
1: लेना दीदी,
0: नाम एक दो लोगों का ले लीजिए।
1: ओम नारायण कुशवाहा जी, जी। और मिंटू मिंटू जी को।
0: तो चलिए आप
1: से।
0: जी, आपको और आपके सभी
1: अपने
0: दोस्तों
1: बाबा ग्राम शंकर कमल को दीदी और जितने सुन रहे सभी को।
0: जी, आपके सभी दोस्तों के लिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र. कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें. आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से. हेलो.
1: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग. आप अपना नाम बताएं.
1: मैम पूनम बोल रही हूँ कानपुर से. मैम कैसी
0: जी,
1: हैं आप?
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी. हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
1: जी मैम मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके कार्यक्रम में कॉल लग गया है. और आज का दिन मैम बहुत सैड है और बहुत मैं भी भावुक हो रही हूँ, क्योंकि आज के दिन यानी कि 31 जुलाई 1980 में हमारे जो बाजू गायक थे मोहम्मद रफ़ी, वो हम सबको छोड़कर चले गए थे, तो आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं.
0: जी बिल्कुल सही कहा पूनम जी कि मोहम्मद रफ़ी की आज है पुण्यतिथि और उनको याद करने का दिन है. वैसे तो उन्हें याद करने के लिए कोई एक दिन नहीं है, क्योंकि उनके
1: हर दिन
0: गाए
1: याद करते
0: गीत
1: हैं.
0: हमारे बीच हर दिन रहते हैं, हर दिन हम उन्हें सुनते हैं और उनकी यादों को ताज़ा करते हैं. लेकिन आज खास दिन है उनके लिए.
1: बिल्कुल मैम, तो खास दिन है. और आज कहते हैं ना कि ऐसे पार्श्व गायक दुनिया में कभी ना आए हैं ना आएंगे, और उनके जैसा सच में मैम उनकी आवाज इतनी अच्छी थी, हर अभिनेता के लिए उन्होंने गाने गाए हैं.
0: बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने हर अभिनेता के लिए गाने गाए और हर गीतकार संगीतकार उन्हें अपने साथ लेना चाहता था.
1: जी मैम बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: क्या
1: बात है.
0: सुनना चाहेंगी आज के कार्यक्रम में
1: तो
0: पूनम
1: मैम
0: जी?
1: आज जैसा कि सैड दिन है, तो आज सैड सा गाना मुझे सुनना है. फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा और गीत के बोल हैं हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, ये गाना
0: तो
1: सुना.
0: सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत.
1: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको.
0: जी कार्यक्रम में
1: बाय.
0: फ़ोन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू मैम.

0: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारे ढेर सारे श्रोताओं के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं और हम भी उनकी पसंद के गीत को उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और क्या सुनना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में। हेलो,
1: दूरियों की न परवाह किया कीजिए, दिल जब भी चाहे याद कर लिया कीजिए। ज़्यादा दूर नहीं है हम आपसे, ज़्यादा दूर नहीं है हम आपसे, दिल जब भी चाहे हमें बुला लिया कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग भाई, इतना बढ़िया सा परिचय देने वाले का नाम हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं।
1: जी, रेडियो की वही जानी पहचानी आवाज़, पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर शुगर दीवानों के शहर रायबरेली से।
0: जी पिंकी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप ही पिंकी हैं और
1: आज मेरी बहुत दिनों के बाद कॉल लगी। उस दिन मेरी नाइट शो में लगी थी पूनम दीदी के कार्यक्रम में, लेकिन नेटवर्क की वजह से मेरी कॉल कट गई थी। तो आज मेरी कॉल लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और खास करके आपसे मेरी बात हो गई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा दिन बन गया आज।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हम सभी को इतना प्यार देती हैं और आकाशवाणी लखनऊ को पसंद करती हैं।
1: मैं आपका कार्यक्रम अक्सर सुनती रहती हूँ। आपकी आवाज़ और आपका कार्यक्रम पेश करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि बस आपकी आवाज़ सुनते ही रहे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी, एक बात बताइए, आप ही पिंकी और आप ही रिंकी हैं?
1: नहीं दीदी, मेरी सिस्टर का नाम है रिंकी और मेरा नाम है पिंकी, और सब लोग हमको रिंकी और पिंकी के नाम से ही जानते हैं रेडियो के माध्यम से।
0: चलिए तो रिंकी और पिंकी, हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं आज के कार्यक्रम में?
1: जी सबसे पहले तो दीदी, आपको और आपका कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं, भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पे बने रहे, और सभी लोग हंसते मुस्कुराते आकाशवाणी लखनऊ सुनते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, और हम भी यही चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे।
1: जी,
0: जीवन ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहे।
1: चांदनी और गीत के बोल हैं, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, यही आग सीने में फिर

0: लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। जी हाँ श्रोताओं, सावन तो आ चुका है लेकिन हमें अभी इंतज़ार है इस झड़ी का, जो अभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या रुक रुक के बरसात हुई है तो उससे राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अब उम्मीद है कि झमाझम बारिश हो। और आइए जान लेते हैं हमारे कौन से श्रोता हैं लाइन पर और आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं। हेलो
1: हेलो दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, आप अपना नाम बताएं।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बेरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, क्या करते हैं आप?
1: दीदी मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: पेंटर मतलब किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं आप?
1: इसे दीवार लेखन, बाल पेंटिंग, चित्रकारी।
0: अच्छा।
1: राइटिंग का भी काम देता है उसमें।
0: तो आप किसी दुकान या किसी संस्था या किसी से जुड़े हैं या अपना खुद का काम करते हैं?
1: खुद का काम है दीदी बस।
0: तो लोग मतलब आपको ये काम सौंपते होंगे तो आप फिर ये काम पूरा करते होंगे उनका धीमे धीमे।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, सबका अलग अलग काम होता है और ये जानकर अच्छा लगता है कि कुछ नया करते हैं हमारे श्रोता। क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: आज के कार्यक्रम में दीदी एक गाना है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तो चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: अगर आप इजाजत दें तो मैं 4-5 मित्रों को याद कर सकता हूँ क्या?
0: चलिए कर लीजिए आप अपने दोस्तों को याद।
1: राम आप सुनेंगे सबसे पहले
0: जी,
1: और राम बाबू शर्मा जी, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, रमेश प्रजापति जी, सुनील झा जी, सानूर अंसारी जी और प्रेम सिंह सिसोदिया जी, और जितने भी लाइव सुन रहे दीदी सबके लिए रहेगा।
0: तो चलिए आपके और आपके सभी चाहने वालों के लिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। ओके धन्यवाद दीदी, थैंक यू।

401.6 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूं रेखा मिश्रा। जो भी श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है

0: 3 8 8 2 5। और आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताएं।
1: मैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा बात कर रही हूँ, शांति जनपद हरदोई से। कैसे हैं
0: जी
1: मैम
0: विजय
1: आप?
0: लक्ष्मी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद
1: धन्यवाद
0: करते हैं कि
1: मैम।
0: आप भी अच्छी होंगी। हेलो,
1: मैम अच्छी हूँ।
0: अच्छी हैं। तो क्या चल रहा है आजकल सांडी जिला हरदोई में?
1: कुछ नहीं मैम, इस बार तो फसल मेरी सब खराब हो गई है।
0: क्यों?
1: खेत में कुछ नहीं बाजरा है, मूंगफली बोई थी, जमी नहीं अच्छी।
0: ओ तो
1: वैसे
0: अब उस
1: हर साल तो बहुत अच्छी फसल होती है, इस बार घाटा हो गया।
0: अच्छा, तो क्या सुनना चाहेंगी विजय लक्ष्मी जी आज के कार्यक्रम में?
1: जी मैम, मरते दम तक मूवी का सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, रोनेंगे नाम तेरा साथ।
0: तो
1: और मैम
0: चलिए,
1: आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं। और आप लोगों के जब फोन कॉल हमारे पास पहुंचते हैं और हम आपकी मनपसंद गीत आप तक पहुंचा पाते हैं
1: जी
0: तो
1: मैम,
0: और भी
1: मैंने
0: अच्छे हो
1: एक
0: जाते
1: महीने
0: हैं।
1: बाद पूरे एक महीने बाद को ट्राई की और लग भी गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
0: जी हाँ, अगर थोड़ा सा अंतराल हो जाता है तो हमारे दूसरे श्रोता भी हमसे जुड़ पाते हैं। तो आइए सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फरमाइशी फिल्म संगीत का ये फोन इन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही हमारी?
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपके पीछे थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही हैं।
1: जी धन्यवाद मैम, मैं वो पेड़ पे पंछी बैठा वहीं बोल रहा है मैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी लगा था कि ये पक्षी की ही आवाज़ है। चलिए आप ये बताइए कि क्या करते हैं?
1: मैम खेती बाड़ी करते हैं।
0: तो खेती बाड़ी अच्छी चल रही है इस समय?
1: जी मैम, इस समय सावन का दूसरा दिन है तो बरसात हो जाती है, दो दिन से तो काफी अच्छा लग रहा है और मौसम भी ठंड है मैम।
0: जी, यानी जब सावन लगा है तो बदरा भी धीमे धीमे बरस रहे हैं ना?
1: जी मैम, जी मैम, और अच्छा भी लग रहा है, बरसात थोड़ी थोड़ी हो रही है सावन के महीने में तो अच्छा भी लग रहा है।
0: जी जी, तो क्या सुनना चाहेंगे सुनील जी आज के कार्यक्रम में?
1: मैम हमको गाना सुना दीजिए, मूवी का नाम है, फिल्म का नाम तो थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बाकी गाने के बोल हैं, सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी, ऐसा करके मैम गाना है।
0: तो हम आपको बता दें, ये गाना है आई मिलन की रात फिल्म का। जी हाँ, आपको याद आ गया, ये बहुत अच्छा लगा। आई मिलन की रात फिल्म का ये गीत है, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। तो आइए सुनवा दे।
1: इस गाने में थोड़े मित्र हमें, हम उनको याद कर सकते हैं?
0: थोड़े मित्रों के नाम आप ले लीजिए जल्दी से।
1: जी सबसे पहले मैम आप रहेंगी इसमें, और हमारे जितेंद्र पाल जी हैं, और त्रिपुरा से अविनाश तिली जी हैं, सुनील कुमार हैं बांका बिहार से, और पूनम जी हैं कानपुर से, और मेरा छोटा भाई मोनू राजवंशी है, और बेटा सिंह यादव जी हैं, और मिंटू तिवारी हैं, और हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी के जितने लाइव श्रोता सुन रहे हैं सभी को सुनाऊंगा मैम।
0: जी हाँ, आपके और आपके सभी दोस्तों के लिए हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं रेखा मिश्रा। श्रोताओं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर आप हमारे कार्यक्रम में फ़ोन मिला रहे हैं तो थोड़ी बहुत तैयारी भी कर लिया कीजिए। एक दो फिल्मों के नाम, दो तीन गीत आप ज़रूर अपने ध्यान में रखा कीजिए ताकि हमें वो गीत ढूंढने में आसानी हो और आपको भी अच्छा लगे अपनी पसंद का गीत सुनकर। आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और क्या सुनना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाकाल की नगरी से। जी तो
1: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बाबा महाकालेश्वर की नगरी में। सावन महीना चल रहा है, आप आइएगा जरूर दर्शन करने के लिए।
0: जी हम तो

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाकाल की नगरी से। जी तो
1: जी
0: क्या
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बाबा महाकालेश्वर की नगरी में। सावन महीना चल रहा है, आप आइएगा जरूर दर्शन करने के लिए।
0: जी, हम तो यही चाहते हैं कि बाबा की कृपा हो और हम उनके दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। वैसे इस समय तो भीड़ भी खूब रहती होगी।
1: हाँ जी, काफ़ी भीड़ है, लेकिन आपको बताऊं, जो बाहर से दर्शन के लिए आते हैं ना लोग
0: जी
1: श्रद्धालु, उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है, और जो यहाँ के नोकल लोग हैं उनके लिए एक अलग रास्ता है।
0: जी
1: उससे मतलब काफ़ी मतलब भीड़ नहीं होती है और जल्दी से दर्शन हो जाते हैं।
0: तो जब हम आएंगे तो वो रास्ता कैसे जान पाएंगे?
1: जी जैसे कि आपको वो तो हर जगह से मतलब चौराहे चौराहे पर ऐसे बोर्ड लगाए हुए हैं,
0: जी
1: और वहाँ से मतलब तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जा रहा है कि इस तरफ महाकालेश्वर बाबा का मंदिर है, दर्शन करने के लिए इस तरफ जाइए, या
0: जी
1: फिर स्नान के लिए इस तरफ जाइए। मतलब इस तरह से मतलब हर जगह पे बोर्ड लगाए हुए हैं।
0: तो आप लोग इस समय सावन में जाते हैं कि भीड़ से बचने के लिए नहीं जाते
1: जी ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम
0: हैं?
1: नोकल है तो हम कभी भी जा सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन हम तो बस यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कम जाए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को मतलब भीड़ का सामना न करना पड़े और जल्दी से दर्शन हो जाए।
0: जी, बहुत
1: हम
0: ही
1: जाते
0: बड़ी
1: हैं, बहुत कम समय के
0: बात।
1: लिए जाते हैं और जल्दी से आ जाते हैं।
0: जी प्रेम सिंह जी, आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि इस समय हम लोकल हैं, हम तो कभी भी जा सकते हैं, तो इस समय हम ना जाएं ताकि जो बाहर से हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आसानी से दर्शन प्राप्त हो जाए। बहुत ही बड़ी
1: जी
0: बात कही आपने, बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर कि हमारे देश के जो लोग हैं वो कितना अच्छा सोचते हैं। क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: जी मैं आपको बताऊं, आकाशवाणी लखनऊ का मैं नियमित होता हूं और समय समय पर फोन लगा के बात भी करता हूं। आज आज सुनना चाहूंगा फिल्म का नाम है बाजीगर, और गाने के बोले ए मेरे हमसफर।
0: तो चलिए, हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी हमें भी।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, आप अपना नाम बताएं।
1: जिला तनापुर मस्जिद के पास से क्षमा परवीन अंदर ही बात कर रहे हैं और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपको भी मेरा प्यार नमस्कार, और बताएं आप कैसी हैं।
0: हम बहुत बढ़िया हैं, और हमारी ओर से भी आप तक पहुंचे प्यार भरा नमस्कार। क्या सुनना चाहती हैं क्षमा परवीन जी आप?
1: फिल्म का नाम है महाराजा और गीत के बोल हैं, कुछ गीत लबों पे सजते हैं कुछ साज दिलों में,
0: तो
1: इसके लिए थैंक यू आपसे। एक महीने
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और देखिए धीरे धीरे हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर जा रहे हैं, तो जो भी श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 0522-223-8825। और आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से और जान लेते हैं क्या सुनना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में। हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से फोन मिलाया?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा, तो भाई क्या सुनना चाहते हैं पूरन वर्मा जी आज के कार्यक्रम में?
1: जी मैडम, आज क्योंकि मोहम्मद रफी जी को याद किया जा रहा है तो उसी में फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं और गाने जो बोले मोहम्मद रफी तो बड़ा याद आया ये गाना।
0: जी ये क्रोध फिल्म का गीत है जिसे आपने पसंद किया है।
1: जी ये गाना आपको और जितने भी कॉलर लाइव सुन रहे हैं मिंटू तिवारी जी के साथ सुनना चाहता हूँ ये गाना।
0: चलिए, तो आपके चाहने वालों के लिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। जी हाँ श्रोताओं, क्रोध फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि, तो उन्हीं के गाए कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमों के अंतर्गत। और आइए अब जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और क्या सुनना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में। हेलो,
1: मास दिवस महुनाथ नयाबा तो पुनि मोह जीत नहीं पावा।
0: जी
1: माँ जानकी जी ने कह दिया था हनुमान जी से कि अगर भगवान राम ने हमारी एक माह में खबर न ली तो फिर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे।
0: जी हाँ।
1: हेलो
0: जी, जी आप अपना नाम बताएं और आपकी ये भावनाएं हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंच रही हैं, हम आपका नाम जानना चाहते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, रेखा जी मैं आपका छोटा भाई, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और बहुत ही
1: बढ़िया
0: सी चौपाई।
1: धन्यवाद, आपकी आवाज थोड़ी कटकट के आ रही है।
0: जी हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आपने ये जो चौपाई हमारे श्रोताओं को सुनाई वो बहुत ही अच्छी थी और उम्मीद से भरी थी कि अगर हम किसी को कोई भी बात कह रहे हैं तो उसे थोड़ा समय जरूर देना चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है रेखा जी, बहुत अच्छी बात की आपने।
0: तो क्या सुनवाएं हम आपको आज के कार्यक्रम में?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने अपना नाम बता दिया कि मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूं।
0: आप...
1: और आज देखिए रेखा जी, हमारा सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का महीना है
0: जी।
1: तो ऐसे में मुझे बार बार एक गीत याद आ रहा है, फिल्म का नाम है अखंड सौभाग्यवती
0: जी।
1: और गीत के बोल है कि शंकर के शीश पर है गंगा धारा,
0: तो
1: मुझको भी तार दे दिया तूने, सबको लाखों को तूने तारा।
0: तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत कार्यक्रम में। आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, देखिए समय बहुत ही थोड़ा सा है, तो हम आज के आखिरी कॉलर को ले लेते हैं और जान लेते हैं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आप अपना नाम बताएं।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी भाई, समय बिल्कुल कम है तो मैं आपको फिल्म का नाम बता देता हूँ। फिल्म का नाम है साजन का घर और गाने के बोले सावन आया बादल छाए लेकिन तुम कब आओगे।
0: तो हम आप तक पहुँचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब यहीं पर समाप्त होता है। दें इजाजत रेखा मिश्रा को और आप जुड़े रहें हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का ये फोन इन प्रोग्राम मीडियम वेव 401.6 मीटर पर। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
3: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के

0: भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
1: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
1: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
1: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
1: जी।
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
1: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
1: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
1: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
1: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं, लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी। इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि यह नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे

0: रुचि का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
1: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
0: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं, विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें, विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति
1: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
0: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
1: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
0: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
0: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव।
5: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
4: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
5: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
4: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य

0: कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
1: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
0: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको,
1: अरे मिनट,
0: कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता यह था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शतताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकटमुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग

0: रागों के विभाजन की पद्धति है जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: लयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत, हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है सदाबहार नगमे। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। श्रोताओं, आज है महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि, तो आज का कार्यक्रम सदाबहार नगमे करते हैं मोहम्मद रफ़ी के नाम। बातें करेंगे ढेर सारी और साथ ही साथ सुनवाएंगे उनके गाए कुछ फिल्मी तराने।

रफ़ी साहब का जन्म साल 1924 को अमृतसर के नज़दीक बसे गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उन्हें बचपन में फीको नाम से जाना जाता था। मजे से अलमस्त फीको कक्षा दूसरी तक ही पढ़ पाए, लेकिन गायकी ऐसी कि जैसे संगीत की हर कला को खोल कर पी गए। रफ़ी साहब के फिल्मी सफ़रनामे की शुरुआत हुई पंजाबी फिल्म गुल बलोच से। सन 1946 में उन्होंने मुंबई आने का फ़ैसला किया। ये वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन मंजिल अभी दूर थी।

मुंबई में लोगों से मिलने के दौरान इनका सामना हुआ संगीतकार श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर जिन्होंने अपनी फिल्म गुल बलोच में इन्हें गाने का मौका दिया। मुंबई में भी उन्होंने अपनी हिंदी फिल्म गांव की गोरी में मोहम्मद रफ़ी से गीत गवाया, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। उस दौर के जाने माने संगीतकार नौशाद ने उन्हें सुना और अपने साथ बतौर कोरस सिंगर काम करने का ऑफर दिया। नौशाद साहब उसी वक्त जान गए थे कि आगे जाकर ये लड़का कमाल करेगा।

मोहम्मद रफ़ी का कैरियर अभी शुरू ही हुआ था कि बंटवारे की तलवार ने सबके दिल चीर दिए। भारत का बंटवारा हो गया, बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन रफ़ी साहब ने हिंदुस्तान में ही रहने का फ़ैसला किया। इसी बीच इनकी शादी विल्किस बेगम से हुई, जिनसे इन्हें एक भरा पूरा परिवार मिला।

0: मैं भी हंसूं खिल खिल के, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी
1: संगीतकार नौशाद के साथ रफ़ी ने सालों साल काम किया। 1951 में फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पैठ जमा ली। लगभग इसी समय शंकर जयकिशन ने भी मोहम्मद रफ़ी से गीत गवाना प्रारंभ कर दिया था। ये वो दौर था जब संगीतकार शंकर जयकिशन राज कपूर की पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन अपने लिए प्लेबैक सिंगिंग की बात हो तो मुकेश के सिवा वो किसी और को आजमाना नहीं चाहते थे। पर शंकर जयकिशन ने ये कारनामा भी कर दिखाया।

साल 1960 के दशक तक संगीतकार गुलाम हैदर, जयदेव सलील चौधरी, मदन मोहन, सचिन देव वर्मन, खयाम रोशन और रवि जैसे नामी संगीतकारों ने रफ़ी साहब की आवाज़ को अपने अपने तरीके से तराश कर श्रोताओं के लिए पेश किया। ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का दौर हो या फिर कलरफुल फिल्मों का आगाज़, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जादू सदा ही बरकरार रहा।

गायकी के सफ़र में रफ़ी साहब धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे और हर बड़े हीरो की आवाज़ यही बनी। जहां गुरुदत्त और दिलीप कुमार जैसे मजे हुए कलाकार इनकी गायकी के कायल थे, तो वहीं देवानंद, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र का ये मानना था कि मोहम्मद रफ़ी के बिना उनकी फिल्मों का कोई वजूद नहीं। सिर्फ बड़े बड़े हीरोज ही नहीं, वो तो महमूद और जॉनी वॉकर जैसे कॉमेडियन की भी आवाज़ बने।

अगर एक गाने में इजहार इश्क के 100 भावों को एक साथ दर्शाना हो तो संगीतकार सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी को ही याद करते। किशोर प्रेम का अल्हड़पन हो या दिल टूटने की व्यथा, परिपक्व प्रेम के उद्गार हो या प्रेमिका से प्रणय निवेदन, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफ़ी का कोई भी सानी नहीं था।

प्रेम को छोड़ भी देते हो, मानवीय संवेदनाओं के जितने भी पहलू होते हैं, खुशी, दर्द, हास्य, आस्था, रफी साहब के तर्कश में सभी तीर मौजूद थे। क्लासिकल सिंगिंग की बात हो या देशभक्ति गीतों की चर्चा, उनकी आवाज़ में हर गाने यादगार बन चुके हैं।

साल 1956 से 1966 का दौर उनके कैरियर का सबसे सुनहरा काल था। इसी बीच उन्होंने 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों के साथ ही संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले कई नेशनल और इंटरनेशनल खिताब भी अपने नाम किए। साल 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के सम्मान से नवाजा था।

यूं तो रफ़ी साहब में कोई भी ऐब नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक में रहकर भी उन्होंने अपनी सादगी और दरिया दिली को कायम रखा। लेकिन कुछ आदतें ऐसी भी थी जिसे लेकर वो खूब चर्चा में रहे। लजीज खानों के शौकीन रफ़ी साहब फुर्सत के पलों में खूब पतंगबाजी किया करते और अक्सर अपने पड़ोसी मन्ना डे के साथ पेच लगाते हुए देखे जाते थे।

31 जुलाई 1980 का वो दिन जब सुर संसार का ये सबसे सुरीला पंछी दुनिया को बेगाना बनाकर उड़ चला। उस दिन आसमां भी खूब रोया, जमकर बरसात हुई। ऐसा लग रहा था मानो सुरों की देवी माँ शारदे अपने लाडले के लिए आंसू बहा रही हों। फिजा में खामोशी थी और इसी खामोशी में शहनशाह तरन्नुम सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। हजारों की भीड़ लेकिन सभी मौन। खामोशी को तोड़ते हुए संगीतकार नौशाद के मुंह से बरबसी निकल पड़ा, कहता है कोई दिल

गया, दिलवर चला गया, साहिल पुकारता है, समंदर चला गया। लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसिकी का पयंबर चला गया। एक फकीर को अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत बनाने वाले मोहम्मद रफ़ी न जाने कितने ही फनकारों के लिए आदर्श बन गए थे।

श्रोताओं, आज मोहम्मद रफ़ी भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके गाए गीत सदा के लिए अमर हो चुके हैं। सदाबहार नगमों का सफ़र आज बस यहीं तक। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ गीत। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है।

सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बदकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी लीवर हार्ट कॉर्निया इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है बढ़ रही है इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है व्यर्थ मनुष्य डरता है एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: श्रोताओं हम आपको बता दें NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे प्रत्येक शनिवार मंगलवार गुरुवार को शाम 6:50 से 7:20 तक।
3: ज्ञान विकास और अवसरों का मधुर संगम है कार्यक्रम नई उड़ान जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरा

0: पत्तल से लाई गई सच्ची आवाजें हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता, बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन। जानकारी देंगे डॉक्टर संतोष कुमार यादव और आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे प्रत्येक शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को शाम 6:50 से 7:20 तक। लोकमाधुरी कार्यक्रम होगा दोपहर 2:45 पर। आज के कलाकार होंगे सुनील कुमार श्रीवास्तव। आप सुनेंगे इन्हीं के गाए कुछ औधी लोकगीत। शहरी महिलाओं के लिए कार्यक्रम अपराजिता आप सुन सकते हैं अब से थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब इलाकाई खबरें नष्ट की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट ने कल अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया। राज्यसभा ने कल इस बिल को मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही 29 जुलाई को पास कर चुकी है। बिल की मंजूरी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले गिरोहों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थिति को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
0: अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 कई सख्त दफात पर मुश्तमिल है। बिल में कई सख्त दफात शामिल है। जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और जायदाद जब्त करने की सजा है। 2 अगस्त को वजीर आजम नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा बराए विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत मुल्क भर के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों से बातचीत करेंगे। ये नौजवान मुल्क भर में तकरीबन 10,000 मकामात से अमली तौर पर जुड़ेंगे। इस प्रोग्राम के सिलसिले में कल लखनऊ के जनभवन में गवर्नर और रियासती यूनिवर्सिटियों की चांसलर आनंदीबेन पटेल की सदारत में रियासत की तमाम रियासती यूनिवर्सिटियों के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग मुनक़िद हुई। इस दौरान वर्चुअल डायलॉग के खाका और दीगर तैयारियों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई। पूरी कौम आज इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी शहीद उधम सिंह को उनकी 87वीं यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश कर रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अजीम मुजाहिदीन ने आज़ादी सरदार उधम सिंह को उनकी यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में वजीर आला

0: ने लिखा कि अजीम मुजाहिदीन आज़ाद सरदार उधम सिंह को उनकी यौम शहादत पर आजिज़ाना खराज अकीदत, जिन्होंने मादर वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जिस बहादुरी और हिम्मत का मजहर है कि वो हिंदुस्तान की तारीख में सदियों तक मिसाली रहेगी। वहीं आज नावल और मुख्तसर कहानी के मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद की 146वीं यौम पैदाइश है। अदब में उनका मकाम बेमिसाल है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नावल के बादशाह मुंशी प्रेमचंद को उनके यौम पैदाइश पर आजिज़ाना खराज अकीदत पेश किया। गोदान गबन और रंगभूमि जैसी लाजवाब तख्लीकात लिखी। उन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए हिंदुस्तानी समाज की हसासियों को जद्दोजहद और हकीकतों का भरपूर इजहार किया। मुंशी प्रेमचंद यौम पैदाइश के मौके पर उनके आबाई गाँव लम्ही में मुंशी प्रेमचंद मेमोरियल में एक अजीमुशान फेस्टिवल 2026 का इनेकाद किया गया। रियासती हुकूमत ने श्रावण माह और कांवड़ यात्रा के पुरम नो महफूज इनकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर इकदाम किए हैं। इंतजाम का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी एसपी गोला और पुलिस के डायरेक्टर जनरल राजीव कृष्णा ने कल बरेली में बरेली और मुरादाबाद डिवीजन के जिला मजिस्ट्रेटों और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों अहदेदारों ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी किस्म की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजनौर जिले में शदीद बारिश के पेश नज़र जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। सैलाब जैसी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम वक्त से पहले कर लिए गए हैं। कलीदी तैयारियों में हर तहसील की सतह पर 32 फ्लड पोस्ट, 35 फ्लड शेल्टर्स, 5 कंट्रोल रूम और 25 कश्तियां फौरी रिलीफ और रेस्क्यू के लिए मख्तस है। इंतजामिया दरियाओं के पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखे हुए है। वाराणसी से अयोध्या जाने वाली एक टूरिस्ट क्रूजर गाड़ी जुमे की सुबह तकरीबन 5:15 बजे लम्बा इलाके में हादसे का शिकार हो गई। मध्य प्रदेश के शिवदी के रहने वाले तकरीबन 15 यात्री सवार थे। रास्ते में अचानक पीछे का टायर फट गया जिससे गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए लम्बा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और मेडिकल टीमें जाए वक्ू पर पहुंच गई और जख्मियों का इलाज शुरू कर दिया। रियासत के कई अजला में बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने से कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत के डायरेक्टर जनरल और पुलिस डीजीपी को बलिया पुलिस कांस्टेबल के मुबैना ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तहकीकात करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि रियासत में अमन अमान बरकरार रखने के बजाय पुलिस स्टेशन मुसलसल तजारती सरगर्मियों में मसरूफ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। शहरी महिलाओं के लिए पेश है कार्यक्रम अपराजिता।

0: सावन की पहली बूंद जब धरती को छूती, हर सूनी सी राह में हरियाली मुस्काती,
1: सौंधी सौंधी मिट्टी मन में खुशियां बरसाती, रिमझिम की हर धुन बचपन फिर से दोहराती।
0: नमस्कार सखियों, मैं हूं स्नेहिल
1: और मैं श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम अपराजिता में। और सावन की शुरुआत हो चुकी है, जो एक ऐसा मौसम है जो सिर्फ बारिश नहीं बल्कि यादों, रिश्तों, हरियाली और अपनेपन की सौगात लेकर आता है। जी हाँ, हम सभी सखियों का सबसे पसंदीदा मौसम होता है सावन।
0: बिल्कुल। और श्वेता, जब बारिश की पहली बूंद जमीन को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे हरियाली भी हमारे बचपन की कहानी सुनाने लगती है।
1: बिल्कुल।
0: मुझे याद है श्वेता, जब हम छत पर बैठकर बारिश का संगीत सुनते थे, हर बूंद में जैसे एक जादू सा था।
1: सच में। और वो मिट्टी की भीनी भीनी जो खुशबू होती थी ना, वो पुराने दिनों में लौटा देती है।
0: बिल्कुल।
1: जो मायके की याद दिलाती है कि कैसे हम सभी झूले पर बैठकर बारिश का आनंद लेते थे।
0: और मुझे याद है स्कूल से लौटते हुए वो बारिश के रास्ते की हर गली

0: हर पेड़ जैसे नए सपने दिखाते थे और माँ की कही वो बात कि सावन हर दिन हमें खुद से जोड़ता है, वो आज भी मानो सच लगती है।
1: हाँ, और जब हम अपने दोस्तों के साथ सावन के गीत गाते थे जो हर पल एक नई उम्मीद लेकर आता था, आज भी जब बारिश होती है तो वो पुराने दिन, वो परिवार का प्यार सब ताज़ा हो जाता है।
0: तो सखियों, इसी जादू को हम दोनों आपसे आज आपके साथ बांटेंगे और जानेंगे कि आपका सावन कैसा बीतता है और वो कौन कौन से पल हैं जो आपको सबसे ज़्यादा छूते हैं और पुराने दिनों की याद भी दिलाते हैं।
1: बिल्कुल। और स्नेहिल, आज हम अपनी सखियों से लाइव जुड़ेंगे हमारे खास कार्यक्रम हेलो अपराजिता में, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए और लौटेंगे आपके अपने कार्यक्रम अपराजिता में।
2: आज तो पार्टी चाहिए,
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि स्नेहिल हमने अपनी सखियों से वादा किया था कि हम अपनी सखियों के मन को टटोलेंगे और जानेंगे सावन से जुड़ी उनकी कुछ यादों को।
1: बिल्कुल, अपने कार्यक्रम हेलो अपराजिता में तो देर किस बात की श्वेता, चलो जुड़ते हैं अपनी सखियों से लाइव और जानते हैं उनके सावन से जुड़े अनुभव।
0: बिल्कुल।
2: हेलो, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं?
3: हेलो नमस्ते, मैं बरेली से निशा मिश्रा बोल रही हूँ।
2: तो निशा जी, सबसे पहले तो सावन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है निशा जी बात करके आज हमसे?
3: मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही थी कि मेरा फोन लग जाए और आज फाइनली मेरा फोन लग गया, तो मैं बहुत खुश हूँ आज।
2: तो निशा जी, चलिए इसी के साथ कुछ बातें कर लें आपसे सावन से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले ये बताएं कि सावन से जुड़ी कोई ऐसी याद जो आपके जीवन से भी जुड़ी हुई हो और हर सावन आते ही वो एक बार आपके जहन में आती ही हो।
3: सावन की तो एक बहुत विशेष बात है कि मेरा जन्मदिन गुड़िया जिस दिन पड़ती है, नागपंचमी जिस दिन होती है, उसी दिन मेरा जन्मदिन भी होता है। तो ऑब्वियसली कि मुझे हमेशा ही ये चीज तो कभी भुलाने वाली नहीं, और उससे भी ज्यादा खुशी की हम लोग जब छोटे थे शादी से पहले और बाद की भी, तो छोटे छोटे जब थे तो हम लोग मेहंदी लगाया करते थे। हमारे उस टाइम पे तो मेहंदी हम लोग कभी कभी तीलियों से भी लगा लिया करते थे, अब तो कोन चलती है, तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि सावन आएगा तो मेहंदी लगाएंगे हम लोग, झूला झूलेंगे और बहुत बहुत ये सब चीजें हम लोग इंजॉय करते थे और हरे कपड़े पहनेंगे। इन सब का बड़ा क्रेज हम लोगों को रहता था और आज भी रहता है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक चीज और जानना चाहूंगी निशा जी, बचपन वाला सावन ज्यादा खास था या शादी के बाद वाला सावन ज्यादा खास?
3: देखिए, ऑब्वियसली बचपन की यादें तो हर लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि मेरा जन्मदिन ही होता था तो मुझे एक्साइटमेंट तो मेन उसी का रहता था। और शादी के बाद भी बहुत अच्छा मुझे लगता है क्योंकि वो चीजें हमेशा लेडीज के लिए बरकरार रहती हैं, हरी हरी चूड़ियां और हरी साड़ियां और ये सब चीजें। और शादी के बाद तो मैं बहुत ज्यादा लोगों के संग एंजॉय करने लगी कि जो सावन के गीत होते हैं उनको साथ में गाना, नाचना, ये सब बहुत अलग अनुभव रहा है शादी के बाद।

0: और शादी से पहले। जी
1: बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आप भावनाओं को पूरी तरह से समझ रही हूँ। और सावन के गीतों की बात की है तो जल्दी से अपना कोई पसंदीदा ट्रैक भी हमें बता दें जो आज आप सुन लें यहाँ से हमारे रेडियो स्टेशन से।
0: जी बिल्कुल, ये जुनून मूवी का एक गाना है जो आशा भोसले जी ने गाया है। गिर आई काली घटा मतवाली, गिर आई काली घटा मतवाली, सावन की आई बहार, सावन

0: सावन की बहार आ चुकी है और भाई आए भी क्यों ना, मौसम ही इतना सुहाना हो जाता है।
1: बिल्कुल, सुबह सुबह जब आंखें खोलो ना श्वेता, और आसपास का नजारा देखकर मानो मन खुद बखुद तरोताजा हो जाता है।
0: बिल्कुल, चलो अब देखते हैं कि हमारी अगली कॉलर का दिन आज कैसा रहा। हेलो, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: जी, मेरा नाम अनवी है और मैं काकोरी से बात कर रही हूँ।
0: अनवी जी, ये बताइए, सावन का महीना जैसे शुरू हो चुका है, तो इस रिमझिम फुहारों के साथ आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गर्मा गर्म पकौड़े, चाय, घूमना या बस बारिश देखना, ऐसी बस क्या पसंद है आपको?
2: जी, रिमझिम फुहारों के साथ में चाय और पकौड़े तो सभी को पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है, और मुझे खासकर सबसे ज्यादा बारिश में भीगना बहुत पसंद है।
0: कोई ऐसा मजेदार किस्सा हो बारिश में भीगने वाला हमसे आप शेयर करना चाहें?
2: जी हाँ, बिल्कुल है। तो मैं एक बार गई थी बाहर किसी काम से, तो उस टाइम बादल बिल्कुल भी नहीं थे, और जब वहां से वापसी हुई तो काफी ज्यादा बारिश शुरू हो गई थी। उस टाइम मेरे पास छाता भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर छाता नहीं है, चलो अच्छी बात है, इसी बहाने बारिश में भी मुझे भीगने को मिल जाएगा। तो बहुत मजा आया उस टाइम बारिश में भीगने में मुझे।
0: तो अनवी जी, जब आप बारिश में भीग रही थी तो
2: जी
0: उस समय अकेली थी या साथ में पतिदेव भी थे?
2: नहीं, मैं उस समय अकेली थी
0: अच्छा, तो
2: जी।
0: आपने एंजॉय किया, और शादी के बाद आप कभी उनके साथ भी भीगी हैं या फिर ऐसे ही केवल वही यादों को लेके अभी तक जी रही?

0: नहीं, फिलहाल तो उन्हीं यादों को लेके जी रही हूँ, अभी तक ऐसा मौका नहीं
1: ओके
0: आया है।
1: चलिए, आशा करेंगे जल्दी ही ये मौका मिले आपको। तो भाई चलते
0: जी
1: चलते
0: बिल्कुल।
1: अन्वी जी कोई पसंदीदा गाना अपना बता दें।
0: मैं गाना सुनना चाहती हूँ, आए रे दिन सावन।
2: भाई श्वेता, इन्होंने गीत की जो फरमाइश की है आज, वो हमारे कथा सम्राट प्रेमचंद जी के लिखे उपन्यास गबन पर आधारित फिल्म का गाना है। और गाना सुनने से पहले हम अपनी सखियों को ये बताते चलें कि आज हम प्रेमचंद जी की जयंती भी मना रहे हैं, तो ये गाना आज उन्हें ही समर्पित।
1: तो चलिए सुनते हैं फिर।

0: बिल्कुल, सावन के दिन आ चुके हैं तो भाई हम भी तैयार हैं सावन की फुहारों में कुछ नया करने के लिए।
1: तो क्या कहती हो श्वेता, हम भी साझा कर दें अपने सावन के सीक्रेट्स अपनी सखियों के साथ?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। हम सभी सखियों का प्लान है कि हम सभी इस सावन एक साथ मिलकर मनाएंगे, एक तरीके के परिधानों और खूब सारी मस्ती मजाक के साथ।
1: और चलो अब देखते हैं कि हमारी अगली कॉलर को सावन का मौसम क्या याद दिलाता है। तो भाई श्वेता, देखते हैं हमारे साथ कौन है लाइन पे, कौन सी कॉलर जुड़ चुकी है हमसे। हेलो।
2: बिल्कुल
3: जी।
1: सबसे पहले नाम बताएं अपना।
3: जी, मेरा नाम खुशबू राय है, मैं आजमगढ़ से हूँ।
1: आजमगढ़ से बात कर रही हैं आप
3: जी?
1: तो भाई कैसा लग रहा है, आपकी कॉल लगी हमारे आकाशवाणी में आज?
3: जी अच्छा लग रहा है।
1: तो खुशबू, ये बताएं सबसे पहले कि जैसा कि सावन का महीना शुरू हो गया है, तो सावन का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में आपके कौन सा ख्याल आता है?
3: सबसे पहले हमारे मन में मेहंदी का ख्याल आता है।
1: अरे वाह।
3: सबसे पहले हम मेहंदी प्रेफर करते हैं क्योंकि जनरली आदमी शादी वगैरह में ही मेहंदियाँ लगाता है।
1: बिल्कुल।
3: या तो फिर तीज त्योहारों पे लगाता है, तो सावन हम लोग बिल्कुल

0: त्योहार की तरह ही उसको सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि उसमें शिव जी की पूजा ज्यादा की जाती है, उसमें सब कुछ वो पूरा महीना इसी पे ही रहता है, शिव जी पे ही। लेकिन
1: जी, तो ये बताइए आप क्या प्रेफर करती हैं, घर पे पूजा पाठ करती हैं या मंदिर जाती हैं?
0: जी हम मंदिर भी जाते हैं जल देने, और बाकी पूजा जैसे घर पे होती है वो पूजा घर पे भी की जाती है, पर हमारे यहाँ शिव मंदिर पास में है तो हम लोग जाते हैं वहाँ।
1: तो
0: जी
1: भाई पूरा माहौल एक तरह से सावन में हमारी सखियों के लिए सुहावना तो होता ही है, साथ में भक्तिमय भी होता है ना खुशबू जी?
0: बिल्कुल
1: तो भाई इस सावन के खास मौके पे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना कोई पसंदीदा गाना हमें बता दें जो आप आज सुनना चाहेंगी।
0: जल में सितारों का सावन होगा।

0: जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरत आवाज से इसे नवाजा है हमारे दो लेजेंड्स लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जी ने।
1: और आज तो मोहम्मद रफ़ी जी की हम पुण्यतिथि भी मना रहे हैं, तो इस अवसर पर उन्हें शत शत नमन।
0: और कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलर से। हेलो।
2: हाँ जी,
0: क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बात कर रही हैं?
2: मेरा नाम शोभा है, मैं विभूति खंड से बोल रही हूँ, लखनऊ से।
0: अच्छा शोभा जी, ये बताइए कि पहले सावन जो था वो और आज के सावन में कितना आपको अंतर लगता है?
2: अब तो सावन सिर्फ हरियाली हरियाली दिख जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले जो बचपन था हम लोगों का उस समय हरी चूड़ियां खरीदना और घर में तरह तरह की चीजें बनना और जो है बहुत से पकवान बनाती थी अम्मा जी हमारी, और वो सब हम लोगों को याद है कि हम लोग हरे परिधान भी पहनते थे और जो है चूड़ियां तो जरूर पहनते थे हरी, और मेहंदी लगाना, ये सब चीजें थी। जो अभी है अब तो काफी कुछ बदल गया है, अब मेहंदी लोग शौक के लिए लगाते हैं, चूड़ियां कोई बहुत कम पहनते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी हरी चूड़ी सावन में तो जरूर हरी चूड़ी पहन लेते हैं, और नागपंचमी के दिन जैसे हरी साड़ी पहनना, ये सब हम लोग तो अभी भी करते हैं। और आजकल के बच्चों के लिए तो बस अगर छुट्टी होगी तो एंजॉय करना, पार्टी करना, लेकिन हम लोग अभी भी घर में बनाते हैं, बहुत तरह की चीजें बनती हैं हमारे यहाँ, चना बनता है, गेहूं बनाया जाता है, सिवई बनती है, कुछ बच्चों को खीर पसंद है तो खीर बनती है, बस सब बच्चे आ जाते हैं एंजॉय करते हैं।
3: शोभा जी, आप आज की हमारी ये जो पीढ़ी है इसके लिए कोई एक संदेश ऐसा देना चाहेंगी कि जो हमारी संस्कृति परंपरा है उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं?
2: बिल्कुल, आजकल बच्चों को तो ये चाहिए कि अपने बच्चों को ये बताएं कि हाँ तीज त्योहार होता क्या है, आगे वो करें या नहीं करें लेकिन एक उसका फायदा होता है। इस समय जो चीजें खाई जाती हैं, जो बनाई जाती हैं, हरे साग होते हैं इस समय अच्छे, लेकिन अब लोगों को ये हो गया है कि भाई साग मत खाओ इस समय कीड़ा होता है, लेकिन अब साफ सफाई से अगर बनाया जाए तो हरी चीज खाइए, सीजन के फल खाइए, इस समय जो फल आते हैं बढ़िया वो सारे फल खाइए, बढ़िया बढ़िया खाना बनाइए, खाइए जो पसंद हो। आजकल के बच्चे जो है थोड़ा सा कम करते हैं ये सब चीजें, लेकिन ये है कि हाँ देखते हैं अगर बस, तो कुछ लोग फॉलो करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, सावन से जुड़ा कोई ऐसा गीत जो आपके जहन में आ रहा हो हम आपके लिए प्ले कर दें?
2: हमें तो बस सावन का एक ही गाना पसंद है, बस अम्मा मेरे बाबा।
3: क्या बात है शोभा जी, चलिए आइए

0: श्वेता, जितना ये सावन हमारे जीवन में खुशहाली लाता है ना, उतना ही ये सावन एक बेटी को उसके मायके से जुड़ी कड़ी को और भी भावुक बना देता है।
1: बिल्कुल। तो भाई, इसी कड़ी में सावन से जुड़े और भी अनुभवों को जानते हैं अपनी अगली कॉलर से।
0: तो श्वेता देखे, हमारी अगली सखी कौन जुड़ी है हमारे साथ।
2: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: हेलो।
3: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है, बताएं हमें।
3: हाँ, मैं ऋचा बोल रही हूँ, लखनऊ से।
0: ओके ऋचा जी, सावन चल रहा है तो भाई पहले तो सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: आपको भी।
0: थैंक यू। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगी ऋचा जी कि सावन से जुड़ी ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपके ही बचपन में लेकर जाती हैं।
3: सावन से जुड़ी अगर आप पूछेंगे, जब मैं स्कूल टाइम पे जाती थी, बारिश होती थी तो मम्मी हमेशा कहते थे कि जब पानी बरसेगा तो आना नहीं और हम जरूर निकल के आते थे क्योंकि भीगने का मौका
0: नहीं। जी। और बच्चों के साथ अगर सावन एंजॉय करती हैं तो फिर कैसे करती हैं आज के बच्चों के साथ?
3: नहीं, हम खुद तो बहुत मजा करते थे लेकिन बच्चों को बोलते जाना नहीं पानी पे क्योंकि बीमार हो जाओगे तो हमारे मजे खराब होंगे।
2: मतलब भाई करती थी जो
0: आपकी मां। भाई देखा जाए तो मम्मी के रूल्स तो आप भी फॉलो कर रही हैं, आप भी जाने नहीं दे रही हैं।
3: हाँ जी हाँ जी। तो नहीं, मैं थोड़ा सा देती हूँ मौका भीगने का बच्चों को, लेकिन जब स्टार्ट होती है बारिश, एक दो बारिश तीन बारिश छोड़ के, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बच्चों को बीमार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
0: जी।
3: तो जब हमने मौज किया तो थोड़ा उनको भी मौका मिलना चाहिए।
2: तो आप अपने बचपन की बातें उनसे शेयर करती हैं कि आप क्या करती थी?
3: हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ कितनी मैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा बदमाश तो नहीं थी, बट जो भी दो चार बदमाशियाँ की है वो बताती हूँ, तो वो भी इंजॉय करते हैं बच्चे।
2: तो आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके अलावा भी, आपकी कोई ऐसी बदमाशी रही हो जो आपको याद आती हो सावन के उसी दिनों में आपको लेके जाती हो?
3: बदमाशी तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, बट हम जब सावन आता था तो हम झूले डालते थे बड़े बड़े पेड़ों पे, और उसपे मतलब एक साथ पांच छह लोग बैठ के झूला झूलते थे, तो आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है वो चीजें। बट हमारे टाइम की बात अलग।
0: बात बिल्कुल सही है आपकी, पुराने समय और आज के समय में बहुत अंतर है। तो ऋचा जी, आपके इन बातों के साथ ही अपना कोई पसंदीदा गाना भी हमें बता दें।
3: हाँ बिल्कुल, आप रिमझिम गिरे सावन सुना दीजिए।
0: तो सुनते हैं आपका ये गीत।

0: और ये रिमझिम सावन आप सभी के जीवन में खुशियों की फुहारें लेकर आए, हम यही उम्मीद करते हैं।
1: और आप भी हमें अपने नए नए अनुभवों को हमसे ऐसे ही साझा करते रहें और हमसे जुड़े रहें।
0: और अब आज के हेलो अपराजिता कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक, फिर किसी नए विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे आपके विचारों को आपके साथ।
1: तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी श्वेता
0: और स्नेहिल को अनुमति। सखियों
1: नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम अपराजिता। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम जवानों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास मेल आया है किसान रेडियो क्लब ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से। श्रोता हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, रिचा गुड़िया, बबलू यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। आप लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आते हैं और हम आपके नियमित श्रोता हैं। साथ ही ये लिखते हैं कि कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो सीने में धधकते रहते हैं। देश के लिए प्यार, फौजी भाइयों के लिए इज्जत और सरहद पर खड़े उन जवानों के लिए दुआएं जो अपने जान की परवाह किए बिना हमें चैन की नींद सुलाते हैं। विजयपाल जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि सेना के उन सभी जवानों का हमें सम्मान करना चाहिए जो हमारे लिए सरहद पर अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं, और अगर वो सीमा पर खड़े हैं तभी हम सुरक्षित हैं, सुकून से सो रहे हैं। आपने सुनना चाहा है कन्यादान फिल्म का गीत, तो हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले एक पत्र हमारे पास आया है भटिंडा रोड डबवाली से, भेजा है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। आप लिखते हैं आप हमारा गीत नाम किसी भी गीत में शामिल करें। राजा कटरा अहमदपुर राम सनेही घाट बाराबंकी से एक पत्र है मोहम्मद तालिफ खान का। आप भी लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपके नियमित श्रोता हैं और आप हमारा नाम किसी भी गीत में शामिल करें। तो भाई, हमने आप सभी का नाम शामिल कर लिया और अब आइए सुन लेते हैं विजय पांडे जी की पसंद का ये गीत जो है फिल्म कन्या दान से।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए। एक पत्र हमारे पास है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, शीतल तरंग श्रीवास्तव, अर्जुन सिंह भदौरिया और शिव बक्स सिंह का, ग्राम कैथनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी से। आप लिखते हैं, हम आपके नियमित श्रोता हैं और हमें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम बेहद अच्छे लगते हैं। और एक मेल आया है, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का आपने मेल किया है, ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। आपको पसंद है खलनायक फिल्म का गीत, बोल है देर से आना जल्दी जाना ऐसा है भे ठीक नहीं। तो भाई, हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाएं, उससे पहले एक और पत्र शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर, जिला पीलीभीत से ये पत्र भेजा है विमल वर्मा, नीतू वर्मा और इनकी प्यारी बेटी प्राची वर्मा ने। आप लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं, हम आपके नियमित श्रोता हैं। और एक पत्र हमारे पास आया है, कुसुम ठाकुर, पूनम ठाकुर, नेहा, लक्ष्मी, आशु ठाकुर, बंटी, धन्यपुर, रौनाही से आपने ये पत्र भेजा है। और आप भी लिखते हैं कि आप हमारा नाम किसी भी गीत में शामिल कर लें, हमें बेहद अच्छा।

लगेगा। तो हमने पूरी कोशिश की कि ढेर सारे श्रोताओं के नाम अपने कार्यक्रम में ज़रूर ले लें, ताकि पत्र भेजने वाले या मेल करने वाले श्रोता निराश ना हो। और आइए अब सुन लेते हैं राम शरण विश्वकर्मा जी की पसंद का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए। हमारे ढेर सारे श्रोता हम तक अपना मेल पहुंचा रहे हैं और हम उन्हें सुनवा रहे हैं उनकी पसंद के गीत। तो ये अगला मेल जो है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। आपने ये मेल किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से मेल आया है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। आपने सुनना चाहा है गीत ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। तो हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाएं, उससे पहले एक मेल और शामिल कर लेते हैं जिसे भेजा है राजेश साबले, राजदीप राशि और शीतल राजेश ने। आपने ये मेल किया है छत्रपति संभाजी नगर से। तो भाई हमने आपका नाम शामिल किया और एक हमारे पास मेल है विकास, रेखा, अदिति और वैभव का। आपने ये मेल भेजा है मित्रनगर वीर महाराष्ट्र से। आप लिखते हैं कि हम आकाशवाणी लखनऊ को नियमित रूप से सुनते हैं, यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम इन्हें बेहद पसंद आते हैं और

ये लिखते हैं कि आप हमारा नाम किसी भी गीत में शामिल कर लें, हमें अच्छा लगेगा। नागलोई दिल्ली से एक मेल आया है, मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा का। तो हमने आप सभी का नाम शामिल किया, लेकिन अभी आइए सुन लेते हैं टीडी मल्होत्रा जी की पसंद का ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे नदीम शमल का संगीतबद्ध गीत। फिल्म थी ये दिल आशिकाना और गीत लिखा था समीर ने। और इस गीत के बाद जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए हमें मेल आया है ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्य राम सागर शाहू रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति मिर्जा तुराग बेग। आप सभी ने सुनना चाहा है जानी दुश्मन फिल्म का गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की और गीत के बोल हैं तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ। तो भाई हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुँचाएँ उससे पहले एक पत्र शामिल कर लेते हैं। ये लिखते हैं कि हमारा पत्र पूरा पढ़ें। राजेश कुमार मिश्र राकेश कुमार मिश्र अनुराग मिश्र अभिषेक मिश्र आस्था अंजलि केशरी मिश्र गांव नरहरपुर पोस्ट सिमरी पुरुषोत्तमपुर ज़िला सुल्तानपुर से ये पत्र आया है। तो भाई मैंने आपका पूरा पत्र पढ़ा जिसमें आपने अपना नाम और पता लिखा था और ये लिखते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम हमें बेहद पसंद

पसंद आते हैं और हम आपके यहाँ के नियमित श्रोता हैं, तो हमें ये जानकर अच्छा लगा कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा का ये मेल आया है सांडी जिला हरदोई से, साथ में है प्रिंसी सिंह। तो एक मेल हम और शामिल कर लेते हैं और वो मेल है खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। श्रोता हैं अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र और राजकुमार बोडाना। सुदामा नगर खंडवा से मेल किया है लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, जीतू, मुकेश और जगताप ने। तो इतने सारे लोगों का मेल हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया और कोशिश की कि उनके पसंद के गीत भी उन तक ज़रूर पहुँचें। फिलहाल आइए सुन लेते हैं रामराज राजू भानु जी की पसंद का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन से।

0: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दो रास्ते फिल्म का गीत, जिसके लिए मेल किया था मलयान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन और आदि जैन ने। और कार्यक्रम में एक मेल आया है सुनील यादव का। आपने ये मेल किया है करनैल गंज गोंडा से। आप लिखते हैं कि आप हमारा नाम किसी भी गीत में शामिल करें। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। फौजी भाइयों को जय हिंद। आप सुन रहे थे पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।
2: न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
3: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत

0: कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके

0: पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल SDF ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
3: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 17 टीमें, SDRF की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी।

0: है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खोरधा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। 2:30 हुए हैं। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। विषय है बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन। तो लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस मौसम में पशुओं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला चक गजरिया स्थापित निबलेट बाराबंकी से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस मौसम में पशुओं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें पशुपालक भाई बहन।
5: सभी पशुपालक भाइयों एवं बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। और बरसात का जो मौसम होता है वो पशुओं में यदि हम थोड़ा सजग नहीं रहें, क्योंकि मौसम में आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण और तापमान ऊपर नीचे होने के कारण पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसलिए हमें खासकर बरसात के मौसम में अपने पशुओं का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए किसमें बीमारियाँ कम से कम हो, जिससे उनका स्वास्थ्य कम खराब हो और उत्पादन पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब जैसे बरसात के मौसम में जो मक्खी मच्छर इन सब की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में जो परजीवी हैं बाह्य या अंतः परजीवी उनकी संख्या पशु में बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका चारा का खाना दाना ये सारी चीज़ें जो है, चूँकि उनका पाचन गड़बड़ हो जाता है परजीवी के कारण जो अंतः परजीवी हैं, जिसके कारण वो उत्पादन उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं और वो बहुत सारे बीमारियाँ होने के कारण भी हैं। जैसे बहुत सारी प्रोटोजोअल बीमारियाँ जैसे कि बबेसिया और थैलेरिसिस जो कि खतरनाक बीमारी हैं, ये भी बारिश के मौसम में जो कि बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में ये बीमारियाँ फैलती हैं। और संक्रामक बीमारियाँ भी हैं जिसके कारण पशु बहुत तेज़ी से जो अपने स्वास्थ्य का नुकसान उठाता है और पशुपालक भाइयों को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि गलाघोंटू एक खतरनाक बीमारी है जो कि बरसात के सीज़न में सबसे भयावह रूप में आती है यदि थोड़ा भी सजग नहीं है। गलाघोंटू में बेसिकली बैक्टीरिया के कारण होता है जिसमें गले में सूजन आ जाती है, पशु को बुखार बहुत तेज़ी से आता है, चारा दाना पानी सब छोड़ देता है, गले में सूजन आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पशु के मुंह से लार टपकने लगता है और ऐसे में यदि सही समय पे उपचार नहीं हुआ तो 24 से 48 घंटे में पशु दम भी तोड़ देता है। तो ये खतरनाक जो बीमारी गलाघोंटू है ये बरसात के सीजन में ही होती है।
4: तो इसका बचाव क्या है डॉक्टर साहब?
5: इसका सबसे बेहतरीन बचाव है कि हमारे जो पशुपालन विभाग के तरफ से हमेशा बरसात सीजन से पहले टीकाकरण का अभियान होता है, तो ऐसे में हम सभी पशुपालक भाइयों एवं बहनों को अस्पताल जा करके टीके को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इस बीमारी में यदि आपने टीका लगवाया तो इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं जिससे पशु

0: की मृत्यु होने से बचाया जा सकता है, वरना ये बीमारी बहुत तेजी से फैलता है। एक जानवर में फैला तो उसकी वजह से जो है पूरे जितने भी जानवर हैं सब में फैलने की आशंका रहती है। तो ऐसे में टीकाकरण करवाना इस बीमारी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: डॉक्टर साहब, संक्रामक रोगों की बात हो रही है इस मौसम में, तो खुरपका मुंहपका भी तो है।
0: बिल्कुल, हाँ, ये जो खुरपका मुंहपका बीमारी है ये वायरस के कारण बीमारी होती है, और ऐसे में जो है बरसात के सीजन में मेनली ये भी फैलती है, क्योंकि बारिश में मौसम ऐसा रहता है जिसमें बहुत सारे जो जीवाणु या कीटाणु होते हैं ना वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में ये वायरस जो खुरपका मुंहपका का वायरस है वो बीमारी करता है, और ऐसे में मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, थन में छाले पड़ जाते हैं, जिससे पशु का उत्पादन एकदम से कम होता है, चारा दाना पानी छोड़ देता है पशु। और ऐसे में यदि सही इलाज सही समय पे नहीं स्टार्ट कराया गया तो पशु जान से भी चला जाता है। हालांकि इसमें उत्पादन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो दूध देने का उसका प्रोडक्शन है उस समय दूध चला भी जाता है कई गाय या भैंसों में। तो इस बीमारी को भी सही समय पर सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी टीकाकरण करवाना होगा। ये जो खतरनाक बीमारियां हैं इनका टीकाकरण जरूर करवाएं, जिसमें कि खुरपका मुंहपका भी आती है, और ये बीमारी पशुपालकों को बहुत नुकसान करती है।
1: डॉक्टर साहब, गलाघोंटू और खुरपका मुंहपका की बात हुई, इसी तरह संक्रामक रोगों में लंगड़िया बुखार भी है।
0: ये भी एक खतरनाक बुखार है, लंगड़िया बुखार, जो कि जो यंग हीफर या बछिया जो होती है उसमें ज्यादा होता है। ये क्या होता है कि जो पुट्ठे पे जो मसल होती है उसमें सूजन हो जाता है, और इसका जो बैक्टीरिया है वहाँ पे आता है, और जैसे दबाएंगे उसे चर चर की आवाज़ आती है, इसमें बुखार भी आता है और पशु लंगड़ा के चलता है, और ऐसे में किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, कभी कभी जान से भी पशु हाथ धो बैठता है। तो इसके लिए भी पशु को बरसात से पहले टीका लगवाना होगा। यदि टीकाकरण करते हैं तो इस बीमारी से भी पशु को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तीनों जो संक्रामक रोग इस मौसम के हैं, गलाघोंटू, खुरपका मुंहपका और लंगड़िया बुखार, इन तीनों का बचाव टीकाकरण ही है।
0: बिल्कुल, ये टीकाकरण मेन है। यदि आप टीकाकरण कराते हैं तो इन तीनों बीमारियों से आप निश्चिंत रह सकते हैं, ये बीमारियां नहीं होगी। और एक बार बीमारी हो गई तो नुकसान चाहे आर्थिक हो चाहे उत्पादन के रूप में हो, नुकसान होता ही है, क्योंकि फिर यदि समय समय पर इलाज भी नहीं हुआ समय अनुसार तो भी नुकसान होता है। तो बेस्ट ये है कि आप टीकाकरण सही समय पर करवा लें।
1: ताकि सुरक्षा कवच हो जाए, और अगर बीमारी हो जाती है तब पशुपालक क्या करें?
0: तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से अपने पशु डॉक्टर्स को बुला करके तुरंत इलाज करवाइए ना। तुरंत इस बीमारी में बुखार, तीनों बीमारियों में बुखार आता है और पशु खाना पीना छोड़ देता है, तो ऐसे में इसको लापरवाही ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लेट से इलाज शुरू होगा उतना नुकसान भुगतना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, इस मौसम में जैसा आपने शुरू में कहा कि परजीवी जनित बीमारियां भी होती हैं, चाहे वो अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी हों, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें पशुपालक भाई बहन?
0: बेसिकली बरसात के मौसम में पानी आसपास में इकट्ठा रहता है, तो पशु बाड़ा जो है ना उसके पास में यदि पानी इकट्ठा है और पशु आपके गीले सतह पे हैं, और ऐसे में पानी वहाँ पे इकट्ठा है तो क्या होगा, मक्खी मच्छर जू चिचड़ी ये सारी चीज़ें पशु पे ज़्यादा लगने लगते हैं, और ऐसे में क्या होगा कि ये बहुत सारे प्रोटोजोअल बीमारियों को भी लेकर के आते हैं, और पशु के पेट में भी चूंकि हरा बरसात के सीजन में हरा चारा ज़्यादा होता है, तुरंत हरे चारे पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए, सूखा चारा हरा चारा मिक्स करके खिलाना चाहिए। और एक बार यदि ये परजीवी के द्वारा रोग हो गया तो पशु का जो चारा दाना पानी है ना वो सही से शरीर में लगता नहीं है, हम खिलाते तो हैं पर वो उत्पादन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से, और इसमें जो यदि परजीवी प्रोटोजोअल बीमारी हो गई इस परजीवी के कारण कई बार क्या होता है, जिसमें जैसे मैंने बताया बहुत ही खतरनाक बीमारी बबेसिया, थाइलोरोसिस, ट्रिपेनोसोमियसिस, और ये बीमारियां जो है एकदम से पशु के लिए जानलेवा भी हैं, और ऐसे में बुखार इनमें आता है, चारा दाना पानी पशु छोड़ देता है, और यदि सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये समझिए कि पशु की जान भी जा सकती है। सबसे बड़ा प्रबंधन ये है कि बरसात शुरू होने से पहले अपने पशु को कृमिनाशक दवा ज़रूर खिला दें, यानी कीड़े की दवा ज़रूर खिलाएं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कृमिनाशक दवा और दूसरा टीकाकरण, और इसके साथ साथ जो बाह्य परजीवी है उनके लिए क्या करना है, 2 ml डेल्टा मेथ्रिन का सोल्यूशन आता है उसको 1 लीटर पानी में घोल के अपने पशु पर छिड़काव करा दें। और गांव में तो जैसे हमारे किसान भाई भाई क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे पशु शाम या सुबह बंधा हुआ है वहाँ पे एक ड्रम में थोड़ा सा सूखा घास ले लें, उसमें नीम की पत्ती डाल दें या तुलसी डाल दें, तेज की पत्ती थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा धुआं कर दें, उस

0: कुएं से भी जो बहुत सारे जो जो मच्छर मक्खी होते हैं वो भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो ये भी बहुत कारगर है कि ज़्यादा मच्छर मक्खी यदि पशु को नहीं लगेंगे तो बीमारियां उनकी कम होंगी।
1: डॉक्टर साहब, इस मौसम में सर्रा की भी शिकायत होती है?
0: बिल्कुल, सर्रा भी बीमारी इस मौसम में हो सकती है पशुओं को, जैसे कहते हैं ना बरसात का मौसम, ये जो मौसम होता है ये बीमारियों का मौसम होता है। कई बार बहुत सारी बीमारियां इस मौसम में जन्म लेती हैं, यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारी हो जाएगी। और सर्रा भी जो ये मक्खी मच्छर ये सारी चीज़ें फैलती हैं ना, इसके द्वारा फैलता है। तो ऐसे में बुखार आता है, पशु अपनी जगह पे घूमता है, वो बुखार अपने से कम भी हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा। बुखार यदि उतर रहा है और चढ़ रहा है तो ऐसे में सर्रा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और पशु को तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए।
1: और पागलपन की स्थिति होती है?
0: बिल्कुल, उसमें पशु घूमने लगता है ना, चक्कर काटने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो ऐसे में जो वो अनकॉन्सियसनेस भी हो जाता है।
1: तो इसका प्रबंधन?
0: प्रबंधन यही है कि यदि हो गया तो तुरंत इलाज कर दें, नहीं तो पशु को ये जो जिसके द्वारा ये सर्रा फैलता है, बेसिकली जो मक्खी मच्छर चिचड़ी ना टिक्स लाइस ये जो पशु पे लगे हुए होते हैं, इनके द्वारा ये एक दूसरे में फैलता है। तो ये कम से कम लगे रहेंगे पशु में, ना के बराबर होंगे, तो इनका होने के चांसेस इन बीमारियों का कम से कम होगा।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग और उनके प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला चकगजरिया स्थापित निबलेट बाराबंकी आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-154-222-42 94-154-222-42 94-154-222-42।
1: डॉक्टर संतोष कुमार यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, और बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें पशुपालक भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बरसात में पशुओं के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन, ये भेंट वार्ता अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संतोष कुमार यादव से। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय और कार्यक्रम था विज्ञान और किसान। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, युवा तरंग कार्यक्रम में शाम 5:10 पर आज आप सुनेंगे वार्ता। वर्षा जल संचयन, वार्ताकार होंगी अदिति तिवारी। कार्यक्रम नई उड़ान का समय रहेगा शाम 5:45। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से बदलाव, देव प्रताप सिंह की यह वार्ता प्रसारित होगी लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर।

कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे। खेती किसानी में शाम 6:50 पर आलेख और वाचन यदुनाथ सिंह मुरारी का और संपादक होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

अंग्रेजी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:31। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे विशाल सिंह यादव के गाए भजन। पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का समय रहता है रात 9:30। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोकमाधुरी। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं औधी लोकगीत। कलाकार हैं सुनील कुमार श्रीवास्तव। तो इनके स्वर में सबसे पहले आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

लोकमादरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुनील कुमार श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत। संगत कलाकार थे ढोलक पर सत्यम शिवम सुंदरम, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी बजाई थी दिगंत सैकिया ने और साइड रिदम पर राम बाबू वर्मा। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 5000 मेगावाट की 3300 फोटोवोल्टिक परियोजना का विकास किया जाएगा। इन प्रणालियों की न्यूनतम भंडारण क्षमता 2 घंटे होगी और कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मृतकों के परिजनों के लिए 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2,00,000 रुपए की ग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पीओजेके के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन SOS इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ नारे लगाते हुए पीओजेके को भारत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। SOS इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों का दमन और शोषण कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरंग क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे में फंसे खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर लवलीत सिंह को बधाई दी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मापे को 5-0 से पराजित किया।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज रात्रि 10 बजे सुनेगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा प्रसारित की जाएगी, हम अनुप्रसारित करेंगे। और अब से बस थोड़ी देर बाद यानी कि 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। इसमें वर्षा जल संचयन पर अदिति तिवारी से वार्ता प्रसारित की जाएगी। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:45 पर। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से बदलाव, देव प्रताप सिंह से वार्ता सुनेगा। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। कृषि समाचारों पर आधारित किसान डायरी का प्रसारण होगा शाम 6:50 पर। आलेख और वाचन यदुनाथ सिंह मुरारी का होगा, संपादक होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर अंग्रेजी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत में रात्रि 8:15 पर कलाकार होंगे विशाल सिंह यादव। ये थे हमारी सभा के शेष कार्यक्रम। और अब लीजिए सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। कल रात्रि 8 बजे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल का प्रसारण होगा कल सवेरे 9:15 पर और उर्दू प्रोग्राम सवेरे 9:30 पर नश्र किया जाएगा। कृषि चर्चा कार्यक्रम होगा कल प्रातः 6:05 पर। विश्व स्तनपान सप्ताह पर केंद्रित है कल की स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी देंगे नीना सुनकर। प्रसारण समय रहेगा कल प्रातः 7 बजे से। घर आंगन का प्रसारण होगा कल दिन में 1:15 पर। नैनो उर्वरकों से फसल पोषण, इस विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से भेंटवार्ता करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर। युवा और नशे का दलदल, डॉक्टर अनूप कुमार भारती से इस विषय पर भेंटवार्ता करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। युवा तरंग कार्यक्रम में कल शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल शाम 5:45 पर। ग्रामीण भारत में सांस्कृतिक विविधता, डॉक्टर हिमांशी अग्निहोत्री से वार्ता सुनिएगा लोकायतन कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर। खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन, डॉक्टर रिंक कुमारी चौहान से इस विषय पर भेंटवार्ता करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। किसान वाणी कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर। विज्ञान जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल शाम 7:31 पर। इसमें डॉक्टर जीशान अली सिद्दीकी से भेंटवार्ता सुनेगा, विषय रहेगा AI और एडवांस तकनीक से और स्मार्ट होता ई गवर्नेंस। आपसे भेंट करेंगे प्रवीण कुमार। सुगम संगीत का

कार्यक्रम में कल रात्रि 8:15 पर कलाकार होंगी अनुराधा पौडवाल। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के संक्षिप्त रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस बेहतरीन कार्यक्रम युवा तरंग में, जहां हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए नए विषय और नई जानकारियां। और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हो चुकी हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त आयुषी। दोस्तों कहते हैं, किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोगों की आदतों से भी होती है। जब सड़कें साफ हों, पार्क हरे भरे हों, गलियाँ चमकती हों और लोग अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें, तो उस जगह की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। यही सोच लेकर शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन। इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर की गई। महात्मा गांधी जी हमेशा स्वच्छता को जीवन का एक जरूरी हिस्सा मानते थे। उनका विश्वास था कि साफ सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने की पहचान है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम अपने आसपास सफाई रखते हैं, तो हम सिर्फ अपने घर या मोहल्ले को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। शुरुआत में इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि हर घर तक शौचालय की सुविधा पहुंचे और खुले में शौच की समस्या को खत्म किया जाए। धीरे धीरे ये अभियान केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। आज देश के कई शहरों और गाँवों में सफाई व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर हुई है। घर घर से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन लगाए गए हैं और कचरे को अलग अलग करके उसका सही तरीके से निपटान किया जा रहा है। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग रखने की आदत भी अब धीरे धीरे लोगों के जीवन का हिस्सा बन रही है। इसे रिसाइकलिंग आसान होती है और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है। स्वच्छ भारत मिशन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वो है सिंगल यूज प्लास्टिक का कम उपयोग। प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलिथिन और डिस्पोजेबल सामान कई वर्षों तक नष्ट नहीं होते हैं। यही कारण है कि आज कपड़े के बैग, स्टील की बॉटल्स और दोबारा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये छोटा सा बदलाव पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। साफ सफाई का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य भी है दोस्तों। स्वच्छ वातावरण में बीमारियाँ कम फैलती हैं, मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप कम होता है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है। इसीलिए स्वच्छता केवल सुंदरता की बात नहीं है, बल्कि ये बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की भी बात है। आज स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और विभिन्न स्थानों में समय समय पर क्लीनलीनेस ड्राइव आयोजित की जाती है। इन कार्यक्रमों में युवा, विद्यार्थी और आम नागरिक मिलकर सफाई करते हैं और दूसरों को भी जागरूक करते हैं। ये बताता है कि जब समाज एक साथ किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता है, तो बदलाव जरूर दिखाई देता है। तकनीक ने भी इस अभियान को नई दिशा दी है। कई नगर निगम ऐसे मोबाइल ऐप्स शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से नागरिक कहीं भी गंदगी दिखाई देने पर उसकी जानकारी भेज सकते हैं। इससे संबंधित विभाग जल्दी कार्यवाही करते हैं और सफाई व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी बनती है। स्वच्छ शहर केवल रहने के लिए ही अच्छे नहीं होते, बल्कि वो पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। जब कोई पर्यटक किसी साफ और सुंदर शहर को देखता है, तो उसके मन में उस शहर और उस देश की अच्छी छवि बनती है। इससे स्थानीय व्यापार, छोटे दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े लोगों

को भी लाभ मिलता है। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन हमें सिखाता है कि बदलाव हमेशा किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होता है। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना, पानी के स्रोतों को साफ रखना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पेड़ पौधों का ध्यान रखना और सार्वजनिक स्थानों को अपना समझकर उनकी सफाई बनाए रखना, ये सभी छोटी बातें मिलकर एक बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। तो आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि स्वच्छता को केवल एक आदत नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक ऐसा अभियान है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटा सा कदम, एक अच्छी आदत और एक जागरूक सोच, यही मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत का निर्माण करती है। इसी सोच के साथ दोस्तों, अब कार्यक्रम में वक्त है लोक संस्कृति की मिठास खोलने का। उत्तर प्रदेश की लोक परंपरा और अवधी लोक संगीत की सुरीली पहचान सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी की आवाज में सुनते हैं एक बेहद लोकप्रिय लोकगीत, सैया मिले लड़कियां।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: दोस्तों, पानी प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन आज बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और बदलते मौसम के कारण पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और गर्मियों के मौसम में पानी की कमी साफ दिखाई देती है। ऐसे में केवल पानी बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि बारिश के पानी का सही तरीके से उपयोग और संरक्षण किया जाए। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा सरल, प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है जिससे वर्षा के पानी को एकत्र कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है, पानी की बर्बादी कम होती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संसाधनों का संरक्षण संभव हो पाता है। दोस्तों, पानी की हर एक बूंद का महत्व समझना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम अपने घरों, स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अपनाएं तो हम जल संकट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अब समय है हमारी विशेष वार्ता का, जिसका विषय है वर्षा जल संचयन। वार्ताकार हैं सुश्री अदिति तिवारी। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: जल संचयन, जल ही जीवन है, यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना नहीं की जा सकती। हम भोजन के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना जीवन संभव नहीं। फिर भी विडंबना यह है कि जिस जल पर हमारा निर्भर है जीवन, उसी का हम सबसे अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं। आज दुनिया के अनेक देश जल संकट का सामना कर रहे हैं, भारत भी इससे अछूत नहीं है। कई राज्यों में गर्मियों के दिनों में लोग पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हो जाते हैं। कहीं किसान सूखे से परेशान हैं, तो कहीं भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जल संचयन अर्थात वर्षा के जल को एकत्रित करके उसका संरक्षण करना सबसे प्रभावी और सरल उपाय है। जल संचयन का अर्थ है वर्षा के जल को व्यर्थ बहने से रोकना और भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। यह जल तालाबों, कुओं, झीलों या घरों के छतों से पाइपों के माध्यम से भूमिगत टैंकों में संग्रहित किया जा सकता है। इससे भूजल का स्तर बढ़ता है, भविष्य के लिए पानी उपलब्ध रहता है। हमारे पूर्वज जल संरक्षण को महत्व देते थे। उन्होंने गांवों में तालाबों, कुओं और पोखर के बनाए आए केवल जल संरक्षण के साधन नहीं थे, बल्कि हमारी संस्कृति और दूरदृष्टता के प्रतीक थे। आज आवश्यकता है कि हम आधुनिक तकनीक के साथ साथ उन पारंपरिक तरीकों को भी अपनाएं। जल संचयन के अनेक लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि इससे भूजल का स्तर बढ़ता है। जब वर्षा का पानी भूमि में समा जाता है तो सूखते हुए कुएं और हैंडपंप फिर से पानी से भर जाते हैं। दूसरा लाभ यह है कि गर्मियों में पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकती है। तीसरा लाभ, खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से किसानों को लाभ मिलता है और फसल का उत्पादन बढ़ता है। जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी का कर्तव्य है। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाए तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपने घरों में पानी की अनावश्यक बहाव को रोक सकते हैं, नलों को खुला छोड़ने की आदत छोड़ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। आज धरती पर लगभग 71% भाग पानी से ढका है, लेकिन पीने योग्य मीठा पानी बहुत कम है। जनसंख्या बढ़ रही है, भूजल का स्तर गिर रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और

0: वर्षा का रूप बदल रहा है। ऐसे समय में जल संचयन एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता और जिम्मेदारी भी बन चुका है। सरकार द्वारा भी जल संरक्षण के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे जल शक्ति अभियान, कैच दी रेन और अमृत सरोवर योजना। इन अभियानों की सफलता तभी संभव है जब हम प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। हमें यह समझना होगा कि यदि आज हमने पानी बचाया तभी हमारा कल सुरक्षित होगा। जल प्रकृति का अनमोल उपहार है, इसके प्रत्येक बूंद अमूल्य है, इसीलिए हमें जल का सामना करना चाहिए और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। यदि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक विद्यालय और प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने स्तर पर सहजने का संकल्प ले तो देश की जल स्थिति बदली जा सकती है और सुधारी जा सकती है। परिवर्तन हमेशा एक छोटा कदम है, या जल संचयन ऐसा ही कदम है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संतुलित भविष्य की नींव रखता है। महात्मा गांधी जी का एक विचार है, प्रकृति परिवार का व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकता है लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। यदि हम आवश्यकता के अनुसार जल का उपयोग करें, उसका संरक्षण करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा। आइए आज हम छोटा सा संकल्प लें, हम जल के हर बूंद का सम्मान करेंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और जल संचयन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अंत में अपनी बात कुछ पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगी। जल है तो जीवन है, जल ही से संसार, हर बूंद बचाएं यही है सच्चा उपकार, बूंद बूंद से सागर भरता यही प्रकृति का ज्ञान, जल बचाना धर्म है हमारा यही देश का मान।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था वर्षा जल संचय। वार्ताकार थी सुश्री अदिति तिवारी। इसी के साथ दोस्तों अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, अब समय हो गया है रोजगार सूचनाओं का। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार और मित्रों में कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए जानते हैं आवेदन के लिए उपलब्ध कुछ प्रमुख सरकारी भर्तियों की जानकारी। पहली रोजगार सूचना है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री या बीएससी की योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 27 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। चयन ऑनलाइन परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर होगा। दूसरी रोजगार सूचना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL की ओर से है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 है। संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा कंपनी के नियम के अनुसार निर्धारित की गई है। चयन मेरिट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। तीसरी रोजगार सूचना भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट की ओर से है। ग्रामीण डाक सेवक GDS के हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई 2026 से शुरू हुए हैं और अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 है। अभ्यर्थी का 10वीं पास होना आवश्यक है और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 31 जुलाई की प्रमुख रोजगार सूचनाएं। अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती के लिए पात्र हैं तो

अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल ना करें। समय रहते आवेदन करें और आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, आवश्यक दस्तावेज और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। हमारी ओर से आपको सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज के युवा तरंग कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हम आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम का विवरण। कल के कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान। इसी के साथ ही कार्यक्रम में होगी एक विशेष भेंटवार्ता जिसका विषय है युवा और नशे का दलदल। इस विषय पर हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनूप कुमार भारती। तो सुनना ना भूलिएगा युवा तरंग का अगला अंक कल इसी समय और इसी जगह पर। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी और श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नई उड़ान।

साथियों नमस्कार, कार्यक्रम शुरू हो चुका है नई उड़ान, और आज के कार्यक्रम में आपका साथ देने के लिए आपके रेडियो सेट के इस तरफ है आपके रेडियो दोस्त रीना। तो उम्मीद तो ये करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, और मौसम भी थोड़ा अच्छा अच्छा हो गया है। बारिश नहीं हुई है, लेकिन तो क्या हुआ, गर्मी तो कम हो गई ना, इसी बात से खुश हो जाइए। क्या हुआ कि अगर सावन के महीने में बारिश थोड़ा देर से आ रही है, आएगी, इंतज़ार कीजिए, आएगी। अच्छा, अब अपने कार्यक्रम की हमने शुरुआत कर ही दी है, तो आपको ये भी बता देते हैं कि आज है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, वो एक जब किशोरावस्था में थे तो इन्होंने एक बुक सेलर के यहाँ किताबें बेचने का काम किया था अपनी किशोरावस्था में, यानी टीनेज में जब होते तब। और यहीं से उनको बहुत सी बुक्स को पढ़ने की लत भी लगी और उसका मौका भी मिला, और शायद यही वजह थी कि पढ़ते पढ़ते उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। आपकी पहली प्रकाशित कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये पहली कहानी थी जो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद उनका जो पहला उपन्यास था वो था सेवा सदन। ओरिजिनली ये उपन्यास उर्दू में लिखा गया था, और उर्दू में इस उपन्यास का नाम था बाजार-ए-हुस्न, और बाद में इस उपन्यास को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। 1923 में बनारस में मुंशी प्रेमचंद जी ने सरस्वती प्रेस नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी, और उसको उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक चलाया। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, उनको उनकी कहानियों के लिए, उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 300 से ज़्यादा लघु कथाएं लिखी और एक दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखे। भारतीय और विदेशी साहित्यिक कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इंटरेस्टिंगली आपने एक हिंदी मूवी के लिए पटकथा भी लिखी, मतलब उसका स्क्रिप्टिंग भी की थी, लेकिन वो मूवी एक दो शहरों को छोड़कर बाकी जगह पे रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन प्रेमचंद जी की जो नॉवल्स थी, उनके जो उपन्यास थे, उस पर बेस्ड बहुत सारी मूवीज़ बॉलीवुड में बनाई गई, जिनमें कि गोदान है मूवी 1963 में रिलीज़ हुई, गबन 1966 में रिलीज़ हुई, शतरंज के खिलाड़ी एक अन्य और दूसरी मूवी है जिसका भी निर्माण किया गया, और इसके अलावा एक टेलीफिल्म भी है सदगति के नाम से, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की कृतियों पर ही आधारित है, मतलब उन्हीं की रचना पर आधारित है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात, देखिए ऐसा है कि जब हम अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के बारे में सुनते हैं, तो हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी वैसे ही करना है। और अगर हम ऐसे लोगों को अपना आइडल मान लेते हैं जो सिर्फ ग्लैमर, जो सिर्फ फिजिकल ब्यूटी, लुक्स और दिस एंड दैट के वजह से लोकप्रिय हैं, तो हमारा भी आउटलुक जो है वो वैसे ही हो जाता है। अब देखिए ना, आजकल युवाओं का ज़माना है, जेन जी का ज़माना है, और जेन जी जो है वो किसे फॉलो करती है इस पर डिपेंड करेगा कि जेन जी जो है उसका आगे का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। अगर वो एक ऐसे पर्सन को फॉलो करती है जो कि IIT के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने हमारी भारत देश की स्वदेशी पहला स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर शक्ति डेवलप किया है, तो डेफिनेटली वो इस ओर सोचेंगे, आप उस ओर सोचेंगे कि हाँ हम भी ऐसा ही कुछ करें। उतना आगे नहीं जा सकते तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कि सिर्फ रील्स बनाकर जो है अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, जो सिर्फ इसलिए काम करते हैं जिससे कि उन्हें बहुत सारे लाइक्स मिल जाएँ, करोड़ों लाइक्स मिल जाएँ, करोड़ों फॉलोवर्स मिल जाएँ, और उन्हें बहुत सारे पैसा मिल जाए, फिर वो उस पैसे का मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, एक नया से नया ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए इस्तेमाल करें, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। आप अपनी लाइफ को कितना कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं ये तो आपके ऊपर है, आफ्टरऑल ये आपकी लाइफ है। और जहाँ तक हमारे देश के लोगों का सवाल है, देखिए ऐसा है ना, हिंदुस्तानी जो लोग होते हैं वो थोड़े ऐसे भी होते हैं, थोड़े वैसे भी होते हैं। सारे जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, वो हिंदुस्तानियों को समझ पाना थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल भी हो जाते हैं, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हो जाते हैं, हम कभी कभी बहुत एथिकल भी हो जाते हैं, और कभी कभी हम एथिक्स को फॉलो नहीं भी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं।

है, एथिक्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। देखिए एथिक्स जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारा जब मन आएगा तब हम फॉलो करेंगे, हम अपनी सुविधा के हिसाब से, हम अपने टेम्परामेंट के हिसाब अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से एथिक्स को फॉलो करेंगे, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर एथिक्स आप फॉलो करते हैं तो आपको फॉलो करने ही चाहिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप सोच लें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आज आप एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़े जो आपके फेवर की बात ना करते हुए एथिक्स को छोड़ दें। खैर मैंने बहुत लंबा बोल दिया, अब इतना लंबा चौड़ा बोलने के बाद आपको गाना भी सुनवा देते हैं, एक अच्छा सा गाना आपके लिए, हमारे और आपके जैसे हिंदुस्तानियों के लिए।

साथियों, आपका फिर से हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम नई उड़ान में। और अब हम आपके लिए लेके आए हैं स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित अगली प्रस्तुति, जिसका विषय है कचरा प्रबंधन और स्वच्छ शहर अभियान, कचरे से स्वच्छ कल। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है अभिषेक शर्मा ने।

0: जब कोई हमारे घर आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? घर को सहेजते हैं, आंगन को सजाते हैं, हर कोने को साफ रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे घर को देखकर हमें याद रखें। लेकिन कभी सोचा है, जिस शहर में हम रहते हैं, जो हमें पहचान देता है, रोजगार देता है, सपनों को उड़ान देता है, उस शहर को सजाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नमस्कार श्रोताओं, आज बात कर रहे हैं नई उड़ान की विशेष श्रृंखला परिवर्तन में कचरा प्रबंधन और स्वच्छ शहर अभियान की। तो जैसा कि अभी प्रचलन में है हरा डब्बा और नीला डब्बा, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके देने के लिए, तो क्या आपको ऐसा मिलता है?
1: नहीं, कुछ घर से मिलता है और कुछ घर से नहीं मिलता है, तो हमको कूड़ा छांटने में या करने में दिक्कत होती है।
2: कुछ लोगों को देखा गया है कि सफाई जैसे पसंद ही नहीं है उन्हें, जानबूझ के भी वो गंदगी करते हैं।
0: अच्छा, आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ से निकलते हैं तो मजबूरी में नाक बंद ही करना पड़ता है?
3: हाँ, अब काफी प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पे लोगों ने रीसेल के लिए रख रखा है खरीद के, तो लोग वहाँ पर पानी गंदगी सब फैलाते रहते हैं।
0: और यहाँ के लोगों की आदत कैसी है सफाई को लेकर के?
4: आदत बहुत खराब है, जहाँ पाते वही कचरा फेंक देते हैं, गाड़ी वाले को देते नहीं है, कहीं प्लाट में फेंक देते हैं।
2: कोई भी एक सोच जिससे कि बदलाव हो सकता है, वो एक मिशन तब बनता है जब एक सभी नागरिक उसमें संपूर्ण तरीके से अपना योगदान दें।
0: दोस्तों, शहर सिर्फ सड़कों, इमारतों और बाजारों का नाम नहीं होता, शहर उन लोगों की सोच का नाम होता है जो उसे अपना कहते हैं। किसी शहर की खूबसूरती उसकी दीवारों पर बने रंगों से नहीं, बल्कि उन हाथों से तय होती है जो कूड़ा सड़क पर नहीं डस्टबिन में डालते हैं, उन नागरिकों से तय होती है जो शिकायत करने से पहले अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और उन बच्चों से तय होती है जो अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं कि स्वच्छता सिर्फ एक नियम नहीं, एक संस्कार भी है। कभी किसी सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर को देखकर मन में सवाल उठता है, आखिर ये कूड़ा आया कहां से? ये आसमान से तो गिरा नहीं, इसे हम में से ही किसी ने फेंका होगा। और यही वो सच है जिससे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा शहर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाए, लेकिन स्वच्छ शहर की शुरुआत किसी सरकारी योजना से नहीं, हमारी एक छोटी सी आदत से होती है। एक खाली पानी की बोतल सही जगह फेंकने से, एक पॉलीथीन सड़क पर ना छोड़ने से, और ये सोचने से कि ये शहर मेरा है। क्योंकि जब सड़क पर कूड़ा बिखरता है तो सिर्फ शहर गंदा नहीं होता, हमारी पहचान भी धुंधली पड़ जाती है। तो दोस्तों, नई उड़ान की विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं अपने स्वच्छ शहर लखनऊ के बारे में, कि हमारा शहर लखनऊ कितना स्वच्छ है और इस स्वच्छता को बनाए रखने में लखनऊ वासियों की क्या जिम्मेदारी है, ये हम जरा सा बातचीत कर रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका?
5: देवेशी प्रताप सिंह।
0: क्या करते हैं आप?
5: मैं फार्मा में हूँ।
0: लखनऊ आपके हिसाब से कितना स्वच्छ है?
5: लखनऊ जहाँ तक कि जितना हम लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वी आर फ्रिक्वेंट ट्रैवलर, हमारी जॉब ऐसी है कि काफ़ी ट्रैवल करने को मिलता है, तो हम ये देख पाते हैं कि कंपैरेटिवली बाकी शहरों के मुकाबले हमारा शहर लखनऊ जो है, और विगत में 17 वर्षों से लखनऊ में रह रहा हूँ और लखनऊ को बदलते हुए हमने देखा है, तो लखनऊ हर तौर पर बदला है, साफ सफाई के तौर पे भी बदला है, लोगों की मानसिकता भी बदली है। बट मेरे हिसाब से आप सिर्फ स्वच्छता ही एक मिशन नहीं है, कोई भी एक सोच जिससे कि बदलाव हो सकता है, वो एक मिशन तब बनता है जब एक सभी नागरिक उसमें संपूर्ण तरीके से अपना योगदान दें। जहाँ तक हम लोग देख पाते हैं कि कुछ पढ़े लिखे लोग सफाई को काफ़ी ध्यान देते हैं, अब चाहे वो अपना घर हो, चाहे घर से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र हो, खुले में कूड़ा नहीं करते हैं, खुले में शौच नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक कुछ लोगों को देखा गया है कि सफाई जैसे पसंद ही नहीं है उन्हें, जानबूझ के भी वो गंदगी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर रोकथाम और थोड़ा मानसिक बदलाव, और अगर एक सुनियोजित तरीके से एक आम आदमी छोटी छोटी एक स्टेप्स ले, तो भी शहर में काफ़ी बदलाव और निश्चित तौर पर जो एक मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की जो सोच है, वो ज़रूर पूरी की जा सकती है मेरे।
0: अच्छा भैया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि सर ने कहा कि कुछ लोग स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं या उसे वो ज़रूरी नहीं मानते हैं, तो क्या वो सिर्फ सरकार की योजना के भरोसे बैठे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है? आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम अमित मिश्रा है।

0: आपको क्या लगता है?
1: हमको ये लगता है कि देखिए, जिम्मेदारी तो सभी नागरिक की होती है, सिर्फ सरकार की नहीं होती, सरकार कोई भी हो, जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ नागरिक की होती है पूरी। उसके अलावा सरकार को थोड़ा सा प्रोविज़न करना चाहिए और फाइन वगैरह लगाने चाहिए कि आप ऐसी जगहों पे कूड़ा जो फेंकते हैं, जो गलत होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता, वहाँ कूड़ा डालने पे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके ऊपर भरपूर फाइन लगाना चाहिए ताकि अच्छा, बंद हो सके।
0: नगर निगम की गाड़ियाँ आपके घर तक जाती हैं?
1: बिल्कुल जाती हैं, हमारे घर तक जाती हैं, बट फिर वही बात कि हमारे कॉलोनी में कम से कम 10-15 घर होंगे जिसमें से 5-6 लोग कूड़ा देते हैं, 5-6 लोग नहीं देते हैं, तो वो लोग कूड़ा अगर नहीं देते हैं तो वो लोग डिस्ट्रॉय कहाँ करते हैं। तो ऐसे लोगों पे ये कड़ाई से होना चाहिए कि अगर 15 घर उस कॉलोनी में रजिस्टर्ड हैं तो सबको कूड़ा देना पड़ेगा, अन्यथा फाइन उनके ऊपर लगाना चाहिए।
0: अच्छा, आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां से निकलते हैं तो मजबूरी में नाक बंद ही करना पड़ता है?
1: हाँ, अब हमारे घर के आसपास जो भी अभी प्लॉट्स खाली हैं, जो लोग नहीं बनवा रहे हैं, कोई काफ़ी प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पे लोगों ने रीसेल के लिए रख रखा है खरीद के, तो लोग वहाँ पर पानी गंदगी सब फैलाते रहते हैं, तो वहाँ से निकलने में थोड़ा ऑड लगता है और थोड़ा गंदगी वहाँ फील होती है। वो कॉलोनी वालों का ही दायित्व है कि उसको साफ सुथरा रखें, या तो जिनका सबसे बड़ी बात तो ये भी है, जिनका प्लॉट है सब, वो अगर उनको मकान नहीं बनाना है तो उनको निरंतर आके वहाँ सफाई करनी है, अगर वो सफाई करेंगे तो बट ऑब्वियस अगल बगल वाले कूड़ा वहाँ पर नहीं फेंकेंगे।
0: अभी एक दुकान पर हम हैं और जो उसके ओनर है उनसे हम जरा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अपने दुकान पर कचरा प्रबंधन वो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी पर।
2: थैंक यू। मैं सुमेर यादव लखनऊ वासियों से कहता हूँ, स्वच्छ अभियान के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए आप गीला कचरा अलग, सूखा अलग और पन्ने के प्रतिबंध लगाए रखिएगा।
0: जैसे आपकी दुकान पे जो भी ग्राहक आते हैं, जो डस्टबिन रखा होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं या वो इधर उधर कहीं फेंक के चल देते हैं?
2: नहीं नहीं, वो हमारा सहयोग करते हैं, सहयोग साथ में पूछते हैं कि भैया ये हम कहाँ डालें, तो हम उसे कहते हैं कि ये डस्टबिन रखा हुआ है, इसमें डालिए आप।
0: और अगर कुछ लोग गलती करते हैं फिर?
2: नहीं, तो उसको समझाया जाता है कि आप ऐसा ना कीजिए, ऐसा करने से जो है गंदगी फैलेगी हमारे लखनऊ में, नंबर एक बनाने के लिए आपका सहयोग चाहिए, तो ऐसा वो लोग करते भी हैं, सहयोग भी करते हैं।
0: तो उस डस्टबिन का जो कूड़ा होता है फिर आप क्या करते हैं उसका?
2: वो गाड़ी आती है, वो उठा ले जाता है। जी, नगर निगम आता है, उठा ले जाता है।
0: तो जैसे शहर को स्वच्छ बनाने में आम नागरिक की कितनी भूमिका है? बस एक और सवाल ये,
2: आम नागरिक अगर सहयोग की बात करें, अगर वो अगर पूरी से जागरूकता हो जाए तो लखनऊ हमारा स्वच्छ में नंबर एक हो जाएगा। इसके लिए हम सभी नागरिकों से कहते हैं कि सभी ये लोग जो सहयोग करें इस स्वच्छ बनाने के लिए।
0: तो जो घर घर जा कर के कूड़ा कचरा कलेक्ट करने वाले सफाई कर्मी हैं उनसे जरा सा हम बातचीत करते हैं, जो LSA के तहत काम करते हैं, यानी कि लखनऊ स्वच्छ अभियान के तहत काम करते हैं, उनसे जरा बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका?
3: ओम प्रकाश।
0: ओम प्रकाश जी, आप क्या काम करते हैं?
3: ड्राइवर हैं, कूड़े की गाड़ी चलाते हैं।
0: अच्छा, तो जब आप घर घर जाते हैं लोगों के यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, तो जैसा कि अभी प्रचलन में है हरा डब्बा और नीला डब्बा, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके देने के लिए, तो क्या आपको ऐसा मिलता है?
3: नहीं, कुछ घर से मिलता है और कुछ घर से नहीं मिलता है, तो हमको कूड़ा छाटने में या करने में दिक्कत होती है, और जो करते हैं मतलब देते हैं तो उनका कुछ उनसे सहयोग मिलता है।
0: तो अलग अलग करके देने से क्या फायदा होता है?
3: अलग अलग करने से ये फायदा होता है, हमारा समय बचता है, फिर भी जो काम है आगे बढ़ता है, समय से लोगों का कूड़ा उठता है, ऐसे कूड़ा नहीं उठ पाता छाटने के समय पे,
0: टाइम ज्यादा लगता है
3: जी।
0: तो जो कूड़ा आप लेकर के जाते हैं तो कहाँ लेकर के जाते हैं? ये
3: मड़ियाओं लोहा भंडार मशीन पे गिराया जाता है।
0: फिर उसके बाद क्या होता है?
3: उसके बाद वो मशीन में चला जाता है, फिर
0: मतलब रिसाइकिल किया जाता है किसी तरीके से।
3: जी।
0: अच्छा, जो लोग आसपास आप देखते होंगे कि कूड़ा जो है पन्नी में बांध करके फेंक देते हैं, कभी उसमें खाने की सामान कुछ चीजें होती, खाने का सामान होता है, कभी कुछ ऐसा सामान होता है जिसे पशु पक्षी खाते हैं, तो ये आदत कितनी खराब है लखनऊ की स्वच्छता को लेकर के जरा आप बताइए।
3: सब लोगों से कहते हैं गाड़ी में दीजिए कूड़ा, नीचे ना डालिए, वो कुछ लोग हैं जो समझ गए हैं तो देने लगे हैं, नहीं तो बाकी लोग तो फेंक रहे हैं, कह रहे हैं देखा जाएगा जो होना है, तो
0: हम थोड़ा सा बिहेवियर बदलने की बात।
3: जी, हम तो कह रहे हैं सब लोग गाड़ी में दीजिए।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, धन्यवाद। दीदी, क्या नाम है आपका?
4: सावित्री।
0: क्या करती हैं आप?
4: झाड़ू का काम करती हैं।
0: मतलब सफाई का काम?
4: सफाई का काम।
0: अच्छा, अपने शहर की स्वच्छता अगर लखनऊ की बात करें तो आपको लखनऊ शहर कैसा लगता है?
4: अच्छा लगता है।
0: और यहाँ के लोगों की आदत कैसी है सफाई को लेकर के?
4: आदत बहुत खराब है, जहाँ पाते वहीं कचरा फेंक देते हैं, गाड़ी वाले को देते नहीं है, कहीं प्लाट में फेंक देते हैं, गाड़ी वालों को देना चाहिए कूड़ा महीने में। इधर उधर गंदगी क्यों फैलाएं, गाड़ी वाले को ना दे दे।

0: आप लोगों को क्या समझाते हैं?
1: यही समझाते हैं, इधर उधर न फेंका करो, गाड़ी वाले आते उसको दे दो, इधर उधर गंदगी तो होगी, बीमारी पसरेगी।
0: अच्छा दीदी, जैसे आप सफाई का काम करती हैं, तो आपको महसूस होता है कि लोग आज भी इस मानसिकता में है कि जो गंदगी फैलाना उनका काम है और सफाई करना सफाई कर्मी का, लोग ऐसा सोचते हैं क्या?
1: बहुत लोग सोचते हैं कि गंदगी पड़ी है तो पड़ी रहने दो, और लोग बहुत सोचते हैं तो साफ सफाई है तो सफाई करना चाहिए।
0: अगर लखनऊ को, जैसा लखनऊ जो है अपना तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में स्वच्छता में, अभी लखनऊ का नाम रोशन हुआ है माननीय सुषमा खरकवाल जी के दिशा निर्देश में, तो लखनऊ को पहले नंबर पर कैसे लाया जा सकता है?
1: लोग आदत अपनी बदले, साफ सफाई कर रखे।
2: दोस्तों, कचरा प्रबंधन और शहर की स्वच्छता को लेकर के हमने बात की लखनऊ नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी से। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
3: मैं डॉक्टर पी के श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी लखनऊ बोल रहा हूँ। हमारे नगर निगम के तरफ से हमारे नगर विकास मंत्री जी, प्रभारी विकास मंत्री जी, माननीय महापौर मैडम, नगर आयुक्त सर और इन लोगों सभी के स्तर से लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि हम कैसे लखनऊ को और अच्छी हालत में, साफ सफाई की दृष्टि से और अच्छी हालत में पहुंचें। पिछले साल सभी के प्रयास से लखनऊ को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला था, और प्रयास है इन सबका कि हम और अच्छी पोजीशन देश में लाएं। इसमें एक रिक्वेस्ट यही है, या कह लीजिए कि एक अपील यही है, कि जो हमारे यहाँ जो कूड़े को घरों से कलेक्ट करने के लिए रोज़ सुबह गाड़ियाँ निकलती हैं, हर वार्ड में, हर घर में, हर क्षेत्र में जाती हैं, और जो वहाँ से कूड़ा लिया जाता है वो सेग्रीगेटेड, मतलब अलग अलग कूड़ा लिया जाता है, गीला कूड़ा अलग लिया जाता है और सूखा कूड़ा अलग लिया जाता है, जिससे कि आगे जब वो ट्रांसफ़र होता जाए तो वो दोनों कूड़े अपने सही स्थानों पर पहुँच सकें। तो हमारे जो डिफरेंट वार्ड्स में इस की प्रचार प्रसार के लिए और इसकी एक तरह से ओरिएंटेशन या समझाने के लिए भी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन सभी लोग अगर, जितने हैं नागरिक, अगर वो अपना कूड़ा अलग अलग रखेंगे तो ये हमारा जो ट्रांसमिशन है और बेहतर ढंग से कूड़े का डिस्पोजल हो सकेगा और अच्छी सफाई लखनऊ में नजर आएगी। बस बाकी सब आप लोग तो जानते ही हैं कि इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, प्लास्टिक का यूज देखिए मिनिमम होना चाहिए जहाँ तक हो सके, और डिस्पोजल भी उसका प्रॉपर हो। तो बस कूड़े का सेग्रीगेशन आप करेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और फर्दर डिस्पोजल जो है वो काफी इफिशिएंट और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।
2: दोस्तों, जब कोई लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली या किसी भी शहर का नाम लेता है तो वो सिर्फ एक जगह का नाम नहीं लेता, वो वहाँ रहने वाले लोगों के संस्कारों और सोच की बात करता है। तो आइए आज एक संकल्प लें कि हम सिर्फ स्वच्छ शहर की उम्मीद नहीं करेंगे बल्कि उसके निर्माण में अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ ये याद नहीं रखेंगी कि हमने कितनी बातें की थी, वे ये याद रखेंगी कि हमने अपने शहर को कैसा छोड़ा था। क्योंकि स्वच्छ शहर सिर्फ एक सपना नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है और हमारी जिम्मेदारी भी।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे ओबी बेस्ड प्रस्तुति, जिसका विषय था कचरा प्रबंधन और स्वच्छ शहर अभियान, कचरे से स्वच्छ कल। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया था अभिषेक शर्मा ने। आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारे ईमेल आईडी पर कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। चलिए अब कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के आवासीय खेल छात्रावास जो हैं, वहाँ पर खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ियों और कोचेस जो हैं उनसे आवेदन मांगे गए हैं। यानी कि ऐसे छात्रावासों में जो खिलाड़ी रह रहे हैं उनको जो ट्रेनिंग है वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स और कोचेस से मिलेगी, तो है अच्छी बात, आपको बता दी। दूसरी अच्छी बात आपको ये बतानी है कि 83 परियोजनाओं के लोकार्पण और 185 योजनाओं के शिलान्यास के साथ गाजीपुर को 692 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। तो इस सौगात के बाद उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि गाजीपुर जो क्षेत्र है उसका अच्छे से डेवलपमेंट होगा और वहाँ के जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब पेन पेपर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो फिर आप अपने माइंड में जो मैं कहने जा

रही हूँ उसको फिक्स कर लीजिएगा जी। बात होने जा रही है अमृत अवसरों की। सबसे पहले नोट कीजिए वेबसाइट, अगर पेपर पेन है तो नोट करें, नहीं तो याद रखें, nfr.indianrailways.gov.in। फिर से सुनिए, nfr.indianrailways.gov.in। ये वेबसाइट है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की, जहाँ पर 6,777 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। योग्यताएं मैट्रिक, 12वीं और अन्य योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग पदों के हिसाब से कहीं पर मैट्रिक की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर 12th पास होना चाहिए और अन्य जो योग्यताएं हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। अंतिम तिथि है 19 अगस्त और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अगला जो मैं आपको अमृत अवसर बताने जा रही हूँ, उसके लिए अंतिम तिथि है 3 अगस्त, यानी कि चार दिन का ही समय है। तो आप वेबसाइट नोट कीजिए, upsc.up.nic.in, यानी कि फिर से सुनिएगा, upsc.up.nic.in। ये वेबसाइट है, कुल 500 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं, जिसमें कि डिप्टी कलेक्टर का पद भी शामिल है। अंतिम तिथि है 3 अगस्त और स्नातक और उसके साथ में अन्य योग्यताएं भी आपके पास होनी चाहिए। तो किस पद के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए, उसके लिए आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए आप सुन सकते हैं अगला गीत।

साथियों, प्यार का मौसम आपके जीवन में हमेशा बना रहे, आपके अपने आप से प्यार करते रहें और आप अपने अपनों से प्यार करते रहें, यही शुभकामना हम आपको दे सकते हैं। और इसी शुभकामना के साथ अब आज के कार्यक्रम नई उड़ान से अपनी रेडियो दोस्त रीना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे प्रत्येक शनिवार, मंगलवार, गुरुवार शाम 6:50 से शाम 7:20 तक। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे प्रत्येक शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को शाम 6:50 से 7:20 तक।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन माहे बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, शाम के 6:20 हुआ चाहते हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: तो जय हिंद।
1: सौरभ भैया।
0: हाँ अभिषेक भैया।
1: तो देखो हमारे एक चाचा रहे, तुमको एक चीज बताओ जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो वही का भैया, बहुत दिन पहले की बात है।
0: हाँ।
1: कमाए खाए खातिन चले गए का सार में।
0: हाँ।
1: और भैया कुछ दिन बाद देखे वही गाँव के हैं लौटे हैं।
0: हाँ।
1: और गाँव में बड़े नीके थे, कमाए खा रहे हैं।
0: पता तो हमको लग रहा है, हम तो पूछ ही हो रहा है।
1: हाँ।
0: आज बड़े दिन बाद मुलाकात हुए तो हम सोचे पूछबे, लेकिन जो बढ़िया हुआ कि तुम्हें छेड़ दे।
1: मेन बात यू बतावा चैतन भैया।
0: हाँ।
1: जैसे हमारे चाचा ने
0: यही
1: तरह तमाम पंच भैया का रहे गाँव तेने कमाए खाए खातिन रोजे रोटी खातिन सारे जात रहे। मुला भैया सरकार की कोशिश यू होते कि कोनो पंच भैया अपने घर थे परिवार थे दूर ना हो पावे, उनके खातिन यहाँ की योजना बहुत बढ़िया ले।
0: बिल्कुल भैया, योजना का लाभ उठा खातिर हमारो पंच भाई जो उन गांव के बाहर गए हैं, वो तो बहुत लोग वापस आए हैं।
1: हाँ।
0: और योजना है विकसित भारत जी राम जी।
1: हाँ, बिल्कुल
0: है ना। तो ई के तहत जैसे जो है जो रोजगार की गारंटी है वो अब 125 दिन की हुई गए हैं। जीमा जो अपन ग्रामीण पंच भाई लोग हैं उनके परिवार जो है वो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 125 दिन तक मजदूरी कह सकत हैं, और यह उनका कानूनी रूप से गारंटी मिली है।
1: हिम्मत देखो कोनो कोताही नहीं है।
0: हाँ।
1: कि भैया कि घर में हो तो यूं नहीं है कि कोनो काम धंधा नहीं है। मान लो भाई कोई के पास खेत पात नहीं है, कोई के पास कोनो काम धंधा नीक नहीं है, तो सरकार ये गारंटी देते
0: बिल्कुल
1: कि हम तुमका भैया तो देव काम, तुम काम करो उसके बदले में भैया
0: दाम
1: मिले
0: पाओ।
1: हैं।
0: और दाम पाओ तो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कभू कभू आड़े तिरछे कोई जरूरत पड़ जाती है तो उस समय वो पैसा बहुत काम आवत है। अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत मुख्य रूप ने चार क्षेत्र में यहाँ काम किए जाते हैं, जैसे जल सुरक्षा है,
1: बिल्कुल
0: मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा है जैसे सड़कें हैं, संपर्क मार्ग है, सार्वजनिक भवन है, या आजीविका क्या है, बाजार क्या है, या कृषि संबंधित कोई संपत्तियां पर काम कर है, या बाढ़ नियंत्रण का काम हो, या मृदा संरक्षण का काम हो। तो तरीके के आप बहुत सारे काम ऐसे किए जा रहे हैं जिसे अपन पंच भाई विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत लाभ उठा के यहाँ अपने रोजगार पा सकत हैं और जो है कमाई कर सकत हैं।
1: बिल्कुल सौरभ भैया। और यह योजना सबका अपने पैरन पर खड़े होकर एक उद्देश्य देते कि भाई अपने घर में रह के अपने परिवार से दूर हो बिना घर में काम करो, अपने गाँव में यहाँ भैया देखो तमाम तन के कहूँ गड्ढा खोदे जा रहे हैं, कहूँ पर तालाब
0: जा रहे हैं।
1: सड़क का खड़ंजा पटाई चल रही है, तो यू सब को कह रहा है अपन सरकार के माध्यम तेने विकसित भारत बीराम जी योजना तेने जो चल रही है योजना, इसे सब लोग बढ़िया अपन काम कर रहे हैं घर में रहते भे और बढ़िया नीके तेने अपन घरों का जैसे खेत पातक काम है अपन फसल के सब देख रहे हैं।
0: बिल्कुल भैया सही कह रहे हो। अच्छा एका एक और लाभ है, जैसे शहर में रहो तो प्रदूषण हो।
1: हाँ।
0: पता लगे कोई तरकारी लेके हो और कोनो उल्टी सीजन की पकड़ा दी।
1: हाँ, हाँ।
0: अपने गाँव में हो तो अपन तरकारी उगाए हो, अपने स्वस्थ वातावरण में हो।
1: बिल्कुल।
0: तो एका चाहे खान पान क्या हो, चाहे शारीरिक मानसिक रूप से हो, हर प्रकार से नहीं का जो है हम लोगों के यहाँ लाभ मिलत है और स्वस्थ रहा में यहाँ मदद करत है। और इके साथ में यहाँ जैसे शहर हो कहूँ खेती बाड़ी देखा हो तो पता लाग है या सवारी केहन वा सवारी केहन, यहाँ हुआ करत भाई पता नहीं रुपया पैसा खर्च भाई तुरंत आए।
1: हाँ।
0: यहाँ अपने घर के घर है तुरंत आए पहुँच गए सारा नजारा ले ली, जरूरत पड़ी तो वहाँ जो है वहाँ जो सुधारक भाव कह ली।
1: सही बात भैया। देखो घर में तमाम तन के अपने वैसो काम होते हैं। अब जैसे पहले कोनो घर में भाई एक मन नहीं है वो घर में राहत रहे वो परदेश कमाए चला लगा, तो अब घरों में दिक्कत, घर में भाई कहूँ तरकारी लाओ खाए बाजार रह जाए खाए कोनो कमरा लायक है बोर्ड में है भैया और मातारी बाप उनका को देख रेख करे है।
0: हाँ।
1: और संगे संगे अगर मान लो खेत पात हो तो उनकी को देखभाल करे।
0: बिल्कुल।
1: तो अब यू सब अगर हमका घर ही में यहाँ कोनो रोजगार मिल जाते धंधा मिल जाते तो यू जो से अब ये योजना है तो मैं घर में काम कर रहे न और सब काम अपन अपने मातारी बाप की सेवा हुई रही है।
0: बिल्कुल।
1: अपने दुआरे भैया हराव बांध लेन दुई मुखिया के दुआरे का जन बोले जाते
0: बिल्कुल
1: उनकी सेवा हुई रही है। और खेतों पाते जो काम बढ़िया चल रहा है और भैया ये योजना तेने पैसों मिल जाते अपने हाथ में या तो जो उन साग सब्जी लाओ खोते बाजार तेने वहो ले आओ।
0: चारों तरफ से मौज है मौज है। तो यह लिए जरूरी है कि अपन पंच भाई जो है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत योजना है या इका लाभ जरूर उठावें। और इके साथ साथ देखो अपने जब हम लोग योजना के लाभ उठे थे तो इसे हम लोगों के जीवन में परिवर्तन आवत।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो जब जीवन में परिवर्तन आवत है तो जीवन में परिवर्तन के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो होते है कि हम लोग सब लोग शिक्षित बने।
1: बिल्कुल।
0: और
1: बिल्कुल।
0: शिक्षा में का परिवर्तन आ रहा है
1: बिल्कुल
0: इपरो विचार किया जाए इपर काम किया जाए। तो चलो अपने पंच भाई के यहाँ जो है

0: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से बदलाव ये विषय पर जो है अपने पंचभाई के यहाँ बत ही सुनवाई जाए, ये पर जानकारी दे रहे हैं देव प्रताप सिंह भैया, तो इका सुना जाए और जाना जाए।
1: बिल्कुल भैया।
2: साथियों, हम जानते हैं कि हमारा देश भारत मूलतः और प्रधानतः गांवों का देश है और किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास में शिक्षा का बुनियादी अर्थात आधारभूत महत्व होता है। हमारे देश में शिक्षा को शुरू से ही महत्व दिया गया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में भी थे जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ पर कि देश विदेश के लोग ज्ञानार्जन के लिए आते थे। शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्ष 1993 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य में ये अवधारित किया कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हमारे मूल अधिकार में होना चाहिए, और ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इसको केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 86वां संशोधन करके 2002 में इसका अधिनियम पारित किया गया, जिसको कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। और एक विशेष बात यह है कि शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है जिसे कि हमारे संविधान के तीनों भागों में अर्थात संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं उनमें अनुच्छेद 21A में इसको स्थान दिया गया है। इसी प्रकार जो संविधान का अगला भाग है जिसको कि हम राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, उसके अनुच्छेद 45 में भी हमने शिक्षा के महत्व को रखा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है यानी कि शुरू के बच्चों के लिए, 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उनकी भी देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना ये राज्य का दायित्व बताया गया है। और इसी प्रकार से जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उसमें भी अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें सम्यक रूप से और इसको पर्याप्त महत्व दें। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा शिक्षा को कितना अधिक महत्व दिया गया है, और वस्तुतः शिक्षा के इसी महत्व के कारण ही जो हमारी 1986 में शिक्षा नीति थी जिसको 1992 में संशोधित किया गया था, तो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई और उसमें भी बड़े आमूलचूल परिवर्तन किए गए। जो हमारा पहले 10+2 का अकादमिक ढांचा हुआ करता था वो 5+3+3+4 का हो गया, यानी कि शुरू के जो 5 वर्ष हैं उसमें से 3 वर्ष आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका के लिए रखे गए, जिसमें से 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अध्ययन करेंगे। फिर 6 से 8 वर्ष के बच्चे कक्षा 1 और 2 में पढ़ेंगे। तो ये व्यवस्था इसलिए रखी गई कि ये माना गया है, देखा गया कि हमारा जो मस्तिष्क का विकास है 85% विकास हमारा इस आयु में हो जाता है 6 से 8 वर्ष तक के बीच में। इसके पश्चात अगले 3 वर्ष रखे गए कक्षा 3 से 5 के लिए, जिसमें 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को स्थान दिया गया। फिर 3 वर्ष जो हैं 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा 6 से 8 में पढ़ेंगे, और 4 वर्ष जो हैं बाद में 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो हैं ये कक्षा 9 से 12 में पढ़ेंगे। तो ये अकादमिक ढांचा भी बदला गया है और भी तमाम परिवर्तन किए गए हैं जिसके फलस्वरूप हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। जो परिवर्तन महत्वपूर्ण आए हैं, जैसे कि एक तो आया है कि अब शिक्षा तक हर व्यक्ति की पहुंच हो गई है। हमारे बचपन में मैंने देखा था कि सभी लोगों को विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन आज गांव का प्रत्येक बच्चा, चूंकि शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, इसलिए 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बालक अब शिक्षा से अछूता नहीं रहा। एक बड़ा परिवर्तन ही आया है। दूसरे विद्यालयों में जो पहले टाट पट्टी हुआ करती थी वो परिवर्तित हो चुकी है, अब कुर्सी मेज उसका स्थान ले चुकी है। स्मार्ट क्लासेस आ गए हैं और डिजिटल एजुकेशन जिसको कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो बढ़ा है। कई प्रकार के ऐप्स आ गए हैं और क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस हो गए हैं। टीचर्स की उपस्थिति के लिए डिजिटल ट्रैकिंग की जा रही है, इसी प्रकार बच्चों की भी उपस्थिति चेक करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग है। तो ये जो डिजिटलीकरण हुआ है ये भी हमारी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण बदलाव है। एक बदलाव बालिकाओं की शिक्षा में देखा गया है कि बालिकाओं की शिक्षा पर सरकार द्वारा बराबर बल दिया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, इनका उच्चीकरण पहले कक्षा 1 से 8 तक हुआ करते थे, अब कस्तूरबा गांधी विद्यालय कक्षा 12 तक हो गए हैं। बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बल दिया जा रहा है, और

0: बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ये बदलाव आया है। इसी प्रकार से एक बदलाव देखा गया है कि अब शिक्षा केवल ज्ञान का ही साधन नहीं रही, बल्कि उसमें उद्यमता विकास, कौशल विकास, रोजगार उन्मुखी शिक्षा इत्यादि भी दिए जाने का बराबर प्रयास किया जा रहा है। और सामुदायिक सहभागिता शिक्षा में दिखाई पड़ी है। विद्यालय प्रबंध समितियां बन गई हैं, उनकी बैठकें बराबर हुआ करती हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग्स स्टार्ट हो गई हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो अभिभावक और छात्रों के बीच में बैठकें समय समय पर निर्धारित हो गई हैं। सरकार भी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, तमाम योजनाओं के माध्यम से, समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वाधिक बजट लगभग रुपए में हर 13वें पैसे में 1 पैसा जो है शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है बजट का राज्य सरकार के द्वारा। एक परिवर्तन ये भी दृष्टिगोचर हुआ है कि जो पहले बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, बीच में चले जाते थे, ड्रॉप आउट हो जाते थे, तो शारदा ऐप बनाया गया है, स्कूल हर दिन आए शारदा ऐप। तो इससे जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो स्कूल छोड़ देते हैं बीच में, उनको ट्रैक किया जाता है, उनको ध्यान में रखा जाता है। सामान्य जागरूकता में वृद्धि हुई है, ये एक परिवर्तन हुआ है। पहले हमारी गाँव में शिक्षित लोग कम मिलते थे, कोई पत्र आता था, कोई तार आता था, तो गांव में 1-2 आदमी कोई होते थे जो उसको पढ़ सकते थे। लेकिन अब ये समस्या नहीं है, हर घर में पढ़े लिखे बहुएं आ गई हैं, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं। स्वास्थ्य और हाइजीन यानी कि साफ सफाई के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। स्कूलों में बाला पेंटिंग्स, बिल्डिंग एज लर्निंग एड जिसको कहते हैं, स्कूल दूर से दिखाई देते हैं, प्राइमरी स्कूल, उसमें जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं उसकी दीवारों पर लिखी हुई हैं, तमाम चित्र बने हुए हैं, ग्रहों के, उपग्रहों के, तमाम ज्ञान वैज्ञानिकों के नाम, नेताओं के नाम, राजनेताओं के नाम सब आपको मिलेंगे। तमाम ज्ञान हम स्कूल के माध्यम से दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि MDM जिसको कहते हैं, मिड डे मील, सरकार ने इसके साथ पोषण पर भी ध्यान दिया है कि पोषण भी बच्चों को अच्छा मिले, और इसके लिए मिड डे मील की व्यवस्था है, ताज़ा और गर्म भोजन बच्चों को स्कूल में दिया जाता है ताकि उनके पोषण में उसका योगदान रहे और वो अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें। इन सब के फलस्वरूप जो हमारी जो साक्षरता दर है वो प्रभावित हुई है, काफ़ी बढ़ी हुई है। 2011 की जनगणना में पूरे भारत का देखा जाए तो ग्रामीण साक्षरता दर 68% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 59% थी, लेकिन अब ये काफ़ी बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67% थी और जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77% थी, महिलाओं की साक्षरता दर 57% थी, लेकिन अब ये जो 10-20% का अंतर है पुरुष महिला में, ये अब काफ़ी कम हो चुका है, नया डाटा अभी आना है। लेकिन साक्षरता में जो अभिवृद्धि हुई है, ये हमारी शिक्षा के कारण एक महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, उसका ये भी एक परिणाम रहा है। तो इस प्रकार से जो डिजिटल शिक्षा है, हमारे तमाम निपुण ऐप, गुणवत्ता ऐप, प्रेरणा ऐप, समर्थ ऐप, दीक्षा ऐप, पंख पोर्टल लाया गया है माध्यमिक शिक्षा के द्वारा। पंख पोर्टल से कैरियर काउंसलिंग में बच्चे उसकी अपनी मदद ले सकते हैं, कैरियर में उन्हें आगे कहाँ कैसे करना है, आगे बढ़ना है, इससे उसकी जानकारी हो सकती है। समर्थ पोर्टल जो है समावेशी शिक्षा में, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए समर्थ ऐप है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा ऐप है, प्रेरणा ऐप है, गुणवत्ता ऐप है। ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं कि शिक्षा में हम क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकें और शिक्षा के कारण हमारे समाज में बदलाव आ सकें। सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में बेसिक शिक्षा के लिए एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे। मेरा मानना है कि यदि हम इन योजनाओं को, कार्यक्रम को समय अंतर्गत करते हैं, निर्धारित अवधि पूरा करते हैं, तो निपुण लक्ष्य और संधारणीय विकास के लक्ष्य जो SDG गोल्स हैं उनको भी सुगमतापूर्वक और सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे और बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा, समतामूलक शिक्षा, समावेशी शिक्षा और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करके उनका सर्वांगीण विकास करने में सफल हो सकेंगे और तभी हमारा राष्ट्र प्रगति की नवीन ऊंचाइयों और आयामों को छूते हुए विश्व शक्ति और विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा। धन्यवाद।
1: सौरभ भैया।
2: हाँ अभिषेक भैया,
1: कितनी बढ़िया यह वार्ता रही।
2: ग्रामीण
1: क्षेत्र में शिक्षा से बदलाव और इतने कितनी बढ़िया शिक्षा मिली कि कैसे

0: शिक्षित आदमी है, शिक्षा पा रहा हो, इसे
1: और
0: ग्रामीण
1: कहीं से अपन
0: क्या
1: ग्रामीण
0: क्षेत्र
1: भाई
0: की
1: बहन हैं,
0: तरह है।
1: पंच हैं, इनका जो उन्हें शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित हो रहे हैं।
0: बिल्कुल भैया, तो
1: तो
0: इतनी बढ़िया जानकारी खातिन देव प्रताप सिंह भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तो अब देखो जो उन्हें बात कही तो अपन सबकी चले रही है और अपने पंच भाई के यहाँ जानकारी उस दिन गए है,
0: बिल्कुल भैया,
1: लेकिन अब जो उन्हें कुछ जो उन्हें मनोरंजन हो जाए
0: हाँ
1: तो अपने पंच भाई के यहाँ सुनावा जाए कजरी, जी का स्वर दिन है अनीता मिश्रा बहनी, तो एक सुना जाए।
0: सुना जाए भैया कजरी।

0: कोई भरोसा मौसम का नहीं है।
1: भाई। और अपन खेती तो भैया मौसम ही शुरू हो जाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: लेकिन
1: हाँ
0: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग अपने पंच भाई के यहाँ रोज मौसम की जानकारी देते दे थे, तो एक अनुमान हो जाते कि आने वाले दिन में कैसे मौसम रहने वाला है।
1: हाँ बिल्कुल बात है। हम तो फिर रोज ही दी थे मूला भैया। एक चीज़ और है, अब ऐसा मौसम हो रहा है तो सतर्क रहने की जरूरत है अपन सबका।
0: बिल्कुल भैया।
1: अगर जो सतर्क ना रही हो तो जैसे हमारा आज वाली हुई का है। हाँ तो
0: तो मेरे
1: भैया,
0: सुने ठीक रहे हो।
1: हाँ तो
0: हाँ
1: ऐसे मौसम, जब मौसम बदलत है तमाम सर की बीमारी भैया लावत हुई मौसम। तो
0: बिल्कुल भैया,
1: अपना सचेत रह के भीजे भाजे ना पाओ काम भैया जब हो इसमें। तो बिल्कुल भैया भीजो ना, ने जुकाम बुखार और खांसी सब आए जी।
0: तो भैया छाता लेके निकलो ना,
1: हाँ या बात सही है
0: और
1: भैया।
0: छाता लेके निकलो। एक दिन पहले हम सबको जो जानकारी दे थे उनका ध्यान से सुनो, समझो, वो हिसाब से अपन समय देखो तब
1: कहा एक
0: निकलो।
1: बात भैया
0: हाँ
1: कि कोताही ना करो।
0: हाँ कोताही न करो, और साथ में जो है खाली कपड़े लत्ता और भीगे की बात नहीं है,
1: हाँ
0: जैसे छत पर पता लाग है कोई बर्तन खुला रखा है वहाँ पानी जम रहा है, वो तमाम तरह के उमा मच्छर मक्खी हो जाते हैं, फिर उनसे तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो जरूरी है कि अगर बर्तन को सीधा रखा है तो उसका पानी उलट कर उल्टा
1: बिल्कुल
0: रखो
1: बिल्कुल सौरभ
0: है,
1: भैया।
0: और आसपास अपने घर के नीचे आसपास में देखे रहो कहूँ पानी भरी तो नहीं रहा है। अपन हरहा गुरु हैं, वही तो पानी में नहीं जो उन्हें डूब रहे हैं
1: भैया
0: या उनके
1: बिल्कुल
0: ऊपर बारिश
1: बिल्कुल।
0: तो नहीं हुई रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहे कि अगर वो बीमार पड़ जी हैं तो मान लो वही से बीमार पड़ गए तो दूध जो हुई उका पी हो तो वह अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हाँ
1: और भैया ऐसे में है तमामों ऐसी बीमारी हो जाती है रहा गुरुन के यहाँ भैया, जैसे मुंह पका खुरपका है ये सब
0: हाँ
1: हो जाती हैं।
0: हाँ
1: तो यह जरूरी बात यह हो भैया पंच भैया पहले टीका जरूर लगवा ले अपने
0: बिल्कुल
1: हरहान के यहाँ।
0: सही बात कहो कि टीका जरूर लगवा लें ताकि कोई प्रकार का आर्थिक नुकसान ना हो पावे, है ना, और साथ में जो है अपन पशु है वह सुरक्षित रही।
1: बिल्कुल भैया। और भैया देखो आजकल में है खाओ पियो वाली चीजन का बहुत ध्यान दे वाला होते हैं।
0: बिल्कुल बहुत ध्यान दे वाला होता है,
1: हाँ
0: कहे कि जब अच्छा खाई हो स्वस्थ खाई हो तब है स्वस्थ रही हो, दिमाग में अच्छे विचार रही हैं और काम में मन लागी। तो ज़रूरी यू है कि जो उन खाए पिए वाली चीज़ हो तो वह कोशिश करें कि जो अपने आसपास चीज़ें लोग
1: हाँ
0: बनावत हैं
1: हाँ
0: उन पर ध्यान दिया जाए। जिसके लिए सरकारों एक योजना चला रही है,
1: बिल्कुल।
0: प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है, जिसके तहत जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनका कैसे आगे बढ़ावा जाए, खाए वाले जो उन सामान बनावत हैं उनका कैसे आगे
1: हाँ
0: बढ़ावा जाए, इसके
1: बिल्कुल
0: लिए योजना के तहत काम किन जाते हैं।
1: बिल्कुल भैया। तो ऐसे देखो जो छोट छोट खाए पिए वाली चीजें हैं जो अपने आस पड़ोस में देखा जाए तो हम सबको जानित हुए थे कि भैया ये कोनो अचार बनावत है,
0: कोनो
1: कोई
0: पापड़
1: कहो
0: बनावत।
1: पापड़ बनावत है,
0: हाँ
1: कोई मसाला खुद पीसत है, खुद भरत है और खुद पैकिंग कहके भैया बेचे जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो अब हम सबका जान रहे हो तो इमा का हो भैया नीक चीज मिल जाते और उनके बढ़ावे खातिन उनका उन्नयन करे खातिन जब ई तन की सरकार योजना लावत है तो उनको भैया बल युग मिल जाते कि सरकार हमारे साथ मियाँ है और कहूँ पर अगर दिक्कत है तो
0: हाँ
1: भैया वह साथ खड़ी रही और उनका जैसे सब्सिडी है या मदद है या प्रशिक्षण है सब मिल जाते।
0: बिल्कुल भैया, जैसे सब्सिडी की बात करे हो हैं तो इस पर जो है 35% तक की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलत है, जिसके तहत जो है सरकार वित्तीय अनुदान देते हैं,
1: हाँ
0: और इसका सबसे बड़ा लाभ यू है कि जैसे ODOP चलते,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: जिला
1: हाँ
0: एक उत्पाद,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: भैया।
0: तो हर जिले में जो विशेष उत्पाद हैं उनका
1: हाँ
0: प्राथमिकता दी जाते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: और उनका जो कच्चा माल खरीदे के जो है प्रक्रिया है और जो काम करे के प्रक्रिया है उनका कैसे आसान बनावा जा सकत है,
1: हाँ
0: इस सारी चीज़ें। अच्छा एक बात और है,
1: हाँ भैया।
0: जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो, जिसे बात
1: हाँ
0: करे वो
1: हाँ
0: पापड़ और अचार के हैं, और वो कोनो बढ़िया अपने ब्रांड तने कोनो बनवाल इस नाम से ने,
1: हाँ
0: है ना, तो उई के बात का होते उई की मार्केटिंग करो सबसे जरूरी हो, कहे कि जब तक तो कोई का प्रचार प्रसार नहीं करी हो तब तक तो कोई कैसे जाने कौन पापड़ है कौन अचार का
1: बहुत बढ़िया
0: है
1: चीज़
0: ना।
1: बताया
0: तो उई
1: भैया।
0: पर 50% तक की वित्तीय सहायता ये प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के माध्यम से ने उपलब्ध कराई जाते।
1: अच्छा ओ भैया देखो सर भैया ई जौन सब पंच भैया होते हैं शुरू करे का यह उद्देश्य होते कि भाई उनके पास कोई ऐसी नौकरी बड़ी नौकरी नहीं होते ना खेती पाती इतनी ज़्यादा नहीं होते तो आदमी सोचे थे कि कुछ छोट मोट शुरू करे जिमा ज़्यादा लागत ना लगे और हमका मुनाफा ज़्यादा हो जाए।
0: बिल्कुल भैया, यह के लिए तो
1: हाँ
0: कहा सूक्ष्म खाद्य उद्योग
1: हाँ बिल्कुल
0: योजना
1: बिल्कुल
0: है, और दूसरा बात यह है जैसे इमा FPO है या सहकारिता
1: हाँ
0: समितियां
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल
0: या स्वयं सहायता समूह
1: हाँ
0: हैं, इन सबका स्थापित करने के लिए भी इस योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाते हैं।
1: कुल मिलाए भैया यह योजना ऐसे है कि छोटे गरीब मनई सबका दयाकत भय बनाई गई कि अगर कोनो छोट मोट काम करे थे तो उसे मदद लेके सब तरह तने चाहे प्रशिक्षण हो चाहे सब्सिडी हो चाहे कोनो की मदद हो सरकार सब योजना तने देते हैं और उनके छोटे उद्यम का छोटे कामकाज का बड़ा बनावे के लिए
0: बिल्कुल
1: पूरी तरह से

0: सौरभ भैया।
1: हाँ अभिषेक भैया,
0: तो देखो मौसम तो आजकल बहुत वही सुई रहा है,
1: बदरिया में।
0: हाँ, बदरिया में हो रहा है भैया। और तो आज मुला आज देखो भैया दिन में गर्मी लाग रही है।
1: अरे भैया इस समय मौसम क्या कुछ पता ही नहीं है, आज गर्मी लागत रहा है, कल गर्मी लागत रहा है, और बीच बीच में बदरो आ जाते हैं। हाँ। और पता लगे रात में बरसे हो लागत।

0: निर्भर होते
1: हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर यहाँ बात यह है कि उनका जो काम है उनका उन्नयन हो, आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से नहीं, और हर लोग जाने उनका प्रचार और प्रसार हो।
0: और भैया आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का अवध है विशेष कार्यक्रम अपन किसान पंचनबद्ध किसान डायरी,
1: जो कि बीते सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित होते हैं।
0: हाँ भैया,
1: तो अपने पंच भाई के यहाँ हम लोग किसान डायरी सुनवावा चाहिए थे, तो इपर अब सुनवाई जाए।
0: हाँ, तो भैया शुरू की जाए अपन किसान डायरी जो उन्हें कृषि समाचार पर आधारित। आलेख है यदुनाथ सिंह मुरारी भैया क्या, वाचन है सौरभ शुक्ला भैया जो उन्हों आप। हाँ। और संपादन की इन्हें सुशील कुमार राय भैया। तो चलो सुना जाए।
1: बिल्कुल,
0: किसान डायरी
1: सुना जाए और समाचार जाने जाए।
0: हाँ भैया,
1: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं इस सप्ताह के प्रमुख कृषि समाचार। आज की सुर्खियां, सरकार समय पर सुलभ कराएगी किसानों को खाद, प्रदेश में स्थापित होंगे आदर्श पशु चिकित्सालय, शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी करेंगे गृहस्वामी, सरकार ने छेड़ा गोचर भूमि मुक्त कराने का अभियान, आत्मनिर्भर बनेंगी प्रदेश की गौशालाएं। अब कृषि समाचार विस्तार से। खरीफ सीजन में प्रदेश सरकार उर्वरक वितरण व्यवस्था के मद्देनजर अत्यंत सचेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को फसल के मुताबिक समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक उर्वरक उपलब्ध कराई गई है। खाद की कालाबाजारी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि प्रदेश सरकार खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक परिस्थितियों, कम वर्षा और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से रोजगार के साथ साथ किसानों की आय में इजाफा हो रहा है। राजधानी में आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने में यह क्षेत्र महती भूमिका निभाएगा। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों, अनुदानों और निवेश सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक उद्यमी निवेश के लिए आगे आएं। प्रदेश में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक और उन्नत बनाने की दिशा में सरकार ने प्रभावी पहल की है। इसके तहत प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आदर्श पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे। यहां पशुओं को सामान्य उपचार से लेकर जटिल एवं गंभीर बीमारियों के इलाज तक की सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय के निर्माण एवं उपकरणों पर 3 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। इन अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट, डिजिटल एक्सरे, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आंखों की सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, रिकवरी वार्ड तथा भर्ती वार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गंभीर रूप से बीमार पशुओं को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जाएगा। वहीं उनके भोजन, देखभाल और रिकवरी की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में पहली बार इस स्तर की व्यापक योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में उपचार की पूरी प्रक्रिया CCTV कैमरों की निगरानी में होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उपचार की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। प्रदेश सरकार की यह पहल पशुधन संरक्षण, ग्रामीण समृद्धि और आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत सरकार ने वास्तविक कृषि उपज विपणन समितियों को वर्चुअल रूप से एकीकृत करते हुए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार ई ट्रेनिंग राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल की शुरुआत की है। ये जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म पारदर्शी ऑनलाइन बोली, बेहतर मूल्य निर्धारण और खातों में भुगतान सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। यह कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय व्यापार को भी सुगम बनाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में 500 जलाशयों एवं अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के माध्यम से मत्स्य

पालन एवं जलीय कृषि के विकास की घोषणा की है। इस पहल से जलाशयों एवं अमृत सरोवरों में मत्स्य क्षमता बढ़ने के साथ ही मछुआरों की आमदनी भी बढ़ सकेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों, मत्स्य सहकारी समितियों तथा मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों की जलाशयों और अमृत सरोवरों के जरिए मत्स्य विकास में महती भूमिका निभाएंगे। जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के लिए उत्तर प्रदेश में 19 जलाशयों और 12 अमृत सरोवरों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में पर्यावरण जागरूकता और घर पर जैविक फल व सब्जियां उगाने के लिए रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत की है। पहले चरण में यह योजना प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, झांसी और बरेली में लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक शहरी निवासी लाभार्थी को 10,000 रुपये की लागत वाली किट दी जाएगी। इसमें 500 रुपये की रोपण सामग्री और 9,500 रुपये की कीमत के ग्रो बैग्स, स्प्रेयर, हजारा, खुरपी, कोकोपिट, वर्मी कंपोस्ट, नीम ऑयल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जाएंगी। योजना के तहत प्रति जिला 500 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 100 वर्ग फीट खुली छत होनी चाहिए। प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण और हरे चारे की उपलब्धता के लिए गोचर भूमि पर हरित चारा आच्छादन अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक 39,000 हेक्टेयर से भी अधिक गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कुल 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा गोचर भूमि उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्थायी व स्थायी गो आश्रय स्थलों को गोचर भूमि से जोड़ा गया है, जिससे गोवंश को नियमित रूप से हरा चारा मिल सके। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि गोचर भूमि पर हरित चारा आच्छादन के मामले में हरदोई प्रदेश में सबसे आगे है। इसके बाद फतेहपुर, रायबरेली, संभल, आगरा, अलीगढ़, बहराइच, बाराबंकी, फिरोजाबाद और हमीरपुर जिलों का स्थान है। प्रदेश सरकार बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश में चारा और पेयजल सुलभ कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार कर रही है। लखीमपुर खीरी में प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नवीन मंडी स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों को किसानों के लिए स्वच्छ, सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाया जाए। राज्य मंत्री ने कहा कि मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों का हित प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उद्यान राज्य मंत्री श्री सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र मजरा में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के अंतर्गत निर्मित हाईटेक नर्सरी और राजकीय पौधशालाओं से संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राज्य मंत्री ने कहा कि हाईटेक नर्सरी से किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री सुलभ हो सकेगी। राजधानी में अलीगंज स्थित राज्य मशरूम प्रयोगशाला में 6 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में लखनऊ समेत विभिन्न क्षेत्रों के 56 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक जानकारियां दी गईं। विशेषज्ञ डॉक्टर अजय मिश्रा ने मशरूम की वैज्ञानिक खेती, उत्पादन तकनीक और बेहतर प्रबंधन के बारे में बताया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर राज्य मशरूम प्रयोगशाला के प्रभारी डॉक्टर बी लाल ने किसानों को आश्वस्त किया कि मशरूम उत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर विभाग हर संभव सहायता करेगा। कुशीनगर जिले के विकास खंड कप्तानगंज में कृषि विभाग द्वारा श्री अन्न पुनरोद्धार एवं त्वरित मक्का विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को संतुलित रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों के प्रयोग, श्री अन्न, मोटे अनाज की खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती को अपनाना समय की मांग है। उन्होंने किसानों से सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ उठाने और मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करीब 50 लाख साल पुराना ताड़ का जीवाश्म मिला है। यह खोज आधुनिक ताड़ वृक्षों की उत्पत्ति और उनके विकास क्रम को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस प्राचीन ताड़ वृक्ष के जीवाश्म की खोज कलकत्ता विश्वविद्यालय, सोनारपुर महाविद्यालय और सिदो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया। शोध के दौरान बंगाल बेसिन के मुलुक गांव बीरभूम के पास उत्तर मायोसीन प्लायोसीन काल की चट्टानों से ताड़ वृक्ष के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीवाश्म आज के ताड़ के वृक्षों का प्राचीन पूर्वज माना जा सकता है। इसकी आंतरिक संरचना आधुनिक ताड़ से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे विशिष्ट कोशिकीय संरचनाएं भी हैं जो इसे अब तक मिले अन्य ताड़ जीवाश्मों से अलग बनाती हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज भारत के प्राचीन वनस्पति इतिहास, जलवायु परिवर्तन और पेड़ों के विकास क्रम को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। प्रदेश की गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजधानी लखनऊ के इंदिरा भवन में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में दूध, गोबर और गोमूत्र को अलग अलग उत्पाद के रूप में नहीं बल्कि इसे एक समग्र गो आधारित अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में विकसित करने पर विचार किया गया। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त, आयोग के सदस्य राजेश सिंह सेंगर, पुरेश कुमार, दीपक गोयल, रमाकांत उपाध्याय सहित गौपालन से जुड़े विशेषज्ञ और उद्यमी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में 1 लाख से भी अधिक मछुआरों को नामांकित किया गया है। मत्स्य कर्मियों को सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत संरक्षित खेती तकनीक को अपनाने में किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदत्त सहायता में रोपण सामग्री, पौध, सिंचाई, उर्वरक, मशीनीकरण आदि शामिल हैं। गौशालाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने नई पहल की है। इसके तहत आयोग ने प्रत्येक जिले की गौशालाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली गौशालाओं को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। सफल गौशाला मॉडल को प्रदेश की गौशालाओं में अपनाया जाएगा। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
1: सौरभ भैया,
0: हाँ अभिषेक भैया,
1: तो यह रहा है किसान डायरी जो पिछले सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित रहा है। हाँ। जी का बड़े निके देने देने सुनायो, जी का फायदा अपन किसान पंच भैया जरूर उठे हैं। हाँ। कृषि समाचार तेने तो आलेख लिखिन यदुनाथ सिंह मुरारी भैया का और वाचन कह रहे हो आप सौरभ शुक्ला भैया आपका और संपादन लिखिन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो अब भैया जो है देखो मौसम के रूप में थोड़ी देर पहले बात हुई रहा है।
1: हाँ।
0: और अभी वो हमका लागत है कि मौसम जो है थोड़ा बिगड़ रहा है।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो अपने पंच भाई ध्यान से ने बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मौसम की जानकारी क्या।
1: हाँ।
0: तो अपने पंच भाई यहाँ मौसम की जानकारी तुम उपलब्ध करा दो।
1: भैया देखो मौसम बहुत जरूरी होते अपनी खेती पाती में, कहे थे यू सब पूरी तरह ने अपन मौसम पर आधारित होते।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो आज की जो मौसम जानकारी हमका मिली है वो मिली है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ तेने। तो इसके हिसाब से अगले कुछ दिन का पूर्वानुमान जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का दोनों एक साथ है भैया। 31 यानी आज जो निकलेगा वह भैया संभाग में कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़ी संभावना है।
0: अच्छा।
1: दोनों जगह पूर्वी और पश्चिमी भैया दोनों।
0: हाँ।
1: और इसके साथ अगर 1 तारीख और 2 तारीख अगस्त में बात करी जाए कल और परों के तो संभाग में कहूँ कहूँ पर गरज चमक के साथ में बौछार पड़े के संभावना है। और यहीं अगर 3 और 4 की बात करी जाए तो संभाग में लगभग सब स्थानों पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है। और 5 और 6 की अगर बात करें तो अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है। और भैया चेतावनी देखी जाए तो 31 और 1-2 का कोई चेतावनी नहीं है। बोला भैया 3 और 4 का संभाग में भैया कहूँ कहूँ भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो भैया रहे अपन
0: मौसम की जानकारी। हाँ और जो चेतावनी रहे।
1: और भैया अपन पंच भैया अगर चाहें

0: तो सरकार ने तीन ऐप भैया बनाए गए हैं, एक मौसम ऐप है, मेघदूत ऐप है, तो दामिनी ऐप है। तो इमा भैया जाए के अपन मौसम हर समय समय पर ले लें, वह के हिसाब से अपन काम काज करें।
1: बिल्कुल, वह के हिसाब से घर से निकलें, अपन छाता होता लेके, ताकि हमें बीमार ना पड़े। अच्छा, एक के साथ साथ में देखो, मौसम के साथ साथ में हम मनोरंजन अगर हो जाए तो मौसम के जो मजा है वो दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल भैया,
1: तो अपने पंच भाई के यहाँ सुनवा जाए। आल्हा जी का स्वर दिन है जयशंकर त्रिवेदी भैया, तो एक सुना जाए और आनंद दिन जाए।
0: हाँ भैया, सुना जाए।

0: तो अभिषेक भैया,
1: हाँ भैया,
0: देखो अपन पंच भाई जोन है, मौसम के साथ साथ जो बाजार भाव है वो एक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
1: हाँ भैया,
0: तो उनका पता चल जाए कि जोन अपन फसल है या जोन अपन जो भी है उसका कहाँ कोनी बाजार में बेच के अच्छे दाम पा सकते।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो अपने पंच भाई के यहाँ बाजार भाव हम बता दे
1: भैया।
0: यू चार मंडी क्या थोक बाजार भाव है, लखनऊ, कानपुर, गोंडा और अयोध्या क्या, जो कि प्रति क्विंटल के हिसाब से है। तो गेहूं धड़ा लखनऊ में यहाँ 2590 रुपया, कानपुर में यहाँ 2540 रुपया, गोंडा में यहाँ 2660 रुपया और अयोध्या में 2570 रुपया प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में यहाँ 3590 रुपया, कानपुर में यहाँ 3550 रुपया, गोंडा में यहाँ 3075 रुपया और अयोध्या में यहाँ 3300 रुपया प्रति क्विंटल रहा। छोटा चना लखनऊ में यहाँ 6720 रुपया, कानपुर में यहाँ 6475 रुपया, गोंडा में यहाँ 6750 रुपया और अयोध्या में यहाँ 6500 रुपया प्रति क्विंटल रहा। अरहर के दाल लखनऊ में यहाँ 11150 रुपया, कानपुर में यहाँ 11160 रुपया, गोंडा में यहाँ 10850 रुपया और अयोध्या में यहाँ 11000 रुपया प्रति क्विंटल रहा। उड़द काली की अगर बात की जाए तो लखनऊ में यहाँ 9350 रुपया, कानपुर में यहाँ 9150 रुपया, गोंडा में यहाँ 9700 रुपया और अयोध्या में यहाँ 9600 रुपया प्रति क्विंटल रही। अगर मटर सफ़ेद की बात करें तो लखनऊ में यहाँ 4530 रुपया, कानपुर में यहाँ 4250 रुपया, गोंडा में यहाँ 4250 रुपया और अयोध्या में यहाँ 4400 रुपया यानी कि 4400 रुपया प्रति क्विंटल रही। और अगर गुड़ की बात करें तो लखनऊ में यहाँ 4780 रुपया और कानपुर में यहाँ 4480 रुपया। तो यूँ तो रहा है चार मंडी के थोक बाजार भाव जो कि प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा है। अब अपने पंच भाइन कल के कार्यक्रम का सुनवाई है यू बता दो।
1: तो पंच भैया कल चुने सुने विशेष कार्यक्रम किसान वाणी और इमा सुने भेंटवार्ता आज के किसान। आज के किसान में रहे हैं किसान राम सिंह पटेल भैया जौन अपन सुने सफलता की कहानी सब्जी उत्पादन और इनके साथ हुई हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया और सुने भेंटवार्ता खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण अभियान और टीकाकरण इसके बारे में जानकारी दे हैं डॉक्टर संगीता तिवारी बहनी और बात करें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: तो अपने पंच भाई अगर कोई सुझाव दे भैया हैं कोई अपन जो उन्हें जानकारी लेना चाहते हैं तो हमका पत्र लिख सकते हैं के लिए हमारा पता है कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी या कार्यक्रम हेलो किसान द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन है 226001 और इसके साथ अपने पंच भाई से आज्ञा लेकर समय हो रहा है अपने पंच भाई दिन जय विदा। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जाँच।

0: और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के दौरान इस योजना के लिए कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से डीबीटी द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों को कृषि निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जौनपुर के किसान श्याम दत्त ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत दी गई सहायता से किसानों को कृषि आवश्यकताओं से जुड़ी चीजें खरीदने में बहुत मदद मिलती है।
2: ये जो हमें एक पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं अपनी किसान से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता हूँ। मैं इसी पैसे से बीज खरीद लेता हूँ, इसी पैसे से खाद खरीद लेता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने किसान सम्मान निधि को आगे तक बढ़ाया है।
0: इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की बढ़ी हुई सहायता को भी मंजूरी दे दी है। स्वीकृत बजट पिछली खेलो इंडिया योजना की तुलना में लगभग 8 गुना है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
3: भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया है और खेलो इंडिया के लिए और नेशनल फेडरेशन के लिए जो बजट स्वीकृत किया है वो पूर्व वर्षों की तुलना में 8 गुना अधिक है, जो ये दर्शाता है कि भारत सरकार खेलों के लिए कितनी कटिबद्ध है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए वो हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है, जिसके लिए मैं उनकी भूरी-भूरी सराहना और प्रशंसा करता हूँ।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 25 से 29 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, नवाचार, उत्पादों और निर्यात सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। एक रिपोर्ट।
4: ट्रेड शो के चौथे संस्करण में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत B2B खरीदारों, करीब 4.5 लाख से अधिक B2C आगंतुकों और 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 4000 से अधिक MOU, 3200 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित MOU मूल्य और 13500 करोड़ रुपए से अधिक बिजनेस इंक्वायरी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और रूस सहित अन्य देशों के साथ भी सक्रिय संवाद स्थापित कर उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर आएंगे। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री कल भगवान बुद्ध की तपोस्थली सिद्धार्थनगर में विपश्यना केंद्र और कपिल वस्तु स्थित बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सावन माह के दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालु गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं। अमरोहा में पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि श्रावण मास के प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक NH 9 पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि ऐसे में सभी प्रकार के वाहन निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे। बदायूं में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अंबेडकर नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जोनल, 78 सेक्टर और 9 स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
1: कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो ये अयोध्या का रूट है टांडा होके, उस पे भी विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं। सारे सड़कों को गंधा मुक्त किया गया है। जो हमारे मेन घाट है महादेवा घाट, उसकी लगातार सफाई के लिए 3 शिफ्टों में सफाई कर्मी लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था की गई है, 3 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी की भी जल लेने के समय कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिला प्रशासन समुचित रूप से सतर्क है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना आए।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज लखनऊ विश्वविद्यालय का 69वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर शामिल हुए। इस अवसर पर 111 मेधावी छात्रों को 204 पदक प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र और भविष्य निर्माण की आधारशिला है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं के कछला गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते जिले की सदर, दातागंज और सहसवान तहसील के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और राहत और बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2031 तक देश में जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार का प्रस्ताव भी किया पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को परखा। सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रिया, ब्राजील सहित अन्य देशों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 17 अगस्त से शुरू होगी शारीरिक परीक्षण और प्रमाण पत्रों की जांच। और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। कई जिलों में रूट डायवर्जन लागू। यात्रा के दौरान बदायूं में 8वीं तक के स्कूल शनिवार और सोमवार को रहेंगे बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: I hope you enjoyed this edition of the English program. We will continue to bring this understanding of our ancient wisdom in a series proffered by Dr. Anjana Krishna soon in the upcoming editions of the English program. With this promise, Shiba says, Namaskar.
1: अभी आप सुन रहे थे इंग्लिश प्रोग्राम, इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया डॉक्टर शिवा राकेश ने। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म राजकुमार के इस गीत के साथ, जिससे आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने, गीत शैलेंद्र का और संगीत शंकर जयकिशन का है।
1: होशियार, होशियार।

और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म गबन का ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म गबन में। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रही हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए।

आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट DM, उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए

इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन के ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आज

0: शासन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं विशाल सिंह यादव। आज हम आपको सुनाएंगे आपके स्वर में कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सूरदास के इस भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे विशाल सिंह यादव के स्वर में ये भजन। आपके साथ ढोलक पर थे शुभ भटनागर, बांसुरी पर सौरभ सोनवानी और कीबोर्ड पर पवन चौहान। इसके साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म हम दोनों के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म दोस्ती का ये गीत, जिसे आवाज़ दिया मोहम्मद रफ़ी ने, गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल

और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं?
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर।

0: 70 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की।

0: जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है।

0: है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
3: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। मरकज ने प्रधानमंत्री सोर्य सरोवर योजना की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम में भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिससे मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम हासिल होगा और समुद्र के किनारे के वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल किया जा सकेगा। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और 4 दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में पुनः अमन मुजाहरीन के खिलाफ बहीमाना कार्रवाई के सिलसिले में पाकिस्तान की नुकताचीनी की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। राहत और बचाव की कार्रवाइयां जोरों शोर से जारी हैं। दौलत मुश्तरका खेलों में स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता। भारत के मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लिमोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पांघल अपने अपने मुतल्लिका मुकाबलों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY की मंजूरी दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी

0: वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को 5,070 करोड़ रुपए की कुल मालियत के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये स्कीम 5,000 मेगावाट पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर का अहाता करती है, जिसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के ऐसे निजाम भी तामीर किए जाएंगे जिनकी 2 घंटे की कम अज कम जखीरा अंदोजी की सलाहियत कुल 10,000 मेगावाट पर आवर होगी।
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
0: मरकजी काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 84,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पर माली बरस 2030-31 तक अमलावरी होगी। जनाब वैष्णव ने बताया कि स्कीम समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की पूरी वैल्यू चेन में मदाखलतों के एक जामे सेट का अहाता करती है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने बताया कि 5 साल की मुद्दत के दौरान इस स्कीम के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए के मजमुई माली अखराजात की मंजूरी दी गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि मंजूरी हुकूमत के इस अज़्म की तौसीख करती है कि किसानों की खुशहाली कौमी खुशहाली की बुनियादें इस्तवार करती है। मरकजी काबीना ने खेलो इंडिया स्कीम को वसत अदा करने की भी मंजूरी दी है, साथ ही उसने खेलों के कौमी फेडरेशनों के लिए तावुन में भी इजाफा किया है, जिसके लिए 2026-27 से 2030-31 तक की मुद्दत के लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए, और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन की काबीना की जानिब से मंजूरी भारत के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने की जानिब काया पलट कर देने वाली एक जस्त की अलामत है और इससे समुद्र के किनारों की वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि सरमायाकारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महारत से भरपूर इंसानी असासे और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे के इश्तराक से समुद्र मंथन से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर के इख्तिरा पर मबनी इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत अता करती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की खुशहाली के लिए बाख्तियारी देने की जानेब पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2031 तक बढ़ाए जाने से अन्नदाताओं को बीजों, कीमियावी खादों और काश्तकारी से मुतालिक अपनी जरूरियात पूरी करने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे उनकी इक्तसादी हालत भी बेहतर होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया स्कीम की वसत और खेलों के कौमी फेडरेशन के लिए तावुन में इजाफे से मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत, जदीद सहूलियात और अपनी सलाहियतों को निखारने के ज्यादा मौके मैसर आएंगे। हुकूमत ने कहा है कि रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत गारंटी ग्रामीण VBG रामजी स्कीम के तहत आज की तारीख तक किसी रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है। देही तरक्यात के महकमे के वजीर ममलिकत कमलेश पासवान ने राज्य

0: लोकसभा में। एक सवाल के जवाब में बताया कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 को पूरे मुल्क के देही इलाकों में इस माह की पहली तारीख से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इस स्कीम को नोटिफाई किया और इस पर अमल आवरी शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि माली बरस 2026-27 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट में 95,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इन मामलों में नीट के सिलसिले में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला शामिल है। पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप सैकिया ने बातचीत और मंजूरी के लिए पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौस की बात कही। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान ये बिल पेश किया। ये बिल बगैर किसी बहस के शोरगुल के दौरान ऐवान में मंजूर हो गया। इधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बहस में हिस्सा न लेने के लिए अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पेश एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज फिर रखना पड़ा। अपोजिशन ने नीट मौजू पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आरई की। अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आरई जारी रहने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई लंच से पहले ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले अपोजिशन की हंगामा आरई की वजह से पार्लियामेंट में वक्फ़े सवाल नहीं हो सका। ताहम लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 बिना किसी बहस के मंजूर कर लिया। ये नया बिल पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर सख्त गुंजाइशों पर मबनी है और पैदाइश और अमवात के बरवक्त अंदराज की हौसला अफजाई करता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाज़त देने से पहले रिपोर्ट की जा रही पैदाइश और अमवाद की तस्दीक करें। इधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फ़े सिफर की शुरुआत की, जहां कई अराकीन ने फौरी अहमियत के हामिल मामले उठाए। ताहम अपोजिशन अराकीन ने अपने मुतालबात पर जोर देते हुए नारेबाजी और मुजाहरे शुरू कर दिए। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल इनोवेशन मिशन के बुनियादी सतह के इख्तराकारों के ग्रुप से बातचीत की और नुमाइश के दौरान उनकी जानिब से पेश किए गए इख्तराई मॉडल्स का मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया ने मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि बुनियादी सतह के इख्तरात का समाज की जरूरतों से हम आहंग होना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने सजा की मियाद के मुतालिक दलाइल की समाअत के बाद तमाम पांचों मुलजिमीन की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने इस जुर्म को इंतहाई बहिमाना वाकया करार दिया और कहा कि इससे पूरा मुआशरा हिलकर रह गया था। इस माह की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार दीगर को अंकित शर्मा के कत्ल का मुजरिम करार दिया था, जिन पर फसादात के दौरान एक हुजूम ने हमला किया था। बाद में उनकी लाश एक नाले में पाई गई थी। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के जीर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद इंतखाबात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तौहीन आमेज अवामी रद्दअमल का इजहार करते हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरअमन शहरियों के खिलाफ जारहाना ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में 40 से ज्यादा शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ पाकिस्तान की बेएतनाई उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उसके वजीर दिफा ने एहतजाज करने वाले शहरियों को दुश्मन करार दिया। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 31 जुलाई को हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के उस अमर गायक को जिनकी आवाज़ आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई है। हम स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर आकाशवाणी लखनऊ की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रफ़ी साहब केवल एक गायक नहीं थे, वे भावनाओं के सच्चे दूत थे। प्रेम हो या विरह, भक्ति हो या देशभक्ति, हास्य हो या दर्द, हर भाव को उन्होंने अपनी अनूठी गायकी से जीवंत कर दिया। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास और आत्मीयता थी जो समय बीतने के साथ और भी अधिक अमर होती चली गई। आज के आपके पसंद कार्यक्रम में हमने उनके कुछ ऐसे सदाबहार गीत चुने हैं जो हमारे श्रोताओं ने हमें फरमाइश की है, तो उन श्रोताओं की फरमाइश को कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इस संगीत में श्रद्धांजलि का शुभारंभ करते हैं मोहम्मद रफ़ी के उस मधुर गीत से जो प्रेम और सौंदर्य की अनूठी अभिव्यक्ति है।

सुनने का अनुरोध। कुरौली बाराबंकी से पीयूष वर्मा, फरिश्तीपुर गदिया से बलवंत सिंह, पलिया मसूदपुर बाराबंकी से अंजनी कुमार, बाराबंकी से नवीन जायसवाल, भवानीपुर अनौरा से राज बहादुर, सदरपुर भानमऊ बाराबंकी से अखिलेश कुमार, रेलवे स्टेशन बाराबंकी से चंद्रमणि पांडे, अयोध्या धाम से आशा शुक्ला, जहांगीराबाद से रामप्रकाश मिश्रा, पुलिस लाइन बाराबंकी से मुन्नी सिंह और रंजीत सिंह।

श्रोता मित्रों, रफ़ी साहब की गायकी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे हर गीत में अपना हृदय उड़ेल देते थे। उनकी आवाज़ में शब्द नहीं, भाव बोलते थे।

अब सुनिए फिल्म सूरज का एक और सदाबहार गीत, जिसे सुनना चाहा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने।

रफ़ी साहब की आवाज़ में रोमांस की कोमलता और भावनाओं की गहराई का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं उनका एक और लोकप्रिय गीत, इसे सुनना चाहते हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य, स्वाति मौर्य। तो लीजिए सुनिए फिल्म आरजू का ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिन गीतों को गाया उन गीतों में विनम्रता और उनका व्यक्तित्व भी झलकता था। अपार सफलता और लोकप्रियता के बाद भी वे अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के थे। संगीत उनके लिए केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि साधना थी। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है इन श्रोताओं के अनुरोध पर, ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, रक्षा मौर्य, रामसागर और रामचरण, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह की अनुरोध पर फिल्म प्रोफेसर का ये गीत। तो लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म प्रोफेसर का ये गीत।

श्रोताओं, जीवन में उपकार और प्रेम के भावों को बड़ी सहजता से व्यक्त करने वाला यह अगला गीत भी रफ़ी साहब की कालजयी प्रस्तुतियों में शामिल है। इसे सुनने का अनुरोध किया है बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हम आपके समक्ष रखेंगे। प्रेम के रंगों से सजा यह गीत रफ़ी साहब की मधुर गायकी का एक अनुपम उदाहरण रहा है। रफ़ी साहब की जो विशेष बात थी वो ये कि वो हर मूड के गीत आसानी से गा लिया करते थे। तो मित्रों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके रेडियो सेट पर हम भेज रहे हैं, इसे सुनें और आनंद लें।

इस गीत को सुनना चाहा है। गजफरपुर भिलवल बाराबंकी से राहुल कुमार, यहीं से नीरज कुमार, सदरपुर भानमो बाराबंकी से लवलेश कुमार और भानमो बाराबंकी से ललित कुमार।

तो श्रोता मित्रों, स्वसम्राट मोहम्मद रफ़ी को समर्पित आपकी पसंद की यह विशेष संगीत में प्रस्तुति अब यहीं समाप्त करने की अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को अनुमति दीजिए। अभी एक कार्यक्रम लेकर के आपके साथ और उपस्थित होता हूँ, वो भी आज मोहम्मद रफ़ी पर ही केंद्रित रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम से अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

जी हाँ, यह देख के दिल झूमा, ऐसे गीतों को गाने वाले सुरों के सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब की आज पुण्यतिथि है और आकाशवाणी लखनऊ प्रस्तुत कर रहा है रफ़ी साहब को संगीतमय नमन। आइए सुनते हैं उनके सदाबहार और सुपरहिट गीतों की वह अनमोल श्रृंखला जो पीढ़ियों से श्रोताओं के दिलों पर राज कर रही है। कहते हैं कि यदि किसी गायक की आवाज़ में मुस्कान सुनाई दे, आंसू छलकते महसूस हों, इबादत की पवित्रता झलके और प्रेम की कोमलता दिखाई दे, तो आवाज़ केवल और केवल मोहम्मद रफ़ी की ही हो सकती है। रफ़ी साहब ने लगभग 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी आवाज़ का अनमोल उपहार दिया। उन्होंने प्रेम गीत गाए तो ऐसा लगा मानो स्वयं प्रेम स्वर बनकर उतर आया हो, भजन गाए तो भक्ति की गंगा बह चली, देशभक्ति के गीत गाए तो राष्ट्रप्रेम की भावना उमड़ पड़ी और कव्वाली गाई तो महफिलों में रंग जम गया। उनकी आवाज़ में एक ऐसी विलक्षणता थी कि वे जिस अभिनेता के लिए गाते थे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वही अभिनेता स्वयं गा रहा हो।

मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका विशेष झुकाव था। संघर्षों से भरे सफ़र के बाद उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वह आज भी संगीत की दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है।

रफ़ी साहब की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वह हर उम्र के श्रोताओं के दिल को छू जाती है। उनके गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि जीवन के विविध भावों को भी अभिव्यक्त करते हैं। रफ़ी साहब ने सिने जगत के सभी गायकों के साथ लगभग गीत गाए हैं। ये गीत उनका बहुत ही बेहतरीन जो हम आपको सुनवा रहे हैं।

श्रोता मित्रों, आज के दौर में तकनीक ने संगीत को नई ऊंचाइयां दी हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की मिठास, उसकी आत्मीयता और उसकी आत्मा को दोहराना संभव नहीं हो पाया है। उनकी गायकी ऐसी गाती है कि सच्ची कला समय की सीमाओं से परे होती है।

रफ़ी साहब कहा करते थे कि गीत गाते समय सबसे पहले शब्दों की आत्मा को समझना चाहिए। शायद यही कारण है कि उनका हर गीत केवल सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। वे जब मुस्कराहट गाते थे तो होठ अपने आप खिल उठते थे, जब दर्द गाते थे तो आंखें भीग जाती थीं, जब इबादत गाते थे तो मन श्रद्धा से भर जाता था, और जब प्रेम गाते थे तो हर दिल धड़क उठता था।

0: करीब 4 दशकों तक उन्होंने भारतीय सिने संगीत को ऐसे अनगिनत गीत दिए जो आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने अपने समय में थे। उनके स्वर में न कोई बनावट थी, न दिखावट, बस सादगी, संवेदा और सुरों की साधना थी।
1: लागा गोरी गुजरिया से

श्रोताओं, संगीत का संसार जब तक जीवित रहेगा तब तक मोहम्मद रफ़ी जैसे कलाकारों की आवाज़ हमारे बीच गूंजती रहेगी। उनका स्वर केवल ध्वनि नहीं बल्कि भारतीय संगीत की आत्मा है। आकाशवाणी लखनऊ की ओर से स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी को शत शत नमन।

0: और इसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आज की यह विशेष संगीतमयी चित्रपट से कार्यक्रम अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: आँख मिल जाए है सजनिया से तो नाचन लगी है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 kHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए सुषमा वाजपेयी का गायन विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं दुर्गा दया करो। द्रुत ख्याल 3 ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं अम्बे दुर्गे दया निधि।

अभी आप सुन रहे थे सुषमा वाजपेयी का गायन, राग था दुर्गा। इसके साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूर दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that this scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है। 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen countries' energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Scheme, from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Bikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India's support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. In Jammu and Kashmir, one non-local labourer was killed and another injured in a terrorist attack in the Kilam Devsar area of Kulgam district this evening.